मीडियम वेव 16.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि तदनुसार दिनांक 22 अगस्त 2026। इस समय प्रातः की 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज के हमारे प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका रेडियो मित्र अरे धाकर। आप सभी को हमारा नमस्कार।

मीडियम यूम 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह की 6 बजे को हैं। अब हिंदी में समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति की संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए समूह स्वर में यह मात्र वंदना।

अभी आपने सुनी समूसर में ये मातृवंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनी नितिन किशोर में ये भक्ति रचना।

नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी है भक्ति रचना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथी कार्यक्रम में आगे लीजिए, जब सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुनी है भक्ति रचना। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना भी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल का है और वाचक हैं सुनील केशव देवधर।
1: वैदिक ऋषियों में अथर्वा ऋषि का प्रमुख स्थान है। पूरे अथर्ववेद की ऋचाओं का दृष्टा है वो। बड़ी महिमा है अथर्वा की। गोपथ ब्राह्मण में एक कथा है। ब्रह्म प्रारंभ में अकेला था। अन्य के निर्माण का विचार आया और ब्रह्म तपस्या करने लगा। तपस्या के श्रम से ब्रह्म के रोम कूपों से पसीना की धाराएं बहने लगीं। इन धाराओं में ब्रह्म ने अपना बिंब देखा। देखते ही ब्रह्म का रेतस स्कंदित हो गया। पसीने की धाराएं इस ब्रह्मवीर्य से मिली और दो भागों में बट गईं। एक धारा खारी अशांत और अपेय, ये धारा समुद्र रूप में प्रतिष्ठित हुई। दूसरी धारा मधुर शांत और सुस्वादु। इस दूसरी शांत सौम्य धारा में जो ब्रह्म के वीर्य का अंश था उससे भृगु नाम का ऋषि उत्पन्न हुआ। भृगु का सृजन होते ही ब्रह्म अदृश्य हो गया। भृगु ने अपने सृष्टा की खोज की। भृगु ने दिव्य वाणी सुनी, हे भृगु तुम अपने सृष्टा को इन जलों में खोजो। भृगु को जलों में अथर्वा मिले। अथर्वा ने तपस्या की, मंत्रों को प्रत्यक्ष किया। अथर्ववेद के संपूर्ण दृष्टा अथर्वा हुए। अथर्वा महान प्रजापति हैं। वे अग्नि के रहस्य वेत्ता हैं। वे प्रथम ऋषि हैं जिन्होंने अग्नि को मंथन कर यज्ञ के लिए प्रकट किया है। ऋग्वेद में कहा गया है अग्नि ही जातो अथर्वणा। महाभारत के कर्ण पर्व में अथर्वा को शांति कर्म में पारंगत उपद्रवों के नाशक ऋषि के रूप में स्मरण किया गया है। मार्कंडेय पुराण में आया है कि अथर्वा जिस जनपद में निवास करते थे वहां शांति रहती थी। उपद्रव समाप्त हो जाते थे। अथर्वा मथु विद्या और काम विद्या के वेत्ता हैं। अथर्वा के काम सूक्त में व्यक्त विचारों की हम यहाँ चिंता करें। ऋषि कहता है काम देवों पितरों और मनुष्यों से पूर्व में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो महान है। काम है क्या? मनस्तत्व की शक्ति काम है। मन का बीज काम है। काम बीज से सृष्टि उपजती है, इसलिए काम अध्यक्ष है। काम की दोहरी शक्तियां हैं। वो निर्माण करता है, नाश करता है। शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियां काम की हैं। अतः काम वाजी यानी पराक्रमी है और उग्र भी है। ऋषि अथर्वा उसकी दोनों वृत्तियों का प्रार्थी है। सपत्नों शत्रुओं को कुचलने में व्यक्ति की निम्नगामी वृत्तियों के दमन में काम की अशुभ शक्तियों की आवश्यकता है। उदात्त ऊर्ध्वगामी श्रेष्ठ उच्चतर गुणों और वृत्तियों के विकास में काम की शुभ शक्तियों की सहायता हेतु ऋषि प्रार्थी है। वो प्रार्थना करता है कि काम इंद्राग्नि के साथ रथारूढ़ होकर आवे और शत्रुओं को नीचे गिरा दे। यहाँ इंद्र अग्नि और काम इन तीनों देवों का एक साथ स्मरण है। अग्नि वाक है, इंद्र प्राण है और काम मनस है। मनस प्राण, मन प्राण और वाक अर्थात पूर्ण जीवन का छंद। ऋषि कहता है हे काम जो तेरी दुहिता है उस धेनु कहते हैं। ये विविध ऐश्वर्यों से युक्त वाणी ही है ऐसा मनीष कहते हैं। वाणी काम की पुत्री है। वाणी यानी वाक विविध ऐश्वर्यों की दात्री है। वो धेनु है, प्रकाशिका है, पालिका है, पोषिका है। वाक स्पष्ट संकेत है। मन से जो काम के उत्स से ही अभिव्यक्ति की धारा जन्मती है। हमें व्यक्त करने के लिए जो उपकरण है उसका उपादान काम है, इसलिए काम देव है। देव है इसलिए दिव्य है, उपास्य है। काम की उपासना मधुविद्या की पूर्णता है। मन प्राण वाक के सामंजस्य का रहस्य यहां अथर्वा के काम सूक्त में उद्घाटित हुआ है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल कथा और वाचक थे सुनील केशव देवधर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: डीजे प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय है पशुओं के नवजात बछड़ों की देखभाल, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एसपी सिंह।
1: किसान भाइयों, आज सबसे बड़ी समस्या जो पशुपालन में आ रही है वो देखने में आ रहा है कि जो हमारा गिरदंचल है, चंबल संभाग है, यहाँ पर पशुपालक जो है भैंस पालन का बड़े पैमाने पर पालन करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में भैंस पालन करते हैं, परंतु देखने में आ रहा है कि भैंस तो हमारा पशुपालक अच्छी रखता है परंतु जो भैंस के बच्चे हैं उन बच्चों को नहीं बचा पाता। इनके पीछे सबसे बड़ी जो प्रमुख वजह है वो किसान भाई, उसका प्रबंधन सबसे बड़ी वजह है। उस प्रबंधन को यदि किसान पशुपालक भाई सुधार लें तो अपने नवजात लवारों को बचा सकते हैं। देखने में आ रहा है के लिए जो गिरदंचल है हर जिले में जो है, हर जिले का आंकड़ा निकालें तो 1 से लेकर 1.5 अरब तक के भैंस के लवारे हर साल मर जाते हैं। इनको बचाने के लिए साथ बहुत सख्त जरूरत है, और इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को 2-3 विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ है जो भैंस के लवारे हैं, बच्चे हैं, वो पैदा होने के बाद 6 से लेकर 7 महीने के भीतर मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन्हें बचाने के लिए मोटे मोटे तौर पर 2-3 विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज़, भैंस पर बच्चा पैदा होने के बाद पशुपालक भाइयों को सुझाव है कि पैदा होने के बाद बच्चे के 1 घंटे के भीतर बच्चे के वजन का 1/10 भाग उसे खीस, पेप्सी या कीला जरूर पिलाएं। अक्सर कर क्या होता है कि हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं के जो दूध पैदा मिलता है, जो कीला मिलता है, उस कीले को 3 दिन तक पिलाते नहीं हैं। उससे क्या है, बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती और उससे रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती। तो पैदा होने के बाद 1 घंटे के भीतर बच्चे के वजन का 1/10 भाग कीला, पेप्सी या खीस जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा, ये दस्तावर होता है, पेट की जो अंतड़ियों में गंदगी भरी पड़ी है उस गंदगी को साफ करेगा और बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगा। दूसरा काम जिसकी वजह से नवजात लवारे सबसे ज़्यादा मर जाते हैं वो उसके नार पक जाने की वजह से, अक्सर बच्चों के नाल पक जाते हैं। तो ये या तो हमारे पशुपालक भाई बच्चों के नाल को काटते नहीं हैं, काटते हैं तो कोई भी खुरपी ऐसी पड़ी है उससे के काट देते हैं जिससे वो नार पक जाता है, और नाभि का संबंध पेट से रहता है, पाचन तंत्र से रहता है। इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद साफ़ सफाई कर लें, और साफ़ सफाई करने के बाद ऊपर से 2-3 अंगुल छोड़ते हुए 1 धागे से नाल को बांध दें, और जहाँ बांधा है वहाँ से 1 अंगुल और छोड़ें और 1 ब्लेड से, नए ब्लेड से लेकर उसको नाल को काट दें। और काटने के बाद ध्यान रखें कि भूल के भी उस नाल पर सरसों का तेल मत चुपड़िए। सरसों का तेल चुपड़ोगे तो बच्चा नीचे बैठेगा, मिट्टी पकड़ेगा, सरसों के तेल की खुशबू की वजह से दूसरी भैंस या बच्चा उसको चूसेगा, चबाएगा तो वो नार पक जाएगा। इसलिए उस पर सरसों का तेल न चुपड़ के आप जो टिंचर आयोडीन है ये 5 से 6 दिन तक आप चुपड़ेंगे तो नार पकेगा नहीं और नार सूख जाएगा, और वो धागा बांधा है धागे की वजह से कोई भी गंदगी, कोई भी कीटाणु, कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर नाभि के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों को बचाने के लिए वो है पेट के कीड़े। कोई भी बच्चा है, गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं इनके पेट में कीड़े, हमारे पशुपालकों की ये गलत धारणा है कि पेप्सी पिलाने से या कीला पिलाने से पड़ जाते। कीला पिलाने से कभी कीड़े नहीं पड़ते, बल्कि गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनके पेट में कीड़े माँ के गर्भ से आते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में नाल के माध्यम से भोजन लेता है, तो इस गर्भस्थ अवस्था के दौरान ही इन कीड़ों के अंडे, इन कीड़ों के लार्वा उस गर्भस्थ शिशु के पेट में प्रवेश कर जाते हैं, खासकर गाय और भैंस के बच्चों में। तो ये गाय भैंस के बच्चे जो हैं ये पेट के कीड़े माँ के गर्भ से लेकर पैदा होते हैं, इसलिए इनका एक जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल चल रहा है। जब तक उस जीवन चक्र को आप नहीं तोड़ोगे पेट के कीड़े नहीं खत्म होंगे। ये कीड़े आंतों में, फेफड़ों में, किडनी में चुपके रहते हैं, इन लवारों के पशुओं का खून चूसते रहते हैं, फलस्वरूप खून की कमी हो जाती है। 3-4 महीने बाद कीड़ों का वर्म लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कीड़ों का भार ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई दस्त हो के, कोई कीचड़ आके, कोई नुमोनिया बन के बच्चे मरने लगते हैं। इसलिए पैदा होने के बाद 10वें दिन पर पहली बार, 30वें दिन पर दूसरी बार और 80वें दिन पर तीसरी बार और चौथी बार जो है 150वें दिन पर, ये 4 बार पेट के कीड़ों की दवा एल्बेंडाजोल साल्ट के नाम से उस बच्चे को उसके शरीर बाहर के अनुसार खिला पिला देंगे तो वो उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे और उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। आज हो क्या रहा है कि जो बच्चे बच भी जाते, मान लो कोई एक पड़िया बच गई तो वो जो है 5 से 6 साल में जवान हो पाती है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा, जवान नहीं होगी, वो गर्भ धारण नहीं करेगी। कोई पशु दुधारू पशु है वो भरपूर क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाता, फलस्वरूप उसके पेट में कीड़े हैं। जब तक इन कीड़ों का आप प्रबंधन नहीं करेंगे उन पशुओं को बचा नहीं सकते, ओसर पड़ियों को समय पर जवान नहीं बना सकते और भरपूर क्षमता के अनुसार दूध उत्पादन नहीं ले सकते। तो इसलिए पशुपालकों को सिफारिश है कि हर 4 महीने के अंतर पर जो बड़े 1 साल से बड़े पशु हैं उनको पेट कीड़ों की दवा दें और नवजात लवारे को 10, 40, 80 और 150 दिन पर 3 बार पैदा होने के बाद पेट कीड़ों की दवा उनके शरीर भार के अनुसार जरूर खिलाते रहें।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था पशुओं के नवजात बछड़ों की देखभाल, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर एसपी सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है

0: सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
1: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
2: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
3: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिष्काराः तस्य प्रशासनस्य कृते बाध्यता न, अपि तु प्रतिबद्धता, दृढविश्वासश्च। तेनोक्तं यत् प्रशासनस्य नीतयः जनकल्याणपराः, विकासोन्मुखाः, प्रगतिवर्धकाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्याम् इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतत् मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनेन परिष्कारेभ्यः स्पष्टा योजना निर्मिता अस्ति, यस्यां प्राथमिकता शासनस्तरीय परिष्कारेभ्यः प्रदत्ता अस्ति। स उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीतिनिर्माणस्तरे नवपरिष्कारान् करोति।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं केवलं नियमेषु परिवर्तनं न करोति, अपि तु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्णदृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्धदृष्टिः अनुमतिपर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं तां दृष्टिं परिवर्त्य निषेधपर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटन मंत्रिणाम उपवेशनं ह्यः जयपुर घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतद् घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटन क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुख क्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटन क्षेत्रे कृत्रिम बुद्धेः उपयोगः, स्थायी पर्यटन पद्धतयः, कौशल विकासः, अबाधित यात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते, तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन सम्बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमंत्री ह्यः पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां संबोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामी मासस्य पञ्चमदिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञान भवने 48 विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षा मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे, राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिताः 48 शिक्षकाः 27 राज्येभ्यः, 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः अथ केन्द्रप्रशासनस्य 6 संस्थाभ्यः च सन्ति। चयनितेषु 48 शिक्षकेषु 26 पुरुषाः, 22 च महिलाः सन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे प्रचण्डात् अतिप्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम सिक्किम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राज्येषु सोमवासर पर्यन्तं प्रचंड वृष्टेः संभावना वर्तते। अद्य दिल्ली पंजाब हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखंड हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः संभावना वर्तते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली

0: में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच रही बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। 2 दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने तथा अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाने पर भी विचार साझा किए और इन मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। ये प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट सावन किशोर संगीत साधना और सरोकार। इस विषय पर डॉक्टर स्मिता सहस्रबुद्धे कुलगुरु राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। चलचित्र का उद्भव और विकास इस विषय पर आप सुनेंगे वार्ता। 7:20 पर वार्ताकार हैं दिनेश पाठक। गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समय रहेगा 9:00। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सुदीप भदौरिया का ध्रुपद धमार गायन राग होगा अहि भैरव। इनके साथ पघावज पर संगत होगी जयवंत गायकवाड़ की। सुबह 10:05 आप सुनेंगे सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्यों होता है रेबीज, इससे कैसे बचें, इस विषय पर डॉक्टर अशोक मिश्रा से तुलिका शर्मा की बातचीत। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 पर और 10:50 पर। सुबह 11:00 आप सुनेंगे बात आपकी गीत हमारे। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 10:00, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर में अपना फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 12:00, दोपहर 2:00 और 2:30 पर। कार्यक्रम संग्रहालय का समय संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30 पर। महिला कार्यक्रम का समय रहेगा 12:00। लोक संगीत और सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर और 12:45 पर। महिला कार्यक्रम, लोक संगीत और सुगम संगीत, ये तीनों ही कार्यक्रम रीवा की प्रस्तुति हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:00। श्रोता साथियों, जैसा भी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सायंकालीन सवा में शाम 5:02 पर आप सुन सकते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम रीवा की प्रस्तुति है। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:30 पर। भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 6:00। इस सप्ताह संसद में इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। अखिल भारतीय पत्रिका विज्ञान भारती का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। शुभ साथियों, यह सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और शाम 7:20 पर आप सुनेंगे विज्ञान एवं लोक संगीत। इसमें कलाकार होंगे हरनाम सिंह कुशवाहा और साथियों से आप सुनेंगे चौकड़िया और राजेश कुशवाहा से आप सुनेंगे दादरा। तो श्रोता युद्ध थी हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसके साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: किनबितवा लिंक परियोजना की समीक्षा की और प्रदेश में बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय, सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच रही है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के जरिए देश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और 50 लाख से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से जुड़े हैं।
1: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
0: आज शिवपुरी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन नवीन कृषि उपज मंडी पेपर समा में दोपहर 12 बजे से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है और सरकार स्थानीय उद्योगों को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी होटल, होम स्टे और इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं का लाभ उठाएं। डॉ. यादव ने कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक के तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही।
2: यहाँ सबका आग्रह था कुंडेश्वर को जरा कुंडेश्वर धाम बनाया जाए, तो कुंडेश्वर धाम भी जब बाबा महाकाल का महालोक बना और बाकी सब हुआ तो कुंडेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। तो टीकमगढ़ में एक बड़ी सौगात कुंडेश्वर भी देने की मैंने घोषणा की है। बहुत जल्दी टूरिज्म कमेटी है, इसमें टूरिज्म की एजेंसी आकर के उसके विकसित और व्यवस्थित प्लानिंग पे काम करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस सहयोग से काम करें।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किनबितवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कल खजुराहो में परियोजना के काम की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। परियोजना पूरी होने पर प्रदेश में करीब 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 44 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्रावधान है। योजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,382 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कल तबादले किए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। 10 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में 2016 से 2024 बैच तक के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम और सहायक कलेक्टर शामिल हैं। खंडवा के जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा को सतना नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी सृष्टि देशमुख गौड़ा को रीवा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 2000 मेगावाट पीक पावर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से खरीद शुरू करने की सहमति जताई है। इसके लिए दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। समझौते का मकसद दोनों राज्यों में बिजली की अलग अलग मौसमी मांग का बेहतर इस्तेमाल करना है। प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन में मांग बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में गर्मियों और खरीफ सीजन में बिजली की मांग ज्यादा रहती है। ऐसे में कम मांग वाले समय की अतिरिक्त बिजली को दूसरे राज्य की जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। योजना का मकसद देश में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाहगंज में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि बाकी आवेदनों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना लोगों का अधिकार है, इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। प्रदेश के मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए MSME विभाग ने इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 5 बजे है और 16 सितंबर को प्रस्ताव खोले जाएंगे। प्रदेश को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। 19 से 21 अगस्त तक चले इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्पेसटेक, AVGC XR और ड्रोन निर्माण क्षेत्र की कंपनियों से निवेश और साझेदारी पर चर्चा हुई। प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोनों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। डॉ. अर्चना शुक्ला भोपाल के सांदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी में उच्च माध्यमिक शिक्षिका हैं। वहीं सीधी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह का भी चयन हुआ है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कई जगह नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने आज सिवनी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। FIH हॉकी महिला विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में चमोसे की जनजाति और लोक अनुष्ठान, सांस्कृतिक स्मृति और अभिप्राय विषय पर 2 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। आगरमालवा जिला अस्पताल परिसर से लगातार हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सतना में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। झाबुआ में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रुटला का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम में भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चलचित्र का उद्भव और विकास, इस विषय पर यह वार्ता। वार्ताकार हैं दिनेश पाठक।
1: कहा जाता है हर तस्वीर की एक कहानी होती है। तस्वीरों के जरिए एक कहानी बनाने वाली विधा को सिनेमा कहा जाता है। सिनेमा या फिल्म की इस विलक्षणता पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि यह एक ऐसी कला है जिसका जन्म विभिन्न कलाओं के मेल से होता है, और लेखन, गायन, वादन, अभिनय, ऐसी कई कलाओं का यह मेल जितना सुसंगत और सुगठित होता है, फिल्म का प्रभाव भी उतना ही गहरा और स्थायी।

0: फ्रांस के लुई ल्यूमियर और उनके कुछ साथियों ने 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में लोगों के सामने स्थिर चित्रों को सजीव बनाकर पहला प्रदर्शन किया था। यह एक चमत्कार था। पेरिस में जिस जगह यह चमत्कार घटित हुआ उसका नाम था इंडियन रूम। इंडियन रूम से निकलकर इंडिया यानी भारत पहुंचने में सिनेमा को सिर्फ 7 महीने लगे। बम्बई के वाटसन होटल में 7 जुलाई 1896 को पहली बार सिनेमा प्रदर्शित किया गया और तभी से अपना रूप, रंग और लक्ष्य बदलता हुआ सिनेमा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। फिल्में जीवन को इतने करीब से पकड़ती हैं कि उन्हें जीवन से दूर रख पाना लगभग असंभव है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगभग 125 साल के सफ़र में फिल्में जीवन के करीब आई हैं और जीवन फिल्मों के करीब गया है। भारत में 1896 में शुल्क देकर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिनमें एक रेलगाड़ी का आगमन, कारखाना छोड़ते हुए श्रमिक, गाड़ियों पर स्त्री और पुरुष जैसी फिल्में शामिल थीं। शुरू शुरू में ये फिल्में नाटक, बैले या जादू के शो के साथ सप्लीमेंट के रूप में दिखाई जाती थीं, फिर धीरे धीरे इन्हें पृथक से थिएटरों में दिखाया जाने लगा। चलती फिरती तस्वीरों में जिंदगी के रंग देखने की ऐसी ललक लोगों को होती थी कि वे सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उन गूंगी तस्वीरों को निहारते और चमत्कृत होते रहते थे। बाद में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान बैंड बजाया जाने लगा और उसके बाद दृश्य की मांग के अनुसार पर्दे के पास बैठकर वादक पियानो, वायलिन या हारमोनियम भी बजाने लगे। 1901 के आसपास कोलकाता में हीरालाल सेन ने सिनेमा निर्माण की कुछ मशीनें खरीदी और क्लासिक थिएटर में चल रहे नाटकों के कुछ दृश्य खींचकर उनका प्रदर्शन किया। 1902 में जमशेदजी फ्रामजी मदान ने सिनेमा के उपकरण खरीदकर कोलकाता के हरे भरे मैदानों में सार्वजनिक रूप से सिनेमा का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। सिनेमा उन दिनों बाइस्कोप के नाम से जाना जाता था। भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण सन 1912-13 के लगभग प्रारंभ हुआ और 3 मई 1913 को प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फीचर फिल्म कहलाई। इसके निर्माता थे भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह कहे जाने वाले ढूंढी राज गोविंद राव फाल्के, जिन्हें आदरपूर्वक दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। सिनेमा से जुड़ा हुआ एक आश्चर्यजनक तथ्य यह रहा कि भारतीय जनमानस इसके साथ प्रारंभ से ही जुड़ गया। आम भारतीय जनमानस ने सिनेमा को जो सामाजिक स्वीकृति दी उसके पीछे 3 खास बातें थीं। पहली यह कि सिनेमा में उसे अपने आधे अधूरे टूटे हुए सपने और अरमान साकार होते दिखाई देते थे। दूसरे, मनोरंजन के लिए उसे यह सबसे सस्ता माध्यम लगता था। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी, टॉकी यानी बोलने वाली फिल्मों के प्रचलन के साथ उसे कला के विभिन्न माध्यम यानी अभिनय, नृत्य और गीत संगीत सभी कुछ एक साथ मिल जाता था। दूसरे देशों के समान भारत में भी सिनेमा की कई धाराएं एक साथ चलती रहीं। इनमें शामिल थीं पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, मारधाड़ वाली यानी एक्शन और कॉस्ट्यूम ड्रामा किस्म की फिल्में। गंभीर सामाजिक विषयों को आमतौर पर शुरुआती दौर में कम ही फिल्माया गया, लेकिन आम दर्शक की रुचि रोमांस और गीत संगीत में होने के कारण मनोरंजन का दावा करने वाली ऐसी फिल्में खूब बनीं। इन फिल्मों ने बिना जुबान की होने के बावजूद समाज को काफ़ी प्रभावित किया। अरदेश ईरानी द्वारा निर्मित आलमारा भारत की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म थी। ये 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। इसी वर्ष यानी सन 1931 में ही आलमारा के अलावा 22 अन्य हिंदी फिल्में, 3 बंगाली, 1 तमिल और 1 तेलुगु फिल्म भी रिलीज हुई थी। इसके अगले वर्ष 1932 में 8 मराठी और 2 गुजराती फिल्मों ने पश्चिमी भारत के दर्शकों का मनोरंजन किया। सन 1933 में 75 हिंदी फिल्में प्रदर्शित हुईं और फिर यह सिलसिला निरंतर बढ़ता गया। भारत में सन 1931 से 40 के बीच फिल्म निर्माण में खूब तरक्की हुई। इस दौरान कोलकाता की फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर द्वारा प्रस्तुत फिल्मों में दुश्मन, तानसेन, जिंदगी, प्रेसिडेंट, भक्त सूरदास और कपाल कुंडला जैसी फिल्में प्रमुख थीं, जिनमें पहाड़ी सान्याल, शांता आप्टे, KL सहगल, KC डे, काननबाला और पंकज मलिक जैसे गायक अभिनेताओं ने अपने स्वरों का जादू बिखेरा था। मुंबई और पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी ने इस दौर में सुमधुर गीत संगीत से सजी हुई कई खूबसूरत फिल्मों का निर्माण किया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्में बंधन, किस्मत, झूला, कंगन और अछूत कन्या आदि में समकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं और रीति रिवाज को आधार बनाते हुए मधुर गीत संगीत के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया गया। सिनेमा ने पहले स्थिर चित्रों को गतिमान किया, फिर उसे कहानी, गीत संगीत और अभिनय से सजाया। तब लगा कि इस कला ने पूर्णता प्राप्त कर ली, लेकिन कहानी के चित्रों को जीवंत बनाने के बाद इंसान ने ही जीवन की कहानियों को पर्दे पर उतारने की जद्दोजहद शुरू कर दी और इसके परिणाम स्वरूप पांचवें तथा छठवें दशक में हिंदी सिनेमा रचनात्मकता के चरम बिंदु पर पहुंचकर अत्यंत लोकप्रिय हो गया। इस दौर में वी शांताराम, विमल राय, के आसिफ, महबूब खां, गुरुदत्त, नितिन बोस, सोहराब मोदी और सत्यजीत राय जैसे दिग्गज निर्देशकों के नेतृत्व में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी, देवानंद, बलराज साहनी, भारत भूषण, वैजयंती माला, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, प्राण, मनोज कुमार जैसे समर्थ अभिनेता और अभिनेत्रियों ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत फिल्में दीं जिनमें मानवीय संबंधों और संवेदनाओं को रचनात्मकता के सहारे अमर कर दिया गया। फिल्म को कला के इतिहास में प्रवेश दिलाने और जीवन के यथार्थ को पर्दे पर उतारने के इरादे से कुछ फिल्मकारों ने जो प्रयास किए उनमें से नया सिनेमा उभरा और उसने अपने ही रोजमर्रा के जीवन को देखने की एक नई आंख तैयार की। हिंदुस्तानी सिनेमा में इस दिशा में विमल रॉय, सत्यजीत रे, गुरुदत्त, ख्वाजा अहमद अब्बास, ऋत्विक घटक और मनी कौल जैसे फिल्मकारों के नज़रिए को 70 के दशक के आते आते कुमार साहनी, असित सेन, श्याम बेनेगल, गिरीश कर्नाड, गोविंद निनाली और सईद मिर्जा जैसे निर्देशकों के माध्यम से पूरी अभिव्यक्ति मिली और परिणाम स्वरूप दर्शकों ने अंकुर, निशांत, तरंग, गमन, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, 36 चौरंगी लेन, उत्सव और जुनून जैसी फिल्मों का आनंद लिया। यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत करवाने वाले 70 के दशक में हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए मधुर गीत संगीत से सजी प्रेम कथा फिल्मों ने भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। 1975 के बाद के दशक में सिनेमा ने मानवीय संवेदनाओं और प्रेम प्यार के सीधे साधे समीकरण को पलटकर हिंसा, नफरत, मारधाड़, खून खराबा और बदले की भावनाओं वाली फिल्मों में अपने आप को डुबो दिया। मधुर गीत संगीत और मानवीय संवेदनाएं कहीं खो सी गईं। इससे उबे हुए दर्शकों ने एक बार फिर मधुर गीत संगीत से सजी प्रेम कथाओं और पारिवारिक फिल्मों को जुबली हिट बना दिया। 21वीं सदी में जीवन शैली और मूल्यों में परिवर्तन के साथ साथ जहां सिनेमा की कहानियों और चरित्र चित्रण में बड़ा बदलाव आया, वहीं तकनीकी तौर पर भी सिनेमा समृद्ध हुआ। डिजिटल तकनीक के सहारे उत्कृष्ट फिल्मांकन और मल्टी ट्रैक ध्वनि अंकन ने जहां एक और फिल्म निर्माण को आकर्षक बना दिया, वहीं सामान्य टॉकीज का स्थान बेहतरीन सुविधाओं वाले मल्टीप्लेक्स ने ले लिया और सिनेमा देखना दर्शक के लिए एक सुखद अनुभव बन गया। फिल्मों के एक शताब्दी से अधिक लंबे इतिहास के प्रश्नों को पलटने पर कई ऐसी फिल्में रेखांकित की जा सकती हैं जिन्होंने सामाजिक सोच को शिद्दत से प्रभावित किया है, लेकिन विडंबना यह है कि इस महत्वपूर्ण माध्यम को इसके बेहतर सामाजिक योगदान की तुलना में सामाजिक अवमूल्यन और अपसंस्कृति फैलाने के लिए भी याद किया जाता है, वह चाहे अश्लीलता हो, हिंसा हो, दरकते पारिवारिक रिश्ते हों, फैशन हो, अमर्यादित वार्तालाप हो या समय से पहले बच्चों की परिपक्वता हो। हालांकि सामाजिक विद्रूपता के लिए सिनेमा को उत्तरदायी ठहराने का विरोध समय समय पर फिल्मकारों द्वारा भी किया जाता रहा है और कहा जाता है कि जो कुछ समाज में प्रचलित है सिनेमा वही दिखाता है। प्रतिवर्ष लगभग 150 से 2000 फिल्मों का निर्माण कर भारत ने फिल्म निर्माण में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 125 वर्षों में भारत में लगभग 35,000 से अधिक फीचर फिल्में बनाई गईं। ये फिल्में 22 से अधिक भाषाओं और बोलियों में हैं। ये संख्या एक विश्व रिकॉर्ड है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देश के रूप में मान्यता देता है। आज भारतीय सिनेमा उस मुकाम पर खड़ा है जहां अपने विकास क्रम में 21वीं सदी का इंसान खड़ा है। विज्ञान और मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा के मेल से विश्व क्षितिज पर सिनेमा ने एक ऐसी खिड़की खोली है जहां से हम अनंत संभावनाओं से भरा हुआ एक रुपहला संसार देख रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चलचित्र का उद्भव और विकास, इस विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार थे दिनेश पाठक। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म अनजाना का यह गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में भी आपने सुना फिल्म है मिलन का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सावन की घटा का ये गीत। गीत लिखा था एसएच बिहारी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म है जीवन मृत्यु का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोत साथियों, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म समाधि का ये गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म समाधि का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजे
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडेम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोगों अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल

0: कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.uae.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी ईगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोड मैप की

0: प्रमुख दिशा रही है, गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो, इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
1: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
0: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal Frontier Headquarters in the Rani Danga area at Siliguri in West Bengal yesterday. The Home Minister said completing border fencing is crucial to stopping infiltration and protecting national security. He said the government will continue its zero tolerance policy towards illegal immigration.
2: सरकार के गठन के 45 दिन
3: विद इन 45 डेज ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट सुवेंदु जी एलोकेटेड 1,129 एकर्स ऑफ लैंड फॉर द बीएसएफ एंड एसएसबी। फ्रेंड्स, दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी कम्स नॉट मेयरली फ्रॉम बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग दैट अनलेस इन्फिल्ट्रेशन इज स्टॉप्ड नीदर वेस्ट बंगाल नॉर इंडिया कैन रिमेन सिक्योर।
2: भारत सुरक्षित रह सकता।
1: The BRICS tourism ministers' meeting held under India's chairship concluded yesterday with the unanimous adoption of the Jaipur Declaration, which provides a framework for strengthening tourism cooperation among BRICS member countries. The declaration outlines key areas of cooperation, including the use of artificial intelligence in tourism, sustainable tourism practices, skill development, and seamless travel facilitation. The meeting was presided over by Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat at Jaipur in Rajasthan, and marked the culmination of the BRICS tourism track under India's chairship in 2026. The tourism track was taken forward under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Addressing the meeting, Mr. Shekhawat said tourism will play an important role in India's journey towards Viksit Bharat by 2047 and have the potential to extend economic growth beyond major urban centres to towns, villages and remote regions. India will host the BRICS Youth Ministers Meeting and the BRICS Sports Ministers Meeting at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. The BRICS Youth Ministers Meeting will be held today, while the BRICS Sports Ministers Meeting will take place tomorrow. The meetings will be chaired by Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya, with Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Khadse also participating. According to the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Youth Ministers Meeting will focus on strengthening cooperation in youth development and empowerment, with the discussions on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. President Draupadi Murmu will confer National Teachers Awards to 48 school teachers on the 5th of next month at Vigyan Bhavan in New Delhi. The Education Ministry said school teachers have been selected through a three-stage selection process at the district, state and national levels by the Department of School Education and Literacy. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government. Out of the 48 selected teachers, 26 are male and 22 are female. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. India and Nepal have reviewed the entire spectrum of bilateral cooperation and reaffirmed their commitment to strengthening cooperation on border management and security. The discussion came up during the 14th meeting of the India-Nepal Joint Working Group, which concluded in Dehradun yesterday. More from our correspondent.
4: Discussions covered measures to address trans-border crime and criminal activities and strengthening and effective utilization of border infrastructure, particularly integrated checkposts, roads and railway networks. The two sides also discussed the removal of encroachment and maintenance of boundary pillars. They exchanged views on strengthening institutional coordination and capacity building across various sectors and agreed to sustain engagement in these areas. Both sides also agreed that the next meeting of the joint working group will be held in Nepal at a mutual convenient date. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: India and the UK have agreed to expand bilateral exchanges between the armed forces of the two countries through joint exercises, training and capacity building, as both sides held a key dialogue in Delhi. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh co-chaired the 25th India-UK Defence Consultative Group meeting with Permanent Under Secretary for Defence of UK, Jeremy Pocklington, in the national capital. During the meeting, both the countries reviewed the ongoing defence industrial cooperation with emphasis on research and development through the India-UK Vision 2035 and the 10-year Defence Industrial Roadmap. Ministry of Defence said both sides acknowledged the robust maritime security collaboration in the Indo-Pacific, including establishment of the Regional Maritime Security Centre of Excellence under the Indo-Pacific Oceans Initiative. The government has said that a total of 29 foreign direct investments, FDI, have been reported under the revised framework as of the 20th of this month, involving proposed FDI of more than 4,800 crore rupees. These investments span a range of sectors, including information technology, artificial intelligence, information and communication, manufacturing, pharmaceuticals, data centers, and transport services, among others. In Kerala, the 72nd Nehru Trophy Boat Race will be held today at Punnamada Lake in Alappuzha. The prestigious annual event will witness fierce competition among traditional snake boats. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
5: A total of 71 boats, including 22 Chundan Vallams or traditional snake boats, will compete in today's Nehru Trophy boat race at Punnamada Lake in Alappuzha. The Nehru Trophy is one of Kerala's major sporting and cultural events, attracting visitors from across the country and abroad. Boat race enthusiasts, including foreign tourists, have already arrived in Alappuzha for the event. A local holiday has been declared today for government officers and educational institutions in Alappuzha district. With the boats, oarsmen and supporters are all set, Alappuzha is gearing up for another spectacular edition of Kerala's iconic water festival. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: On to sports. In the BWF Badminton World Championships, the Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will take on top seeds Liu Shengshu and Tang Ning of China in the semi-finals at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi today. The Indian duo stormed into the semi-finals yesterday, defeating fourth seeds Jia Yi Fan and Zhang Shu Xian of China. With this victory, Teresa and Gayatri have assured India of a coveted medal at the prestigious championship. In FIH Hockey World Cup, Indian men's team will begin their second stage campaign against host Netherlands today at Amstelveen. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India secured second place in Pool D with a convincing 5-3 victory over Pakistan. The win was particularly significant as India displayed greater attacking fluency and finished the pool stage on a strong note. India will now join England at the top two teams from Pool A in Pool E. The top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. Unlike England, India will not carry any points into the second stage and will have to start afresh today against a strong Netherlands side. Ace Indian javelin thrower Neeraj Chopra finished second at the Lausanne Diamond League with a season best throw of 88.05 meters, just 9 centimeters behind Sri Lanka's Ramesh Tharangapathirage, who won with 88.14 meters. The two-time Olympic medalist Chopra's 88.05 meter throw marked a strong return to the 88 meter range after a difficult start to the 2026 season. Pathirage reclaimed the lead with his third attempt, and neither athlete could improve their marks in the remaining rounds. Anderson Peters finished third with 86.69 meters, while Keshawn Walcott took fourth with 83.71 meters. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. Heavy rainfall conditions are also expected to prevail over the northeastern parts of the country, including Assam, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till tomorrow. According to the IMD, similar weather conditions are expected to prevail over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
6: Thank you, Anuja. The Statesman quotes Prime Minister Modi's address at a World Leaders Forum unveiling the next generation roadmap, asserting that India has emerged as a bright spot for global growth. The Asian Age mentions about the Prime Minister urging the CEOs of space startups to find new uses for tech and make lives easier. A top front page headline in Hindustan Times states, biggest El Nino in over a century to dial up global heat and could push 2027 as the hottest year ever recorded globally. Apple and Google are set to deepen their manufacturing presence in India, reports Financial Express. And finally, all the dailies have covered the news of passing away of veteran actress Saukar Janki, the versatile face of Southern cinema at the age of 94. She started as a drama artist in All India Radio and went on to captivate viewers in Tamil, Telugu and Kannada films. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
8: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट सावन के सुर, संगीत साधना और सरोकार। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर स्मिता सासबुद्रे, कुलगुरु राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत।
9: नमस्कार, हर बार की तरह हम हाजिर हैं पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि सावन की रिमझिम, बारिश की बूंदें और संगीत जीवन में एक अलग ही तरह का सुर पैदा कर रहे हैं, जो थोड़ा सा आलसी है और थोड़ा हलचल भरा है। भारतीय संगीत में भी ऋतुओं और भावनाओं का गहरा रिश्ता रहा है। मौसम का पूरा सम्मान करते हुए इस बार हमने अतिथि के तौर पर बुलाया है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति श्रीमती स्मिता सहस्रबुद्धि जी को। तो देर नहीं करते और मैडम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
10: धन्यवाद।
9: हमें बताइए कि आकाशवाणी से आपका परिचय कब और कैसे हुआ और आकाशवाणी से जुड़ी अगर कोई खास याद है तो वो भी शेयर कीजिए।
10: जरूर। आकाशवाणी रीवा, मैं चूंकि मेरे फादर रीवा में रहे तो मेरा सबसे पहला संपर्क आकाशवाणी के रीवा केंद्र से हुआ, जहाँ लगभग 70 के दशक में जो बच्चों का प्रोग्राम आता है सबसे पहले पार्टिसिपेट किया उसमें। उसके बाद मैं शायद 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब मैं सुगम संगीत की बी ग्रेड आर्टिस्ट हो गई और तब से निरंतर मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। और आकाशवाणी से अगर जुड़ी बातें कहूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा, किस तरह आपके माइक्रोफोन्स होते हैं उनमें कैसे अपने वॉल्यूम को डालना है, शब्दों को कैसे उच्चार करना है, ये सब मैंने आकाशवाणी में सीखा। अच्छे अच्छे पैक्स के साथ मैंने काम किया और उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत सारे गीतों को गाया। पहले आपके आकाशवाणी में एक सीरीज चलती थी इस मास का गीत, तो रीवा आकाशवाणी में मैंने लगभग हर महीने में इस मास का गीत गाया है। इसी दरमियान मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी भी हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आकाशवाणी से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ अपने करियर में।
9: अब हमें अपने शुरुआती जीवन, बचपन, परिवार, शिक्षा और पृष्ठभूमि के बारे में बताइए।
10: जी ज़रूर। जैसा कि मेरे बारे में जो लोग जानते हैं तो ये बहुत स्पष्ट है कि मेरे पिता वही मेरे गुरु रहे, प्रोफेसर पीएल गोहतकर जी।
9: जी,
10: तो उन्हीं से मैंने सीखा और मैं कहूँ कि बाल्यकाल में घुटी की तरह संगीत को सिखाया गया तो अत्युक्ति नहीं होगी। मुझे बचपन से ही लगाव रहा। फिर जब मैं 8वीं में पहुंची, 8th क्लास में, उसके बाद 9th से हमको सब्जेक्ट चूज के लिए ऑप्शन दिए मिलते थे, तब सब लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तुम तो साइंस में भी अच्छी हो, तुम मैथ्स में भी अच्छी हो, लेकिन परिवार का जो चला आ रहा था संगीत का माहौल, मेरी माँ भी सितार बजाती रहीं, मेरे नाना जी ग्वालियर घराने में बहुत विख्यात सितारिस्ट रहे, बालकृष्ण बुआ, भीमपुरे वाजपेयी, उन्होंने सितार की किताबें भी लिखी हैं, तो इस तरह संगीत का पारिवारिक माहौल वंशानुक्रम में मुझे मिला। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया, न तो मैं साइंस पढ़ूंगी न मैथ्स पढ़ूंगी, क्योंकि हमारे दौर में या तो आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, ओनली टू ऑप्शंस। तो इसलिए मैंने सबको छोड़ के मैंने संगीत की राह पकड़ ली। बहुत से लोगों ने कहा कि कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर सकोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, और सब कोई बहुत बड़े बड़े कलाकार तो बन नहीं जाते, पर पता नहीं क्यों मेरी रुचि थी और इसमें सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने। मेरे पेरेंट्स ने कभी, चूँकि इसी माहौल में रहे, वो संगीत के ही थे, तो मेरा बहुत सपोर्ट किया और इसको लेते हुए संगीत मैंने ग्रेजुएशन में भी लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिया, मतलब था ही पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा संगीत में गायन में था, और स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तर पे मैंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में फैकल्टी टॉप यानी कला संकाय में मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, संगीत की बदौलत ही मेरे पास सभी विषयों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, कला संकाय में प्रथम स्थान। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा निर्णय था और मेरे माता पिता ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जो मेरे गुरु भी हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि संगीत सिर्फ गायन से ही नहीं होगा, आपको वादन भी सीखना होगा, इसलिए तबला सिखाया मुझे, चूँकि मेरी माँ सितार में थी तो सितार बजाना सिखाया, और फादर ने मेरे को बोला कि लय को पक्की करने के लिए आप कथक नृत्य भी सीखोगी। तो एक साथ इतनी सारी विधाएँ हमने सीखी हैं। आजकल के युवा पीढ़ी को, बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर आप जितना करोगे ना, आपका माइंड एकदम ब्रॉड होगा और सोचने की दिशा मिलती चली जाएगी। तो ये ऐसा मेरा रहा कि शुरू से ही मैंने संगीत को ही अपनाया और वहाँ तक पीएचडी तक मैंने संगीत को नहीं छोड़ा, और बाय चांस फिर संगीत में ही नियुक्ति हो गई। ये ईश्वर के दिए एक बहुत बड़ा संयोग था कि मुझे जो विषय अच्छा लगा उसी का मैं अध्यापन करती रही, तो अपने आप रुचि निर्मित होती गई और नया नया नवाचार करने की प्रेरणा भी मिलती रही।
9: थोड़ा उस अनिश्चित करियर के बारे में बताइए जिसके बारे में सब कहते थे कि कोई फ्यूचर नहीं है।
10: बिल्कुल बिल्कुल कहते थे कि भाई इसमें क्या आपको नौकरी मिल सकती, क्या मिल सकती है, लेकिन जो मैं, जैसे मैंने कहा ना कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर मैंने कला संकाय में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो अपना मेरिट को मैंने बनाया। और इसके बाद जब मैंने पीएचडी करने की सोची, तब मैंने ये सोचा कि ऐसी कुछ बात निकल के आए जिसमें लोगों को ये पता लगे कि हमारी जो गीत शैलियां हैं शास्त्रीय संगीत की, उनका विकास किस माध्यम से हुआ। 15वीं शताब्दी से मैं 18वीं शताब्दी तक लेके आई, तो हिस्ट्री से भी जुड़ी। इसके बाद जब मैंने पीएचडी कर ली, तो फिर मेरा उद्देश्य रहा कि संगीत को अकादमी से जोड़ने का, मतलब अकादमिक स्तर पे अपन क्या कर सकते हैं। निरंतर शोध पत्रों का लेखन किया, वाचन किया, पुस्तकों का बहुत अध्ययन किया, मतलब संगीत विषय ही नहीं, मेरा चूंकि ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य विषय भी था तो हिंदी साहित्य में भी रुचि थी मेरी, तो हिंदी की भी अच्छे अच्छे जो हमारे उपन्यासकार हुए हैं उनको मैंने पढ़ा। और फिर इसका फ़ायदा मुझे कैसे मिला करियर बनाने के लिए या अपने ज्वाइन

0: इनके बाद भी और अपग्रेड होने के लिए कि वो हिंदी साहित्य के जो हमारे महान लेखक उपन्यासकार कवि हो गए हैं उनको मैंने संगीत से जोड़ दिया। जैसे कविवर बिहारी के ऊपर मैंने काम किया, बिहारी सतसई का पूरा उसको कंपोज करने की कोशिश की। इसी तरह हमारे जो राष्ट्रवादी प्रखर कवि हो गए हैं उनकी रचनाओं को कंपोज करने की कोशिश की। इस तरह इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो संगीत को मैंने अकादमी से जोड़ने का प्रयास किया और मुझे लगता है यही मेरे करियर में सहायता हुई, जिसको कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता तो इस तरह एक लाइन निर्माण की मैंने कि संगीत को अकादमी से जोड़ा।
1: क्योंकि मैडम जो कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, उनको ये नहीं पता था कि ये हो सकता है।
0: जी, ये भी एक राह हो सकती है।
1: जी हाँ, मैं उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं वो श्रोता और जो युवा हैं उनको ज़रूर एक राह मिलेगी। हो सकता है अभी दूसरे ना समझ रहे हों, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है
0: जी
1: जो कभी नहीं हुआ होता।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: स्मिता जी, हमें बताइए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ क्या हैं और विश्वविद्यालय को आगे किस दिशा में ले जाना चाहिए?
0: जरूर, मुझे ये बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के एक मुखिया के रूप में काम कर रही हूं और उसके प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती हूं। लेकिन मुख्यतः मैं एक संगीत की विद्यार्थी हूं, इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस कला को, जिसमें चूंकि हम राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ संगीत मात्र नहीं है, गायन है, वादन है, नृत्य है, ललित कला के सभी विषय हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और नाट्य एवं रंगमंच की विधा भी है। तो इन सबका जो स्वरूप बनता है वो ललित कला का स्वरूप बनता है, जो हमारे दर्शन शास्त्र में माना गया है। दर्शन में भी इन कलाओं को समाहित किया गया है, ललित कलाओं को। तो इनका प्रचार, प्रसार, विस्तार, संवर्धन करना ही मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा और अभी इसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। और इसके संदर्भ में समय समय पर छोटे छोटे पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, जिसको हम लघु अवधि के पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसके माध्यम से समाज का हर व्यक्ति इन विधाओं से जुड़े। और 2-3 महीने के से छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने चालू किए हैं, उसमें हमने आयु का कोई बंधन नहीं रखा है कि आप किसी भी उम्र के हों, ये चूंकि ललित कलाएँ हैं इसलिए आप इसको सीखो। मैं महिला हूँ इसलिए गृहणियों की बात करूँ तो कभी सीखा होता है, कभी जाना होता है, लेकिन ये अवसर ही प्राप्त नहीं होता कि इसको सीखें, इसको आगे बढ़ाएं। उन सबके लिए इस प्रकार के हमने छोटे छोटे कोर्सेज चालू किए हैं। लोक संगीत और लोक संस्कृति को लेकर काम करना मेरा उद्देश्य है और मेरा बहुत मन है कि इसको लेके काम किया जाए। ग्वालियर, उसके आस पास भी आप देखोगे तो संगीत की परम्परा रही है, लोक परम्पराएँ जिसमें नृत्य है, नाट्य है, गायन है और ललित कला की भी क्रियाएं हैं बहुत सारी, उन सबको लेकर भी छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम चालू कर रहे हैं और कुछ तो हो भी गए हैं। आज आकाशवाणी ने ये अवसर दिया है कि मैं ये भी आह्वान आपके माध्यम से कर सकूं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ जाएं।
1: तो इस प्रकार संगीत, जिसे हमेशा एक बंद कमरे में एकांत में, उसको आप सामान्य जन से जोड़ने का।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर किसी के जीवन में होता तो है ही संगीत।
0: जी जी जी,
1: किसी न किसी जगह पर संगीत अवश्य होता है।
0: जी,
1: लोक कला जी में तो है ही, हमारा ग्वालियर बहुत समृद्ध है
0: जी,
1: लेकिन ग्वालियर की संगीत परंपरा
0: जी जी
1: अनूठी ही है
0: जी।
1: इस विरासत को आज की युवा पीढ़ी से जोड़ने के लिए आपके हिसाब से क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्वालियर की बहुत सशक्त संगीत परंपरा है, बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि ग्वालियर ही वो क्षेत्र है जहाँ, चूँकि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने शैलियों पे काम किया, गीत शैलियों पे, तो ध्रुपद का जन्म जो सबसे प्राचीन शैली है वो भी ग्वालियर में हुआ और उससे जो 18वीं शताब्दी में ख्याल बने वो भी यहीं से उत्पन्न हुए हैं, यहीं से मतलब सृजन हुआ है उनका, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर जो घराना ग्वालियर का बना वो मूल घराना है जिसके आधार पर अन्य घरानों की स्थापना हुई और आज भी ग्वालियर को मूल घराना माना जाता है। तो ऐसी सशक्त परंपरा के अगर हमारे पास है तो युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि उसको अच्छे से सीखे, और गुरुओं का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि उस मूल रूप को सिखाएं, उस फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसको सीखना बहुत आवश्यक है। जब तक आप फंडामेंटल, आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आप महल खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ों को सीखें, समझें। और इसके लिए मेरे विचार से विभिन्न प्रकार के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, जैसे ध्रुपद केंद्र अपने यहाँ चल रहा है, इस विधा के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसी तरह ख्याल का केंद्र भी चालू हो, कि जिसमें बच्चे ग्वालियर का जो ख्याल है वो बिल्कुल अलग ढंग का है। बेसिक जो है वो ग्वालियर के ख्याल गायके में दिखाई देता है, बिल्कुल मूल चीज़ें उसको सीखना समझना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह के अगर केंद्रों की स्थापना होगी तो इसमें युवा पीढ़ी जुड़ेगी तो निश्चित रूप से ग्वालियर की संगीत परंपरा और भी सशक्त रूप से उभरेगी।
1: आपने संगीत सीखने की बात करी और उसमें नींव की बात की, अब आप देख रहे हैं कि आज के समय में जो युवा संगीत सीख रहे हैं और सुनने के लिए भी डिजिटल मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है तकनीक संगीत सीखने में मदद कर सकती है? कर सकती है तो किस तरह कर सकती है?
0: देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं पूरा का पूरा तकनीकी युग है, तो समय के साथ तो चलना है, हमको समय से पीछे उठकर नहीं चलना है। निश्चित रूप से सहायता कर सकती है, लेकिन बात वही है कि कोई भी विषय ले लो, सिर्फ संगीत की क्या बात, कोई भी विषय ले लो, हम पुस्तकों को जो पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होगा वो आपको अन्य माध्यम से देखने से वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कितना कट शॉर्ट कर दिया जाता है, वही बात संगीत में भी है। बेसिक और मूल चीज़ें नहीं पता लगेंगी इस तकनीक के कारण, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ और ना उसकी विरोधी हूँ, क्योंकि हमको उसके साथ भी सामंजस्य बिठाना है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुख्य रूप से अपनी नींव मजबूत करें, फिर तो आपकी दिशा खुल जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी कि आप कहीं भी कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: वो किसी गुरु के जरिए ही संभव है?
0: हाँ, गुरु के जरिए ही सीखना चाहिए,
1: कक्षा में बैठकर।
0: सीना बसीना कहते हैं इसको, हमारी जो कलाओं की, जो सभी कलाओं की जो शिक्षण पद्धति, वो सीना बसीना, सीना बसीना यानी आमने सामने बैठकर सीखने की पद्धति।
1: सीना बसीना,
0: सीना बसीना
1: जी,
0: मतलब आमने
1: दोनों
0: सामने,
1: आमने सामने,
0: हाँ,
1: रूबरू,
0: रूबरू जिसको कहेंगे, हाँ
1: जी।
0: लेकिन जब तक आप इसमें नहीं जाओगे ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, कैसे आप बताओगे? तो जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। बेसिक सीखना जरूरी,
1: बेसिक सीख के फिर आप टेक्निकल उस पर स्विच कर सकते हैं।
0: आपकी दृष्टिकोण बड़ा हो जाएगा ना, क्या गलत है क्या सही है, तो आप समझ लोगे ना, अन्यथा आप गलत ही सीखते जाओगे। आवश्यक नहीं कि जो आप तकनीकी माध्यम से देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, सब सही हो। अगर आप AI में भी जाओगे तो एक कैप्शन लिख के आता है कि AI गलत जानकारी देता है,
1: वो डिस्क्लेमर हमेशा
0: रहता है ना
1: जी जी।
0: तो
1: हम उसको इग्नोर कर दें, लेकिन वो रहता हमेशा,
0: इग्नोर कर दें। और तब भी मैं कह रही हूँ ना कि मैं इसकी विरोधी नहीं हूँ
1: जी,
0: लेकिन समझ के साथ उपयोग होना चाहिए।
1: आजकल कहा जाता है
0: जी
1: कि संगीत का हमारे मन और भावनाओं पर गहरा असर होता है
0: जी,
1: और जो हमारा दौर है
0: जी,
1: मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, हम टेंशन्स को कैसे कम करें, तो इसमें संगीत की भूमिका क्या हो सकती है और क्या संगीत को एक हीलिंग प्रोसेस के रूप में देखा जा सकता है?
0: बिल्कुल देखा जा सकता है। और जिस तरह से आपाधापी का युग में हम लोग जी रहे हैं, न खाने का टाइम है, न सोने का, न किसी चीज़ का, बहुत बहुत दौड़ भाग जीवन की है, और उसमें मुझे लगता है कि एक यही चीज़ है जो आपको सुकून देगी। लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, ध्यान की तरफ, योगा की तरफ जाते हैं, इन सबका सम्मिश्रण है संगीत में। आप जब एकाग्र होकर उसको सुनते भी हैं ना, तो आपका ध्यान हो जाने लगता है, आपका मेडिटेशन होता है। और उनकी जो गाता है या जो वादन करता है या जो नृत्य भी कर रहा है, ललित कला में भी है, तो उसकी एकाग्रता है, उसके हाथ भी चल रहे हैं, उसके पैर भी चल रहे हैं, उसकी श्वास का भी नियंत्रण हो रहा है, तो उसका योग भी हो रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि जो मेडिटेशन, ध्यान, योगा सबका सम्मिश्रण है, और निश्चित रूप से मन और भावनाएँ दोनों का संबंध तो है ही संगीत से। ऐसा नहीं कि सिर्फ गीत ही हो, वाद्य का भी असर होता है। कई सारे इस समय तो कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, और विश्वविद्यालय की तरफ से एक नीति या आप कहें एक विचार भी अपनाया जा रहा है कि हमारे यहाँ से जो शोध हो रहे हैं, क्योंकि शोध की इसमें बहुत आवश्यकता है कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए और क्या हो रहा है, तो हम अपने शोधार्थियों को ये विषय देते हैं कि आप योग और संगीत, ध्यान और संगीत, या विभिन्न प्रकार की जो हमारी भावनाएं हैं जिसे हमारे मन के स्थायी भाव उद्वेलित होते हैं, उनको लेकर आप कार्य करें। तो इसमें अगर शोध का काम होगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे हम उसको प्रूव भी कर सकेंगे,
1: प्रामाणिकता आ जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि म्यूजिक थेरेपी जैसा कुछ एक्चुअल कॉन्क्रीट
0: जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है।
1: व्यक्तिगत रूप में देखा है इसे?
0: मैंने इस ऐसे देखा है कि चूंकि अभी मैं प्रशासनिक पद पे हूँ, इसके पहले मैं 40 वर्षों तक शैक्षणिक कार्य ही किया मैंने, अब मैं पिछले 2.5 साल से प्रशासनिक पद पे हूँ, तो प्रशासनिक जो रहता है ना स्ट्रेस वाला होता है, आप भी समझते हैं और श्रोता भी जानते हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होगा स्ट्रेस में रहेगा। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं को रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं उठ के क्लास में चले जाती हूँ आज भी, और मैं बच्चों को पढ़ाने लगती हूँ, और लौट के आके जो मुझे काम लगता है कि अब ये नहीं हो सकता था वो हो जाता है। मेरे को दिखने लगता है कि अरे इस रस्ते चलो ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं
1: जी।
0: बहुत हमको थकान लग रही है, आज सुबह उठते मुझे ऐसा लगेगा कि अरे आज मैं नहीं बिल्कुल कुछ कर पाऊँगी, मैं 15-20 मिनट ध्यान बिल्कुल एकाग्र होके कुछ नहीं, अपने स्टार्टिंग के अलंकारों का ही गायन कर लेती हूँ, मुझ में एनर्जी आती है और मैं खड़ी हो जाती हूँ। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ और इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रही। 40 मिनट की क्लास, एक घंटे की क्लास में मैं होके आती हूँ और फाइलें टेबल पे पड़ी होती है और मुझे पता लग जाता है कि अब इसको ऐसे बढ़ना है, आगे समझ में आ जाता है कि यार इसको ऐसे डील कर लेते तो हो जाता, और उसी को लेके परेशान हो रही हूँ। 15 मिनट पहले 40-45 मिनट की क्लास लेके आ गई, अभी भी मैं बच्चों को जाके पढ़ाती हूँ या कोई नया कंपोज कर लेती हूँ। जब बहुत उकता जाती हूँ तो सोचती हूँ कि कुछ नया कंपोज कर दें या बच्चों को कुछ बता दें, पुरानी चीज़ें सिखा दें।
1: आप तो संगीत की साधक रही हैं लंबे समय से, जीवन के शुरुआती दौर से, तो आज आपके साथ ये स्थिति है कि आप रीसेट कर देता है संगीत। हमारे जो श्रोता हैं उनमें से अधिकांश जो संगीत के बारे में जानते हैं वो इतना ही जानते हैं ये तो कुछ ऐसा है कि डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हमारे पारिवारिक उसमें भी यही देखा जाए, अरे नाच गाना मत करो। ये एक समझ या ज्ञान, ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, ये अभी हमारे समाज में नहीं है। क्या लगता है कि क्यों नहीं है? क्या ये सच है कि डिस्ट्रैक्शन होती है जो आम आदमी है उनको?
0: नहीं, मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय तो समाज की प्रवृत्ति बदल रही है। जो हमारे यहाँ युवा बच्चे आ रहे हैं, 700-800 बच्चों के बीच रोज में रहती हूँ, विभिन्न संकायों के हैं वो, उनका जो व्यवहार है वो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही सुधरा हुआ है, मतलब भारतीय संस्कृति के निकट है। और हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंड के लिए और नहीं बढ़ती, हमेशा सकारात्मक दृष्टि देती है। और इस समय घर परिवारों में मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है। कितने सारे पेरेंट्स आते हैं और दूर दूर से आए हैं, हमारे यहाँ चूँकि हॉस्टल अभी निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, और अपने स्वयं के खर्चे से लेते हैं और सीख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत दिशा में संगीत या कलाएँ ले जाती हैं, निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा ही देती है और जो आज की महती आवश्यकता है।
1: तो म्यूजिक कोई डिस्ट्रैक्शन का विषय कभी नहीं है?
0: ना, कभी नहीं। इस तरह का म्यूजिक सुनो, बहुत लाउड है, जो जिसको कहूँगे अश्लील है या भद्दा है, निश्चित रूप से नकारात्मकता ही पैदा करेगा।
1: आपने अभी युवाओं की बात की जो संगीत के विद्यार्थी हैं, तो जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में क्या आपका संदेश है?
0: युवाओं के लिए तो मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बस ये है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति को न छोड़ें। और जब हम भारतीय संस्कृति की ओर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें भारतीय संगीत का भी आकर्षण होगा, भारतीय कलाओं का भी आकर्षण होगा। और इसके लिए जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको सीखें, समझें, जानें। बहुत सारे हमारे जो बच्चे IITians ऐसे हैं जो इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देश के सभी IITs जो हैं उनके साथ एक MOU साइन किया, समझौता ज्ञापन हायर एजुकेशन और सभी विश्वविद्यालयों का किया है। क्यों? उनके पास क्या है, तकनीक है, तो वो उस टेक्नोलॉजी को हमारी परंपरागत जो शिक्षण है उसे कैसे जोड़ें। हमारे जो युवा हैं जो अन्य विषयों को भी सीख रहे हैं, टेक्निक्स को जानते हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो भी इससे जुड़ें और हमारे मूल को समझें। अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक की ओर भी जाते हैं तो वहाँ भी लय है, रिदम है, सब है। अभी हमारा प्रयास विश्वविद्यालय का ये चल रहा है कि जर्मनी की एक टीम है जो वेस्टर्न म्यूजिक पे काम करती है, हमारा विश्वविद्यालय इंडियन म्यूजिक पे काम कर रहा है। दोनों के कोलैबोरेशन में एक हम सेमिनार करने जा रहे हैं एक अगले मंथ के अगले माह में, जिसमें हम उनकी तकनीक को जानेंगे, वो हमारी तकनीक को जानेंगे, फिर दोनों का सम्मिश्रण करेंगे। ये जो भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं ना कि वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत अच्छा है या वेस्टर्न की ओर जाना है, तो इससे दूर रहें। वहाँ मूल में भी हमारा भारतीय संगीत है, ये खुद वो लोग मान रहे हैं। उनके ऑक्टेव हैं, हमारा सप्तक है। ऑक्टेव और सप्तक में कोई फ़र्क नहीं है, अगर हम बहुत कुछ टेक्निकली बात करें तो बहुत गूढ़ बात हो जाएगी वो
1: जी।
0: लेकिन मैं बस मोटे तौर पे युवाओं से ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो हमारी भारतीयता से जुड़ें, और यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप उनको सिखा दोगे जहाँ आप सीखने के लिए भाग रहे हो। इसलिए अपनी बातों को समझे, अपने घर को तो जाने, घर में रहना सीखो, तब आप बाहर भी जा सकते हैं
1: और घूम घाम के वापस आ जाइए।
0: घूमो ना, खूब घूमो, लेकिन वापस जरूर घर आओ।
1: ये बातचीत उस मोड़ पे आ गई है कि मैं आपसे पूछ लूँ ये सवाल, रिमिक्स और फ्यूजन का जो दौर है इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, हमारे अच्छे अच्छे कलाकार शास्त्रीय संगीत के रिमिक्स और फ्यूजन की ओर जा रहे हैं। आपने शंकर महादेवन जी को सुना ही होगा, सभी श्रोताओं ने भी सुना है, तो किस तरह रिमिक्स करते हैं वो, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भारतीय संगीत को पकड़ के करते हैं। आप देखना उनमें बेस है। इस तरह कई सारे लोग हैं जो इस काम कर रहे हैं, मैं तो उदाहरण के रूप में उनका नाम चूँकि याद आ गया इसलिए लिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि रिमिक्स करने जा रहे हैं तो अपनी चीज़ को छोड़ रहे हैं। रिमिक्स करना है मतलब जोड़ना है, फ्यूजन करना है, उसमें लगाना है। किस में लगाना है? हमारे मूल में वो तत्व लगाने हैं जो आपको आकर्षित कर रहे हैं, ताकि हमारी चीज़ आकर्षित हो जाए। तो रिमिक्स बिल्कुल बुरा नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ की विरोधी नहीं हूँ, आधुनिक किसी परंपरा की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसको अपने से जोड़ना है, अपनी परंपरा से, अपने संगीत से, अपने मूल से, अपनी कला से उसको जोड़ना है, बस इतनी सी बात।
1: एक व्यक्तिगत उत्सुकता मेरी भी है, कार्यक्रम के अंत की ओर हम आ गए हैं और अब मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ और कह सकती हूँ कि नख से शिख तक संगीत कहा गया है किसी नायिका के लिए, तो संभवतः आपकी जैसी ही होगी। आपको वो कौन सा गीत बहुत पसंद है जो मैं आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनवा सकूँ?
0: वैसे तो मुझे सारे गीत पसंद हैं, पर मेरे को पुराने गीत ज़्यादा पसंद हैं। पुराने गीतों में क्या हो जाता है कि राग तत्व भी दिखते हैं, इसलिए आप अगर सुनवा सकते हो तो तू जहाँ जहाँ चलेगा,
1: मेरा साया साथ,
0: मेरा साथ, वो राग नंद पे आधारित है
1: जी।
0: तो ऐसे मैंने एक प्रयोग ये भी किया था, मतलब मैं फिर से थोड़ा सा
1: प्लीज
0: युवाओं को, और आजकल कर रहे हैं बच्चे, मैंने कई सारे देखे, रील्स भी देखी कि जो हमारे फिल्म संगीत हैं उसमें शास्त्रीय तत्व कहाँ हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं वो फिल्म में भी देखते हैं कि उसमें कहाँ तत्व निकल के आ रहे हैं। यही तो आज की आवश्यकता है कि कैसे हम ढूंढें अपनी भारतीयता को, अपनी संस्कृति को, अपने संगीत को। तो ये कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। तो आप रागनंद पे आधारित है, आप ये गीत अगर सुनवा सकें
1: जी। आपने ये बात हमें बताई, हमें भी पता चली, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: स्मिता जी, आपने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से हम सभी को संगीत की खूबसूरत दुनिया से जोड़ने के लिए जो समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके श्रोताओं तक अपनी बात कह सकी। बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट सावन के सुर, संगीत साधना और सरोकार। डॉक्टर स्मिता सहस्रबुद्धे, कुलगुरु राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम भोपाल से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शिवपुरी के पिपरसमा स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वे कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी भी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कल खजुराहो में किन्वित्वा लिंक परियोजना के काम की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रस्तावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 32 IAS और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। वहीं 10 जिलों के जिला पंचायत CEO को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। और प्रदेश में मानसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोता और साथियों को आपके मित्र राजा का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियां हैं दोस्तों, वो तेज़ी से फैलती हैं। बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है सावधानियाँ और बचाव। दोस्तों, बारिश का मौसम कई बीमारियों के लिए खतरा बनता है। इस मौसम में गंदगी होने और साफ सफाई के अभाव में मच्छर जो हैं वो श्रोताओं तेजी से पनपते हैं, जिनके काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, मच्छरजन बीमारियों में मलेरिया जो है वो सबसे प्रचलित बीमारी है। मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवी की वजह से होता है और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर होती है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन मच्छर जन बीमारियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा घातक संक्रमण जो है वो डेंगू का होता है। जी हाँ श्रोताओ, डेंगू मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियाँ होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह के समय काटते हैं। श्रोताओ, डेंगू बुखार जुलाई से अक्टूबर माह में सबसे ज़्यादा फैलता है। मच्छरों के संक्रमण से होने वाली किसी भी बीमारी में खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति टीवी, एड्स या कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला होता है। मच्छरों के काटने से जो संक्रमण होता है उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ठंड के साथ तेज़ बुखार, सिर चकराना, घबराहट होना, उल्टी आना, जुकाम होना, शरीर में शर्करा का स्तर तेज़ी से गिरना, कभी कभी संक्रमित व्यक्ति का बेहोश हो जाना, कभी कभी के साथ बुखार और फिर बुखार कम होने पर पसीना आना। श्रोता, अब आपको बताते हैं कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए क्या करें। सबसे पहले घर के आसपास की नालियों को खुला न रखें, घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, घर में किसी तरह की कबाड़ या अनुपयोगी सामान को इकट्ठा ना होने दें और समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव जो है वो ज़रूर करें। घर के खिड़की और दरवाजे जालीदार रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुलास्तीन के कपड़े ज़रूर पहनें, खाली डिब्बे, गमले या अन्य ऐसी चीज़ें जो घर में रखे हैं उन्हें, जिनमें बारिश का पानी कई दिन तक भरा रहे, उन्हें घर में ना रखें, जिससे उनमें मच्छरों को पनपने का मौका मिले। तो श्रोताओ, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से बचे रह सकते हैं।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: श्रोता, कार्यक्रम में भी हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। श्रोता, बारिश के मौसम में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए मच्छर जन बीमारियों से बचाव के तरीके तो अभी हमने आपको बताई, लेकिन दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ और भी उपाय करना ज़रूरी है। या दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पीन, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना भी बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर व्यायाम करने के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो पैदल चलकर भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, रोज़ 10,000 कदम चलने से आप अपने शरीर का जो है वह संतुलन बनाए रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर इससे आपका कंट्रोल में रहेगा।

दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में कम से कम 10,000 कदम पैदल चलना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन अगर इतना चलना संभव नहीं हो पा रहा है तो 5 से 7 हज़ार कदम चलकर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा चलने की आदत अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें। और दोस्तों खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। रात का खाना जो है वह रात को 8 बजे से पहले पहले अवश्य खा लें, और कोशिश ये करें कि रात को हल्का भोजन ही खाएं, और रात को सोने की जो आदत है वो जल्दी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज़्यादा देर तक जागना मोटापा और शरीर को अन्य बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, इसीलिए रात को जो अपने सोने का जो समय है उसको भी एक समय निर्धारित करें कि आपको किस समय सोना है। और दोस्तों सोने का जो समय है वो भी निर्धारित होना बेहद ही ज़रूरी है। आपको एक दिन में कम से कम 7 से 9 घंटे की जो है वो नींद की ज़रूरत होती है, इसीलिए सोने के घंटे गिनने के बजाय भरपूर और पर्याप्त नींद अवश्य लें शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए। दोस्तों रोज़मर्रा में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल आपके दिल को की हेल्थ को सेहत हेल्दी रख सकता है। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ने वालों में दिल से जुड़ी बीमारियों से जो खतरा है वो 39% तक जो है वो कम हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने से दोस्तों दिल की धड़कन और सांस लेने की जो गति है वो बढ़ती है, इससे कार्डियो फिटनेस बेहतर करने में भी मदद मिलती है। वहीं रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ने से आर्टरीज में प्लेग की बीमारी का जो जोखिम है वो 20% तक कम हो सकता है। श्रोता अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो सीढ़ियाँ चढ़ने को आप नज़रअंदाज करें, घुटनों या सांस लेने में दिक्कत है तो आप अपने सुविधा के अनुसार कम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। श्रोता साथियों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पीन और पर्याप्त नींद लेना जितना ज़रूरी है दोस्तों उतना ही ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। जी हाँ दोस्तों पानी पीना भी हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर हम घबराहट मानसिक तनाव या एंजाइटी महसूस होने पर इसके पीछे काम के दबाव या नींद की कमी को वजह मानते हैं, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार इसका एक बड़ा कारण आपका कम पानी पीना भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों एक अध्ययन के मुताबिक शरीर में पानी की कमी का सीधा असर हमारे दिमाग मूड और मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शारीरिक और मानसिक दोनों फायदे मिल सकते हैं। श्रोताओं डिहाइड्रेशन का असर एंजाइटी के साथ मूड और नींद पर भी पड़ सकता है। रिसर्च में कम पानी का संबंध थकान कन्फ्यूजन और कम नींद से मिला है। अगर दोस्तों कुछ लक्षण दिखें तो समझें कि आपके शरीर में पानी की कमी है, जैसे कि मुंह सूखना, यूरिन का रंग गहरा पीला, कब्ज, सिरदर्द, उल्टी, थकान, सुस्ती, ड्राई स्किन और दिल की धड़कन तेज होना पानी की कमी के जो हैं वो संकेत हो सकते हैं। वहीं दोस्तों पानी की कमी से बच्चों में चिड़चिड़ापन, सुस्ती और रोते समय आंसू ना आना गंभीर डिहाइड्रेशन के भी संकेत हो सकते हैं। श्रोता रोज़ाना पानी पीने की आदत बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखें, घर से बाहर निकलते समय अपने
साथ पानी की बोतल अवश्य रखें। पानी वाले फल और

0: श्रोता, रक्षाबंधन पर ग्वालियर की महिलाओं ने तैयार की इको फ्रेंडली राखियाँ। यहाँ दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन भाई की कलाई पर सजने वाली स्नेह की डोर इस बार केवल बाजार में मिलने वाली चमकदार सितारों, प्लास्टिक के मोतियों या कृत्रिम धागों तक सीमित नहीं रहेगी। तानसेन की नगरी में स्व सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं अपनी कला, नवाचार और मेहनत से रक्षाबंधन को एक नया और पर्यावरण अनुकूल रूप दे रही हैं। यहाँ दोस्तों, कहीं गाय के गोबर और औषधीय बीजों से पर्यावरण मित्र राखियाँ तैयार हो रही हैं, तो कहीं हाथों से सूत काटकर रेशमी धागों की बहुरंगी राखियाँ तैयार की जा रही हैं। श्रोता, यह पहल न केवल प्रकृति को सहेज रही है बल्कि घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। दोस्तों, इन राखियों से पर्यावरण का संरक्षण होता है। जैसे कि गोबर से बनी राखी इस्तेमाल के बाद गमले या मिट्टी में डालने पर खाद बन जाती है, जबकि उसमें छिपे बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। प्लास्टिक और केमिकल्स से पूरी तरह मुक्त, केवल प्राकृतिक रंगों और रेशमी धागों का उपयोग, हस्तनिर्मित शुद्धता है। और दोस्तों, वोकल फॉर लोकल, त्यौहार की खरीदारी से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं और उनकी कला को नई पहचान भी मिल रही है। तो दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल इन राखियों को बनाने का जो तरीका है वह आप भी अपना सकते हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: श्रोताओं, 150 वर्ष पुराने

छायाचित्रों की अपूर्व प्रदर्शनी आज से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक नीति का ग्वालियर अध्याय कला वीथिका में ग्वालियर शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने छायाचित्रों की एक अपूर्व प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। और दोस्तों, यह प्रदर्शनी आज 22 अगस्त शनिवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस प्रदर्शनी में ग्वालियर शहर के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाले लगभग 150 वर्ष पुराने दुर्लभ छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे और इन सभी छायाचित्रों का संग्रह नीलकमल माहेश्वरी द्वारा किया गया है। प्रदर्शनी के साथ ही इस अवसर पर हरी राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। इस सम्मान के तहत इतिहास, पर्यटन, साहित्य, लेखन सहित अन्य कई विधाओं में देश के विशिष्ट व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भी सम्मानित किया जाएगा।

श्रोताओं, असफलता यह वो शब्द है जिसका सामना हर किसी को अपने जीवन में करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप असफल होते हैं तो नकारात्मकता जो है वो हावी होने लगती है और ना चाहते हुए भी आप परेशान होते हैं। लेकिन यह समझना होगा कि दुनिया में आज जो लोग सफल हैं वह इसलिए सफल हैं क्योंकि वे अपनी असफलताओं से सीखते रहे हैं। श्रोता, हर गलती हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। गलती करना या असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। जिसने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। श्रोता, अक्सर कुछ नया सीखने वालों से ही गलतियां होती हैं, इसीलिए अपनी गलतियों से घबराएं नहीं। श्रोताओ, जब आप असफल होते हैं तो इसका अर्थ है कि कुछ ऐसा है जो आपने सही नहीं कर रहे हैं। या जैसे कि यदि आप पढ़ाई में असफल होते हैं तो विफलता बताती है कि आपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह यदि आपका व्यवसाय विफल होता है तो यह संकेत है कि कुछ बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान में नहीं रखा। दोस्तों, अक्सर असफल होने पर हम निराश हो जाते हैं। निराश होना आम बात है, लेकिन आपको इसे कुछ समय तक ही अपने दिमाग में रखना है और फिर आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, कई बार हम काम को जल्दी करने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं जो कि आखिर में असफलता देता है। इसलिए यदि कोई आप काम पहली बार कर रहे हैं तो उसे क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, असफलता का मुकाबला करने का पहला कदम इस तथ्य को स्वीकार करना है कि आप असफल हुए हैं। इस दौरान आप दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद यह देखें कि आखिर इन किन कारणों से ऐसा हुआ। श्रोताओ, किसी दूसरे को अपनी विफलता का कारण बनाना आसान है, लेकिन ऐसा ना करते हुए आप अपने आप से ही पूछें कि आप असफल क्यों हैं और आखिर क्या कमी थी। अपनी गलतियों के प्रति गंभीर रहें और कमियों को दूर करने का जो है वो प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी है। बिना मेहनत और प्रयास के आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, और सफल भी आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया कि हार होगी तो हार होगी, और अगर आपने ठान लिया कि जीत होगी तो जीत होगी, और वो भी तभी होगी जब हम सीखेंगे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन केवल एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इसलिए अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। श्रोता साथियों, अब समय चला इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो इस कार्यक्रम से अपने मित्र अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुदीप भदौरिया का ध्रुपद धमार गायन, राग है अहिर भैरव। आपके साथ पखावज पर संगत की है जयवंत गायकवाड़ ने। तो आइए सुनते हैं सुदीप भदौरिया का ध्रुपद धमार गायन, राग है अहिर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुदीप भदौरिया का ध्रुपद धमार गायन राग ताहिर भैरव। आपके साथ पखावज पर संगत की थी जयंत गायकवाड़ ने। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब जिले की चिट्ठी हम अपने भोपाल
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन के महीने में छिंदवाड़ा की सतपुड़ा की पहाड़ियां और जंगल हरियाली से खेल उठे हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियां, झरने और रिमझिम बारिश पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। छिंदवाड़ा के साथ सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नरसिंहपुर से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। तामिया, पातालकोट, छोटा महादेव, छिंदी, चिमटीपुर और देलाखारी जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं सद्धारा और अरहोनी के गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच 21 से 23 अगस्त तक तामिया में 3 दिवसीय सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण होम स्टे, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में पर्यटक सावन के झूलों, आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आदिवासी वेशभूषा और बांस का मुकुट पहन कर तस्वीरें खिंचवाने का भी विशेष प्रबंध है। एक ओर जहां प्रकृति मेहरबान है, वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रशासन सतर्क है। छिंदवाड़ा में संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में हुई बैठक में कम बारिश की स्थिति में भी शहर में पानी की आपूर्ति बनाए रखने पर चर्चा हुई। कन्हर गांव जलाशय का जलस्तर बनाए रखने के लिए पेंच क्षेत्र से पानी लाने के विकल्प पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा माचागोरा बांध से शहर को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की योजना पर भी विचार किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छिंदवाड़ा का पुआमा नगर वन आज जैव विविधता की एक नई कहानी लिख रहा है। हाल ही में हुए पक्षी सर्वेक्षण में यहाँ क्रिस्टेड हॉक ईगल और पफ थ्रोटेड बेबलर सहित 38 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच टीम में मिठाइयां, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार जांच कर रही हैं। पिछले एक महीने में दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य उत्पादों के 200 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। 108 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिले में अधिकारियों ने गांवों का दौरा कर सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्थिति देखी। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने चांद क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता रखने और सभी पात्र लोगों को समय पर राशन देने के भी निर्देश दिए। पिछले दिनों चौरई में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर 60वां भव्य तुलसीदास जयंती समारोह आयोजित किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने इस अवसर पर कला मंच के निर्माण के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसी कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा का श्री गणेश किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 82वीं जयंती भी जिले में सद्भावना दिवस के रूप में पूरे के साथ मनाई गई, जहां वक्ताओं ने संचार क्रांति में उनके योगदान को शिद्दत से याद किया। पिछले दिनों बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जावेद खान के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से मुलाकात की। कलेक्टर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस भी हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के 224 गांवों और शहरी क्षेत्रों के 36,000 से अधिक हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 969 करोड़ और माचागोरा ग्रामीण समूह जल योजना के लिए 937 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। पालुन्ना जिले के ग्राम भीमखेड़ी में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के दौरान महिलाओं ने पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। वहीं शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जीवी ब्रह्मने ने सौर और पवन ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख था राकेश प्रजापति का, वाचन स्वर थे दीपक सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए, क्यों होता है रेबीज, इससे कैसे बचें, इस विषय पर डॉक्टर अशोक मिश्रा से तुलिका शर्मा की बातचीत।

0: सेहत की बात तरानों के साथ। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको बातों बातों में बहुत सारी सेहत से जुड़ी बातें बताते हैं और आपका मनोरंजन भी करवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है, क्यों होता है रेबीज और इससे कैसे बचें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक मिश्रा को। आप प्रोफेसर हैं सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान विभाग, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जीआर मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका जो ये विभाग है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान विभाग, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है।
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, मेडिकल कॉलेज में एक मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। बीमारी कोई भी हो, उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी पीएसएम विभाग की होती है।
0: जी,
1: जैसे लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बीमारियां या कहीं महामारी फैल गई तो क्यों फैली, उसको कैसे रोक सकते हैं, टीकाकरण पूरा, और रेबीज भी जिसमें शामिल है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी रोकथाम के लिए हम टीकाकरण भी करते हैं, और हृदय रोग से कैसे बचें, डायबिटीज से कैसे बचें, लगभग सभी बीमारियों के रोकथाम के बारे में पीएसएम विभाग काम करता है।
0: पीएसएम विभाग किस तरह से काम करता है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का काम है या रिसर्च का काम है?
1: देखिए, हम लोग एक तो टीचिंग में इन्वॉल्व हैं, मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम टीचिंग करते हैं। इसके अलावा हम ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर्स को
0: जी,
1: जो फील्ड में काम कर रहे हैं या दूसरे कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च भी करते हैं हम, तो ये सारे काम हम लोग करते हैं। और एक महत्वपूर्ण काम और होता है हमारे विभाग का, जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर बीमारियों से कैसे बचें, ये भी एक महत्वपूर्ण काम हम करते हैं समय समय पर, मास मीडिया के माध्यम से करते हैं, कभी अखबारों, कभी टीवी, कभी आपके रेडियो चैनल्स के माध्यम से
0: जी
1: ये जानकारी हम देते हैं। कई जगह व्याख्यान देते हैं जाकर, स्कूल कॉलेजेस में या और ऑर्गेनाइजेशंस के मीटिंग में, और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं।
0: चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और जीवन शैली जनित रोग जो आपने बताया, इससे तो आजकल काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, और यदि इस तरह की जागरूकता लोगों में आ जाए तो मेरे ख्याल से आप लोगों का काम सार्थक होता सिद्ध होता होगा।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह ही है। आप देखें, हृदय रोग है, मोटापा है, डायबिटीज है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कैंसर, ये इसके महत्वपूर्ण कारण जीवन शैली है
0: जी।
1: जीवन शैली में अगर हम परिवर्तन कर लें तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल बचा जा सकता है, जो प्रिवेंशन है वो आपका हिस्सा
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो यदि हम जागरूक हो जाएं तो निश्चित तौर पर ऐसी बीमारियों को दूर रखा जा सकता
1: बिल्कुल
0: है,
1: रखा जा सकता है।
0: चलिए अब अपने विषय पर आते हैं, क्यों होता है रेबीज और इससे कैसे बचें, ये हमारे आज के इस बातचीत का मुख्य विषय है। तो रेबीज के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये क्या बीमारी है।
1: देखिए, ये एक वायरस, रेबीज वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, और उष्ण रक्त वाले जो जानवर हैं उनके काटने से, जैसे अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो चूहे से लेकर हाथी तक अगर कोई भी जानवर काटता है, कुत्ता, बिल्ली, स्यार, बंदर, गधा, घोड़ा,
0: गाय भी,
1: गाय, भैंस, इनके काटने से ये बीमारी हो सकती है। इनके सलाइवा जो थूक होता है उसके अंदर ये वायरस मौजूद होगा तो बीमारी हो जाएगी।
0: मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जानवर के सलाइवा
1: में, अगर उसके अंदर वो इन्फेक्टेड नहीं है जानवर, उसके अंदर वो संक्रमित नहीं है वो जानवर, मान लीजिए रेबीज के वायरस से, तो बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन अगर उसके अंदर संक्रमण है, जानवर इन्फेक्टेड है, तो निश्चित रूप से बीमारी फैलेगी अगर उसको रोका नहीं गया तो।
0: रेबीज को लेकर के बहुत ज्यादा लोग डरे रहते हैं, साधारणतः ये मानते हैं कि कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन आपने बताया कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं,
1: जी जी,
0: उष्ण रक्त वाले जितने भी जानवर हैं उनके काटने से ये बीमारी हो सकती है। और आपने उन सभी जानवरों के लगभग नाम भी बताए, तो इसके प्रति बहुत ज्यादा दहशत लोगों में होती है।
1: मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं इसमें, कि चूहे से जो घरेलू चूहे हैं हमारे यहाँ, डोमेस्टिक रैट है, उसकी वजह से इंडिया में केस रिपोर्टेड नहीं है, हमारे देश में केस रिपोर्टेड नहीं है। खरगोश की वजह से और ये चिड़ियों की वजह से ये इस तरह के केसेस रिपोर्टेड नहीं है हमारे यहाँ,
0: मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कोई केस आपके नज़र में अभी तक नहीं आया है
1: जी।
0: तो इनसे खतरा थोड़ा कम है
1: जी,
0: लेकिन बाकी जो जानवरों
1: से खतरा है
0: जी।
1: रेबीज कुत्ते के बारे में इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ कुत्ते और जानवर और मनुष्यों में काफी घनिष्ठ संबंध है, अक्सर पाले जाते हैं या इंटरेक्शन होता है सड़क पर, सबसे ज्यादा कुत्ते आपको दिखाई देंगे अन्य जानवरों के।
0: रिहायशी इलाकों में रहते भी हैं कुछ कुत्ते, लोग घरों में पालते भी हैं और रिहायशी इलाकों में कुत्ते देखने में भी आते हैं, तो ऐसे में ये केसेस ज्यादा बढ़ जाते होंगे।
1: 98% करीब 95-98% केसेस कुत्ते के काटने की वजह से ही होते हैं।
0: रेबीज के लक्षण क्या होते हैं?
1: रेबीज में मुख्य रूप से आदमी अगर जब उसको संक्रमण हो जाता है तो वो पानी नहीं पी पाता
0: जी,
1: हाइड्रोफोबिया जिसको कहें,
0: पानी से
1: फोबिया मतलब डर, और हाइड्रो पानी, पानी से डरने लगता है आदमी। आप उसको पानी दिखाएंगे तो उसको डर, दहशत होगी। उसका कारण ये होता है कि जब वो पानी पीता है तो जो हमारी डिग्लुटेशन की मसल्स हैं जो निगलने में मदद करती हैं किसी भी चीज़ को, उनमें बड़ा पेनफुल स्पाज्म यानी एक जकड़न होती है, दर्द भरी, काफ़ी दर्दनाक, दर्द भरी जकड़न कहें हम, पेनफुल स्पाज्म होता है। और उस एक्सपीरियंस की, उस अनुभव की वजह से मरीज जब वो जब भी पानी देखेगा तो उसको दहशत होगी, फोबिया होगा, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एयर फोबिया भी होता है उसको, यानी हवा उसको लगेगी तो हवा से बचता है, वो घबराहट होती है, डरता है एकदम। फोटोफोबिया भी होता है यानी लाइट से या प्रकाश से भी उसको डर लगता है, आंखें बंद कर लेता है वो या हाथ रख लेता है आंखों पर। तो ये मुख्य रूप से लक्षण है। इसके अलावा कई बार वो वायलेंट हो सकता है, अग्रेसिव हो जाता है, आक्रमण करने लगता है, लोगों पर अटैक कर सकता है, या एकदम चुप होकर बैठ सकता है, काफ़ी मतलब डोसाइल टाइप का हो जाता है। ये भी एक लक्षण होते हैं, लेकिन मेनली हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया और एरोफोबिया।

0: मतलब यह हुआ कि इससे होने वाली मौतें हम रोक सकते हैं
1: समय पर यदि
0: चेत जाएं तो। बिल्कुल सही
1: डॉक्टर साहब, इस बचाव पर हम बातें करेंगे, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का जो प्रारूप है वो ये है कि हम बातों के बीच बीच में थोड़ा सा विराम लेते हैं और आमंत्रित जो हमारे अतिथि डॉक्टर होते हैं उनसे हम उनकी पसंद का गीत सुनते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या गीत संगीत सुनने का शौक है? हाँ, और आपका जब काम इस चीज की इजाजत देता है कि आप गीत सुनने के लिए समय निकाल पाए?
0: हाँ हाँ, जब कभी फुर्सत में होते हैं गीत सुनते हैं, कभी रास्ते में होते हैं कहीं, या शाम के समय कभी फुर्सत में है तो गाने सुन लेते हैं। अच्छा लगता है मन को
1: जी,
0: खुशी मिलती है।
1: कैसे गीत सुनना पसंद करते हैं?
0: देखिए, अक्सर तो पुराने गाने सुनने ज्यादा अच्छे लगते हैं
1: जी,
0: नए गाने ज्यादा उतने अपील नहीं कर रहे हैं। कुछ गाने अच्छे आ रहे हैं नए में, ठीक है, अधिकांश पुराने गाने टचिंग हैं
1: जी। तो आज हम आपको कौन से गाने से टच करें या कौन सा?
0: देखिए, अभी तो मैं जो मेरी एक फिलोसफी है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जी बिल्कुल,
0: ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो इसी से अगर आप शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल, ये फिल्म है मेरी जंग, हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत प्रेरणास्पद गीत है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी भी निराशा मन में है तो यकीनन ये गीत हमारे अंदर एक ऊर्जा भरता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बताते हुए अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि आज हम जिस विषय पर इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वो है क्यों होता है रेबीज और इससे कैसे बचें। इस विषय पर श्रोता साथी डॉक्टर अशोक मिश्रा हमारे साथ हैं, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने रेबीज के लक्षणों पर बात की थी, अब बचाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बचाव इसके लिए आपने बताया कि सबसे बेहतरीन इलाज है, यदि आप प्रिवेंशन करते हैं, समय पर चेत जाते हैं तो इससे बचाव कर सकते हैं। तो बचाव कैसे किया जा सकता है, क्या किसी भी जानवर के काटने से पहले ये टीका लगाया जा सकता है?
1: देखिए, टीका जानवर के काटने से पहले भी लगाया जा सकता है। इसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, यानी एक्सपोजर हुआ नहीं काटने का, जो जानवर से किसी काटने का एक्सपोजर नहीं हुआ उससे पहले ही हमने प्रिवेंशन कर लिया, ये भी हम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी और दे दूँ आपको कि हम अगर जानवर को छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कुत्ते की वजह से सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैलती है, बिल्ली और कुत्ते। हमारे यहाँ कुत्ते पालने का चलन ज़्यादा है, या सड़कों पे कुत्ते ज़्यादा पाए जाते हैं, और कुछ देशों में बिल्लियाँ ज़्यादा पाली जाती हैं और सड़कों पे बिल्लियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर हम इनको छेड़छाड़ ना करें तो ये खतरा कम से कम होता है। घर में जो हमारे जानवर पले हुए हैं, यानी कुत्ते पले हुए हैं या बिल्ली पली है, तो उसका टीकाकरण ज़रूर कराएं हम। इनका जानवरों का भी टीकाकरण होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लें उसको, उससे बचाव होगा। और गलियों गली मोहल्लों में जो कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं या बिल्लियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका कारण होता है उन्हें खाने की चीज़ें मिलती हैं
0: जी।
1: हम जो घर में खाना बचा होता है उसको घूरे पर फेंक देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: अगर हम नहीं फेंकेंगे तो कुत्ते अपने आप वहाँ से चले जाएंगे, पानी और खाना उनको नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद चले जाएंगे। पानी तो वो कहीं से पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो वो उस इलाके को छोड़ देंगे। दूसरा, बच्चों में एक ख़ास तौर से आदत होती है, कभी पूंछ खींच देना, कभी कान खींच देना, या कई बार कुछ लोग कुत्ता बैठा हुआ उसमें लात मार देते हैं, तो उनका रिफ्लेक्स होता है कि वो काट लेते हैं,
0: बचाव के लिए अपने काटते हैं,
1: काट लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी बचें,
0: बिल्कुल।
1: फिर आपका मूल सवाल था क्या टीकाकरण पहले किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। जैसे जिन लोगों घर में कुत्ते पले हुए हैं, खास तौर से उनको टीकाकरण जरूर कर अपना कर लेना चाहिए।
0: कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, तीन तीन चार चार कुत्ते पालते हैं।
1: नहीं, तो मैं बहुत तीन चार कुत्ते पालने वाला शौकीन नहीं, मेरे भी घर में दो कुत्ते पले हैं
0: जी,
1: शौक मुझे भी है
0: जी।
1: लेकिन मेरे पूरे परिवार को टीकाकरण करा रखा है मैंने।
0: अच्छा, मतलब पहले से ही
1: एक्सपोजर वैक्सीनेशन करा रखा है। उसमें हम एक टीका जैसे जिस दिन देते हैं, पहले दिन देते हैं, उसको हम डे जीरो कहते हैं। उसके बाद सेवन डे पर देते हैं, सेवन्थ डे देते हैं, सातवें दिन देते हैं, और उसके बाद 21वें दिन देते हैं। तीन टीके ये दे देते हैं। उसके बाद में एक साल बाद हम बूस्टर देते हैं। एक
0: जी
1: बूस्टर वो होता है जो पहले की इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करता है, उसको ताकत देता है। उसके बाद अगर कभी कोई एक्सपोजर होता है, यानी कुत्ता काट ले या उसके दांत लग जाए या उसका पंजा लग जाए, तो फिर हम केवल दो टीके लगवा के काम चला सकते हैं, खतरा कम हो जाता है।
0: खतरा कम हो जाता है। यदि आपने बताया कि किसी भी जानवर ने काटा नहीं है तो भी आप ये टीके, यदि आप उन जानवरों के आसपास रहते हैं, संभावना है आपको काटने की, तो तीन टीके और उसका बूस्टर, एक साल बाद उसका बूस्टर लगवा के सुरक्षा के घेरे में तो आ ही सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं।
0: तो ऐसे लोग जो पशुशालाओं में काम करते हैं,
1: रिसर्च में काम कर रहे हैं, रेबीज के रिसर्च में काम कर रहे हैं, पोस्टमैन है, फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हैं, या रेंजर्स हैं जो फॉरेस्ट में काम करते हैं, वन कर्मी जितने भी हैं, या खदानों में काम करते हैं जिनको रिस्क रहता है इस तरह का
0: जी,
1: या हमारे सैनिक हैं कई बार जंगलों में जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: इनको इस तरह का वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए।
0: तो ये हुआ कि आप बचाव के लिए पहले से टीके लगवा लें। इसके अलावा क्या जानवरों को भी इस तरह के टीके लग सकते हैं? आपने बताया कि गाय के, भैंस के काटने से, बिल्ली के, कुत्ते के काटने से होता है, तो जो ये हमारे पालतू जानवर यदि हैं तो क्या इनको भी एंटी रेबीज टीका लग सकता है?
1: इनको लगाया जाता है, खासतौर से कुत्ते और बिल्लियों में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है।
0: और ये कितने दिनों पर लगाना चाहिए?
1: ये 3 महीने की उम्र के बाद लगता है और हर साल एक बार लगाना पड़ता है।
0: तो यदि आपने कुछ पालतू पशु पाला है हमारे श्रोताओं ने, तो वो ये जो टीका है वो बार बार लगवाएं, जिससे कि यदि इस तरह की कोई खतरा होता है तो आप भी सुरक्षित रहें, आपका पशु भी सुरक्षित रहे। यदि एक बार पशु काट लेता है तो क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर पशु ने काट लिया, किसी भी जानवर ने काट लिया है, तो सबसे पहले तो आप उस जगह को, जिस जगह काटा है, उसको पानी और साबुन से धो लें।
0: जी।
1: और साबुन अगर कपड़े धोने का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो इसके लिए मारक क्षमता रखता है रेबीज वायरस पर, लीथल होता है।
0: अरे वाह,
1: ये बहुत जरूरी है। इसके साथ बाद में उस पर एंटीसेप्टिक लोशन कोई भी लगा लें घर में जो उपलब्ध हो, स्प्रिट हो तो स्प्रिट लगा लें, स्प्रिट नहीं हो का अगर घरों में आफ्टर शेव मिल जाता है तो वो लगा लें रुई में लेकर, अगर वो नहीं है तो अल्कोहल लगा लें। लेकिन क्षमा करें, अल्कोहल का इस्तेमाल घाव पर ही करना है उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं करना है
0: जी
1: ये बहुत जरूरी चीज है
0: जी।
1: उसको लगा लें आप, या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम घर में रखी है तो उसको लगा लें, लोशन रखा है उसको लगा लें।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तेल लगाते हैं कुछ लोग, लाल मिर्ची लगाते हैं, चूना लगाते हैं, ये चीजें नहीं लगाएं घाव पर। अच्छा। इससे नुकसान होता है।
0: और मैंने ये भी सुना है कि लोग झाड़फूंक वाले के पास लेके जाते हैं और
1: नहीं, ये तो गलत है ही। लेकिन इससे पहले मैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये और बता दूं, पट्टी नहीं की जाती इस पर,
0: खुला रखना चाहिए घाव।
1: इसको खुला इसलिए रखना चाहिए कि जो इसका वायरस है वो एनरोबिक कंडीशंस में, जहाँ पर कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलती है, उस कंडीशन में तेजी से पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, इसलिए पट्टी नहीं की जाती इसमें। हल्का सा कपड़ा जिससे हवा अंदर जाती रहे वो लगा सकते हैं वहाँ पर, हल्का एक लेयर कॉटन के कपड़े की, पतली सी एक परत जिससे हवा अंदर जाए, लेकिन मक्खियाँ ना बैठें जख्म पर और मिट्टी वगैरह ना जा पाए, नहीं तो इन्फेक्शन और बढ़ता है
0: जी।
1: लेकिन हवा लगना जरूरी है। साथ ही इसमें टाँके नहीं लगाए जाते हैं, टाँके अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर वो उनको डिले किया जाता है, लगभग 48 घंटे तक रोक के फिर उसके बाद उनको लगाया जाता है, और वो भी साथ में पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इसके इम्यूनाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो इसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, उसके बाद हम टांके लगाते हैं अगर बहुत जरूरी हो तो।
0: दो तरह के इम्यूनाइजेशन बताएं, एक्टिव और पैसिव, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम आपसे एक और गीत सुनना चाहेंगे उससे पहले।
1: जी जी जी
0: जी बताएं।
1: थैंक यू। होठों को छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो,
0: फिल्म प्रेम गीत का ये गीत है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
1: मुझे अच्छा लगता है।
0: वाह डॉक्टर साहब, कितने सुंदर कितने प्यारे गीत आप पसंद कर रहे हैं। ये जगजीत सिंह का गाया गीत है
1: जी, जी।
0: तो क्या जगजीत सिंह आपको पसंद है?
1: हाँ, मुझे बहुत पसंद है।
0: गजलें पसंद है आपको?
1: गजलें पसंद है।
0: तो गजलों में जगजीत सिंह को आप कब से सुन रहे हैं?
1: मेरे ख्याल से कई साल हो गए।
0: अब तो जगजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या उनके नहीं होने पर उनकी कमी आपको खलती है कि नई गजलें आप नहीं सुन पाते उनकी?
1: हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक अच्छे गजल गायक थे, अच्छे इंसान थे, तो कमी तो खलती है। पुरानी गजलें सुनकर अपना काम चलाते हैं
0: जी, और निश्चित तौर पर पुरानी गजलें जो हैं वो रेयर जेम्स की तरह हैं।
1: जी जी,
0: वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से रची बसी हुई हैं,
1: मानसिक ऊर्जा देती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और मुझे भी जगजीत सिंह बहुत पसंद है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये गीत विशेष तौर पर पसंद है, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस एक और खूबसूरत गीत के बाद हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं क्यों होता है रेबीज और इससे कैसे बचें। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि दो तरह का इम्यूनाइजेशन होता है रेबीज के लिए, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: देखिए, इसमें जब कोई जानवर काट लेता है, अब जो टीकाकरण हम करते हैं, इसमें एक्टिव और पैसिव दो तरह का होता है टीकाकरण। जो हम वैक्सीन लगाते हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है, एक्टिव टीकाकरण कहलाता है।
0: टीके से पहले मैं आपको आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपने जो फर्स्ट एड बताई उसके कितनी देर के अंदर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है?
1: देखिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाए। उसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, टिटनस टॉक्साइड का टीका भी लगाया जाता है अगर पहले नहीं लगाया तो, क्योंकि जख्म बन चुका है तो टिटनस होने की संभावना भी हो जाती है। तो मरीज का टीकाकरण टिटनस के लिए क्या है, पहले लगा है नहीं लगा है, पूरा लगा है नहीं लगा है, उस हिसाब से हम उसका टीकाकरण टिटनस के लिए भी करते हैं। उसके बाद एंटी रेबीज के लिए टीकाकरण किया जाता है।
0: मैंने वो डॉक्टर के पास पहुंचने का समय इसलिए पूछा कि कितना समय हो जाए तो आप कहते हैं कि देर हो गई।
1: देखिए, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी बचाव मिल जाएगा आपको, बीमारी से उतना जल्दी आप सुरक्षित हो जाएंगे। जितना विलम्ब करेंगे उतनी संभावना बढ़ जाएगी बीमारी। हाँ। और अगर जितने बहुत ज्यादा लेट हो गए तो हो सकता है बीमारी आने से पहले आपको घेर ले, या टीके काम भी ना कर पाए, क्योंकि इनके काम करने में भी समय लगता है, तो वो भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी पहुंच सके योग्य चिकित्सक के पास पहुंचे, यानी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास पहुंचे, नीम हकीमों से बचें, क्योंकि वो पूरा इलाज नहीं करते हैं।
0: और अब वो दो तरह का इम्यूनाइजेशन।
1: जी, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, उसमें एक्टिव इसलिए कहा जाता है कि उस वैक्सीन को लगाने के बाद शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, शरीर को भाग लेना पड़ता है उसमें एक्टिवली, और शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षक बॉडी तंत्र मजबूत होता है, इसलिए उसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये हम 5 टीके लगाते हैं, 0, जैसे आज अगर मैं टीका किसी व्यक्ति को लगाता हूँ तो वो डे 0 कहलाएगा, उसके बाद जो लगेगा अगला वाला दूसरा इंजेक्शन वो डे 3 में लगेगा, यानी आज के दिन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, गिन नहीं रहे हैं, गिनती शुरू करेंगे हम कल से, कल परसों नर्सों, यानी आज तारीख है,
0: हाँ आज यदि 1 तारीख है, हाँ? तो अगला टीका 4 को लगना है,
1: 4 को लगना है, क्योंकि आज का दिन हम गिनेंगे नहीं
0: जी।
1: उसके बाद तीसरा टीका जो हम लगाएंगे वो 7वें दिन लगाएंगे, और ये काउंटिंग लगातार जारी रहेगी। फिर 2 तारीख से हमने काउंटिंग शुरू की है तो वो लगातार जारी रहेगी। 3 जैसे हमने 4 को लगाया, इसमें 4 और जोड़ दें तो 7 हो जाएंगे, 7वें दिन लगा देंगे, फिर हम इसमें 7 और जोड़ दें, 14वें दिन लगाएंगे, और उसके बाद हम 5वां टीका जो लगाते हैं वो 28वें दिन लगाते हैं।
0: कुल मिलाकर 5 टीके लगते हैं।
1: 5 टीके लगते हैं, और इसमें ये और बता दूं, ये कंधे में लगते हैं, कूल्हे में नहीं लगाए जाते। अगर कूल्हे में लगाते हैं तो ये प्रभावकारी नहीं होते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि कंधे में लगाने से
0: कोई तकलीफ तो नहीं होती,
1: तकलीफ तो नहीं होती, और कूल्हे में असर क्यों नहीं करते?
0: हाँ, बिल्कुल,
1: ये एक स्वाभाविक सवाल आपके मन में आ रहा होगा।
0: बिल्कुल आ रहा था।
1: है ना? हाँ। तो कूल्हे में अक्सर फैट ज्यादा होता है, चर्बी ज्यादा होती है
0: जी।
1: इसलिए टीके का जो एब्जॉर्प्शन है, जो असर होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन के बाद ही होगा। फैट की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है,
0: धीरे धीरे होता है,
1: धीरे धीरे होता है, तो प्रभाव भी उसका उतना तेजी से नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल सही।
1: इसलिए कंधे में ही लगाए जाते हैं ये, और इंट्रामस्कुलर लगते हैं, और एक शेड्यूल और होता है जिसमें इंट्राडर्मल भी लगाए जाते हैं,
0: मतलब त्वचा के नीचे।
1: त्वचा के नीचे 2 शेड्यूल होते हैं इसके। इसमें 0, 3, 7, 14 और 28 डे वाला तो ये शेड्यूल हो गया, इंट्रामस्कुलर वाला है, और जो इंट्राडर्मल मैंने बताया उसमें हम 0.1 ml बहुत कम लेते हैं
0: दवा,

0: और वो दो दोनों तरफ लगती है कंधों में, डे जीरो पे, डे थ्री पे, डे सेवन पे, और उसके बाद डे 28 पे लगेगी, 28 पे, 14वें दिन नहीं जो लगाते थे हम इसमें, वो नहीं लगाया जाता है इसमें, उसको छोड़ के चार बार दिया जाता है, लेकिन डबल डोज में दिया जाता है, दोनों कंधों में दिया जाता है, और डोज काफी कम होती है, 0.1 ml होती है।
1: तो आप चाहें तो मांसपेशियों वाला इंजेक्शन लीजिए या त्वचा के नीचे वाला, दोनों।
0: लेकिन इसमें ये और बता दूं मैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर व्यक्ति जो इंजेक्शन लगाने वाला है वो ट्रेंड नहीं है तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा। अगर वो इंट्राडर्मल नहीं लगा, सबकुटेनियस लग गया या डीप चला गया कहीं, तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अक्सर लोग लगा लेते हैं, लेकिन इंट्राडर्मल के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
1: जी, तो यदि आप त्वचा के नीचे वाला इंजेक्शन जो है वो चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो इस तरह के इंजेक्शन लगाने में एक्सपर्ट हो,
0: बिल्कुल एक्सपर्ट हो, उसको प्रैक्टिस हो इस चीज की,
1: तभी आप उस वाली प्रणाली को चुने, वरना आप इंट्रामस्कुलर में जाइए।
0: जी जी,
1: चलिए,
0: इसी के साथ आपका सवाल था पैसिव इम्यूनाइजेशन का।
1: हाँ,
0: उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं, जो शरीर को बीमारी से बचाने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो रेडीमेड हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर,
1: तो ये जल्दी असर करते हैं,
0: ये तत्काल प्रभावशाली हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन इनका प्रभाव दीर्घकालीन नहीं होता, ये कुछ समय के लिए प्रभावशाली रहते हैं, उस बीच में हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर देते हैं तो वो उसको कवर कर लेते हैं। बाइट को विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है,
1: मतलब किसी भी जानवर के काटने को,
0: हाँ, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
1: अच्छा।
0: सीवियर यानी कैटेगरी 3 जो होती है उसी में पैसिव इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, बाकी में नहीं दिया जाता।
1: अगर थोड़ा बहुत काटा है किसी जानवर ने तो निश्चित तौर पर आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा घायल किया है,
0: पैसिव दोनों देने पड़ेंगे हमें।
1: अच्छा, वो एक डॉक्टर निर्धारित करता है कि किसी भी मरीज को किस तरह का घाव है, किस तरह की इंजरी है उसके साथ ही।
0: बिल्कुल,
1: इस विषय पर हम आगे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन गंभीर थोड़ा सा विषय हो जाता है तो हम थोड़ा सी गंभीरता को कम करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते अपने श्रोताओं के बीच में, किसी भी तरह का डर नहीं पैदा करना चाहते, और ये डरने की बात भी नहीं है, यदि आप समय पर चेत जाएं तो बिल्कुल भी
0: 100% बचाव संभव।
1: हाँ, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि 100% बचाव संभव है, आप किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है यदि समय पर चिकित्सक के पास आप पहुंच जाए, सबसे पहली शर्त इसकी, पहली और आखिरी।
0: बिल्कुल, पहली और आखिरी, चिकित्सक नहीं, योग्य चिकित्सक के पास।
1: बिल्कुल,
0: क्वालिफाइड डॉक्टर के
1: बिल्कुल
0: पास।
1: और हम तो ये मान रहे हैं कि आप एक ऐसे योग्य चिकित्सक हैं जो हमें आप चिकित्सा के बारे में भी बता रहे हैं रेबीज की, और साथ ही में इतने सुरीले गीत भी सुनवा रहे हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि अब कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं।
0: इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं।
1: वाह, आशाताई। उमराजान फिल्म का ये गीत है और यकीनन अपने दौर का बहुत ही हिट गीत है।
0: जी, मैंने इस गाने की वजह से ही उसको 3 बार देखा।
1: अच्छा। फिल्म उमराजान आपकी 3 बार देखी हुई है, और इस गीत में आप शायद आसपास वालों को बिल्कुल चुप करा देते होंगे। तो चलिए, हम अभी आपको ये गीत सुनवा रहे हैं और आप बहुत ही तल्लीनता से इस गीत को सुनेंगे, ये हमारी उम्मीद है।
0: जी।
1: और बहुत ही तल्लीनता से हमारे श्रोता साथी भी सुनेंगे, इस बात की भी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब घाव बहुत गहरा होता है तो डॉक्टर्स पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में निर्णय लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए, ये किस तरह से दिया जाता है और कितना दिया जाता है?
1: ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये पैसिव टीकाकरण एक्टिव टीकाकरण के साथ साथ ही किया जाता है, दोनों किए जाते हैं, लेकिन ये गंभीर जो है कैटेगरी 3 है उसमें किया जाता है, कैटेगरी 1 और 2 में नहीं किया जाता। ये दो तरह का उपलब्ध होता है, ह्यूमन ओरिजिन का यानी मनुष्यों से बनाया हुआ और जानवरों से बनाया हुआ। तो इसकी जो डोज होती है, मनुष्यों से बनाए गए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसकी 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट की जाती है। यानी जिसको बाइट हुई है उसका हम वजन लेते हैं और उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके फिर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन जो काटी हुई जगह है, जो घाव है उसके आसपास लगाया जाता है, इन्फिल्ट्रेट करके लगाया जाता है थोड़ा थोड़ा सब जगह, ताकि वो वायरस को
0: पूरा एरिया कवर कर पाए।
1: अगर कई बार क्या होता है, खुराक यानी इंजेक्शन की जो क्वांटिटी है वो कम होती है वजन के हिसाब से, बाइट ज़्यादा बड़ी है, कई जगह है, मल्टीपल बाइट है, तो उस कंडीशन में हम इसको डाइल्यूट भी करते हैं, नॉर्मल सेलाइन डाल मिलाकर डाइल्यूट कर सकते हैं 2-3 गुना मिलाकर और फिर इंजेक्शन लगाते हैं,
0: लेकिन जिससे सब जगह पहुंच जाए।
1: हाँ, ताकि सब जगह पहुंच जाए और रोकथाम उचित ढंग से हो पाए। लेकिन कई बार स्थिति ये होती है कि जिस जगह काटा है वो ऐसा अंग होता है जहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगाए जा सकते, तब हम इसको इंट्रामस्कुलर थाई में लगा देते हैं, थाई के अंदर, जांग के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से लगा सकते हैं। लेकिन प्राय हमारी प्राथमिकता होती है जिस जगह काटा है वहीं पर ये लगाया जाए।
0: जी जी,
1: उसके इन एंड अराउंड, उसके आसपास।
0: डॉक्टर साहब, कोई ऐसे केसेस आपके कार्यकाल के दौरान आए हों जिसमें कि आपको विशेष तरह से चिकित्सा देनी पड़ी हो या एक विशेष मनःस्थिति का, रोगी की एक अलग मनःस्थिति का सामना करना पड़ा हो, हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: देखिए, बड़े हम लोगों के यहाँ एक एंटी रेबीज क्लिनिक चलती है PSM विभाग या कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंदर माधव डिस्पेंसरी में, जिसमें शासन की तरफ से निःशुल्क परामर्श तो है ही, साथ में इंजेक्शन भी निःशुल्क मिलते हैं एंटी रेबीज।
0: जी,
1: ये मध्य प्रदेश शासन की अच्छी योजना है जिसमें निःशुल्क दवा दी जाती है। तो उसमें कई मरीज आते हैं, कई बार आते हैं, बोले साहब हमारी गाय थी जंगल में चल रही थी या भैंस थी जंगल में चल रही थी, कुत्ते ने या कई बार सियार ने आके काट लिया, कोई कुछ कहते हैं कुत्ते ने काटा, कुछ ने कहा सियार ने काटा, और बाद में साहब उसने बीमार हो गई और मर गई। इस बीच में हमने उसका गाय का या भैंस का दूध का इस्तेमाल किया। अब इस चीज़ में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेनी पड़ती है कि इस्तेमाल दूध का जो किया गया वो उबालने के बाद किया गया या बिना उबाले किया गया। अगर उबाल कर किया गया है तो बीमारी फैलने की संभावना नहीं है।

0: अन्यथा अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया गया है या कच्चे दूध का दही जमाकर इस्तेमाल किया गया है तो बीमारी उनको हो सकती है, क्योंकि दूध में ये रेबीज के वायरस आ जाते हैं जी। तो उस कंडीशन में फिर हम उसको कैटेगरी 3 के हिसाब से उसको पैक्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, जैसे ये कहते हैं हम कि एक जनरल एक धारणा है कि कुत्ते को 10 दिन तक देख लीजिए आप काटने के बाद, तो ये धारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बदल दी है। उनका कहना है आप इलाज तत्काल शुरू करिए, 0-3 वाले दें, 7वें दिन देखें, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन देना पड़ता है, उसकी बजाय देखिए 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन तक। अगर कुत्ता ठीक रहे या बिल्ली ठीक रहे तो आप इसको 21वें दिन लगा दीजिए और साल भर बाद बूस्टर दे दें। और ये ऑब्जर्वेशन पीरियड जो 10 दिन का है देखने वाला, केवल कुत्ते और बिल्ली के लिए है, अन्य जानवरों के लिए नहीं है।
1: और यदि कुत्ता मर जाता है
0: तो तुरंत आके पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिसाब से शुरू कर देते हैं।
1: अक्सर ऐसा होता है कि जो कुत्ते होते हैं वो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, गली के कुत्ते होते
0: जी
1: हैं
0: जी।
1: तो वो आप पहचान भी नहीं सकते किसने काटा किसने नहीं काटा।
0: देखिए, जहाँ अगर हमें कोई संभावना ऐसी लगती है तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, ओवर ट्रीटमेंट इज बेटर देन अंडर ट्रीटमेंट। हम उसको अगर कुत्ता नहीं मिलता है, नहीं पहचान पाते हैं, या मर गया या भग गया, हमें पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर हम उसको वैक्सीनेशन कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई चॉइस नहीं है। एक बार बीमारी हो गई तो आदमी को मरना ही मरना है, लेकिन 100% हम टीकाकरण से बचा सकते हैं इसको।
1: लेकिन अगर टीकाकरण हमने करा भी लिया और बीमारी उस कुत्ते को नहीं है तो भी उस टीके का कोई नुकसान नहीं,
0: सुरक्षित टीके हैं। कई बार ये होता है कि जैसे जू में बंदर पला हुआ है वहाँ पे बच्चे जाते हैं, मूंगफली खिलाते हैं, बंदर हाथ काट लेता है
1: जी।
0: अब उसमें कुछ चिकित्सक जिनको जानकारी नहीं होते बोले साहब जू का बंदर है तो आप 10 दिन देख लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन पीरियड बंदर के लिए नहीं है या किसी अन्य जानवर के लिए नहीं है, केवल कुत्ते और बिल्ली के लिए है। तो ये गलती नहीं करना चाहिए। एक फ़ोन आया बोले साहब मगर ने, मुरैना के पास से फ़ोन था, बोले साहब हमारे मरीज बैठा है मगर ने खा लिया इसको। मैंने कहा, हंस के कहा मैंने, भाई मगर ने खा लिया तो बैठा कैसे है? तो नहीं साहब खा लिया कहते हैं हम काटने को, कई जख्म है इसके, बच गया है ये
1: जी।
0: तो मगर में टीकाकरण नहीं होता क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है। शिपकली काटने से टीका रेबीज नहीं होता। ग्लैरी से हो सकता है, गोहरे इससे हो सकता है, आपके नेवले से हो सकता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: हम आगे भी और बात करेंगे। हम एक कार्यक्रम का आखिरी गीत आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी
1: हैरान
0: हूँ मैं,
1: फिल्म मासूम
0: जी।
1: कौन सा वर्जन सुनना चाहेंगे, अनूप घोषाल वाला या लता मंगेशकर वाला?
0: लता मंगेशकर का सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं
0: जी।

0: क्यों होता है रेबीज और इससे कैसे बचें? डॉक्टर साहब, इस पर आपने बहुत सारी जानकारियां तो दी, एक आखिरी में हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि जब रेबीज किसी को हो जाता है और उस व्यक्ति के लक्षण देख करके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं, और जब वो व्यक्ति मरता है तो डेड बॉडी से भी लोग थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, क्या ऐसा ज़रूरी है या डर की वजह से ऐसा होता है?
1: नहीं, देखिए, डेड बॉडी से उसके जो भी बॉडी फ्लूड्स हैं, यानी उसके थूक है या रक्त है, उससे थोड़ी रक्त में नहीं रहता है, लेकिन थूक आदि से उस दूरी बनाए रखें, अपने आप को बचाएं। कटे हुई जगह पे अगर लगेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हमारी स्किन पूरी साबुत है, इंटैक्ट है, साबुत है, कहीं कटी फटी नहीं है, तो इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा। सावधानी लेना ज़रूरी है, और अगर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, जैसा कि जलाया जाता है अक्सर, तो उससे सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं,
0: उसके बाद किसी तरह की कोई संभावना नहीं होती। और यदि लोग जलाने के बाद भी जो क्रियाएं की जाती हैं,
1: उसमें कोई संभावना नहीं होती है।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने रेबीज के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे श्रोताओं की दूर हुई होंगी, हमारी भी निश्चित तौर पर दूर हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे क्यों होता है रेबीज़, इससे कैसे बचें, इस विषय पर डॉक्टर अशोक मिश्रा से तुलका शर्मा की बातचीत। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए गजेंद्र वर्मा की आवाज़ में फिल्म टेबल नंबर 21 का यह गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
3: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: याद रखो हमारी बात,
7: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
6: जंगल है धरती का गहना,
7: सदा इसकी रक्षा करना,
6: होगी जो धरती पर हरियाली,
7: चहुं ओर फैलेगी
6: खुशहाली।
8: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:58 होने को हैं। अब इस घंटे की खास खबरें कुछ क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मनी वैष्णव ने कल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना एमपीएमएस की शुरुआत की है। योजना का मकसद देश में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शिवपुरी के पिपरसभा स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वे कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीक की जानकारी देंगे। राज्य सरकार ने 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। वहीं 10 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों को हर संभव मदद दे रही है। मुख्यमंत्री ने यहां कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही। प्रदेश के मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एमएसएमई विभाग ने इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। और प्रदेश में मॉनसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो संगनी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है बच्चों में अच्छा इंसान बनने के व्यक्तित्व की नींव कैसे पड़ेगी, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना है। तो डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फोन्स का है इंतज़ार और कीजिए हमसे ढेर सारी बातें और सुनिए हमारी पसंद के चंद गीत। हेलो।
3: हाँ मैडम नमस्ते।
2: नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
3: जी मैं सौमत पहले भी बात हुई है।
2: अच्छा सौमत जी, कैसे हैं आप?
3: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी और आपके साथ साथ आकाशवाणी परिवार और हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे।
2: जी हाँ, वाकई बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्नेह आकाशवाणी परिवार पर यूं ही बना रहे यही उम्मीद करते हैं। समर सिंह जी, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो ये है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने के व्यक्तित्व की नींव हमें कैसे डालनी है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए।
3: सबसे पहली चीज तो ये बात परिवार से शुरू होती है कि परिवार में हम मेरे अपनी खुद की बात करूं तो मैं मेरे दो बच्चे हैं खुद के जो अभी 28 माह पूरे कर चुके हैं। तो अब हम अपनी खुद की जो लालन पालन करने की जो प्रणाली है उसको हम कैसे लेके चलते हैं, हम अपने बच्चों को इतने समय में क्या किस तरह से उनकी पालन पोषण की जो व्यवस्था है उनमें हम जैसे अब मोबाइल आजकल बड़ा चलन में आ गया है।
2: बिल्कुल हाँ।
3: तो हम उस मोबाइल में उनको क्या दिखा रहे हैं, फिर हम अपने बच्चों के साथ में हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें कैसे अब कई बार होता है ना कि बच्चा शुरू से जिद्दी होता है। तो हम उसकी हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं और डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं।
2: बिल्कुल सही बात है, कई बार होता है हम काम में बिजी होते हैं और परेशान होकर उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं या उनकी जिद पूरी कर देते हैं।
3: बच्चा क्या चला रहा है क्या नहीं।
2: बिल्कुल सही बात है हाँ।
3: और फिर हम देखते हैं कि बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है और अगर हम उसे रोक रहे हैं तो वो फिर उससे कहीं ना कहीं चिढ़ रहा है, जिद कर रहा है और फिर हम उसकी खुशी के लिए वही कर रहे हैं जो वो चाहता है।
2: बिल्कुल सही बात है।

0: बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ये तय करना चाहिए कि हम उसको, क्योंकि वो मोबाइल लंबे समय तक उसके हाथ में होता है, तो वो क्या देख रहा है, वो क्या चला रहा है, फिर
1: जी जी बिल्कुल सही,
0: अपने जो बच्चे हैं उनके साथ में खुद किस तरह से पेश आ रहे
1: हैं
0: हाँ ठीक है थोड़ा बहुत बच्चे को, लेकिन इस तरह से भी नहीं कि वो एकदम टूट जाए और वो फिर पता चल रहा है कि वो और
1: जब भी बच्चा किसी परेशानी में यदि हमें लगे तो उससे हमें सवाल पूछने की बजाय उसे सपोर्ट करना, उसको सहानुभूति जगाएं, तो निश्चित रूप से शायद हम अच्छे व्यक्तित्व की नींव अपने बच्चों में डाल सकते हैं।
0: और ये एक उम्र होती है कि
1: बिल्कुल
0: आप जैसी छवि बनाएंगे जैसा
1: वैसा बनता जाएगा,
0: है ना।
1: चलिए धन्यवाद समर सिंह जी, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे हैं और इसलिए आपसे हम माफी चाहते हैं, इतनी ही बात कर पाएंगे आज आपसे। नमस्ते,
0: क्या बात है, विषय था वो तो पूरा हो ही गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नमस्ते कॉल करने के लिए, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: अच्छा राकेश जी, आपसे शायद पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी, और मेरी बात हुई थी 7 अगस्त को, अब है 21 अगस्त।
0: चलिए कोई
1: तो
0: बात नहीं, आपने हमारे पूछने के पहले ही क्लियर कर दिया कि एक हफ्ते के बाद बात कर रहे हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राकेश जी, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो आप जानते ही हैं, बात आपकी गीत हमारे। तो आज हमने जो विषय रखा है वो ये रखा है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने के व्यक्तित्व की नींव कैसे डालनी चाहिए।
1: जी। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, तो बच्चों को हमें अच्छी चीजें सिखाती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम बच्चों को ये चीज सिखाते कि इनको ऐसा बोलो। कई बार बच्चे बचपन में जवाब दे देते हैं कि जैसे मम्मी को गाली दी, पापा को गाली दी। लेकिन हमें बचपन में तो सुनना अच्छा लगता था कि क्या क्या सा बोलता है, कितना तोतला बोलता है, कितनी प्यारी आवाज में बोलता है। लेकिन ये आदत हम बच्चों में डालेंगे तो ये बड़े तक जो है बच्चे ये सीख, और बड़े होके जो है बच्चा अपने बड़ों को जो है जवाब सवाल कर सकता है, और ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जो बुरा लगता है। तो
0: बिल्कुल सही
1: हमें
0: बात है।
1: ये बच्चों की मासूमियत पर ये हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के बच्चा कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कि फिर हम बच्चों को बढ़ा देते हैं। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, सबसे पहले तो बच्चों को पैर छूने की आदत बचपन से डालना चाहिए, ताकि बड़े होकर जो उनकी आदत बनी रहे।
0: बिल्कुल सही
1: बड़ों को
0: बात
1: किस
0: कह रहे
1: तरह
0: हैं।
1: से
0: और
1: नमस्कार करना, नमस्ते
0: बिल्कुल
1: करना है, और बड़ों को किस तरह से इज्जत करना है, ये बचपन में सिखाना चाहिए। क्योंकि
0: और
1: आप
0: बचपन से ही यदि हम बच्चों को धन्यवाद कहने का मतलब समझा दें और उन्हें दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत डाल दें, तो शायद काफी हद तक हम अपने बच्चों में अच्छे व्यक्तित्व की नींव डाल सकते हैं, है
1: इस
0: ना।
1: बारे में मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन तो हम कुछ सीखता नहीं। जब बड़े बच्चे हो, थोड़े बड़े होते हैं, फिर बच्चों को डांटते हैं, भाई आपके सामने कोई आया था नमस्ते क्यों नहीं की, आपके सामने कोई आया था
0: बिल्कुल
1: तो बात
0: सही
1: क्यों नहीं
0: बात
1: किया,
0: है,
1: फिर बाद में नहीं कर सकते
0: बाद
1: क्या।
0: में
1: तो
0: नहीं कर
1: बचपन में
0: सकते। जितना हम अगर बचपन में ही ये सब अच्छी आदतें डाल देंगे तो उनका असर हमें बाद में ही
1: बाद में
0: दिखाई
1: ही
0: देगा,
1: मिलेगा। जी,
0: है ना।
1: जैसे
0: जैसे यदि
1: कि
0: हमने बचपन में उनके लाड़ प्यार रखा तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े होकर वो अच्छे निकलेंगे। वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो फिर
1: और आम कहाँ
0: आम
1: से
0: कहाँ
1: निकले।
0: से हुए। तो यही वाली
1: जी
0: बात है और यही बच्चों की परवरिश में हमें इन बातों का ध्यान रखना है।
1: ध्यान
0: चलिए
1: रखना।
0: राकेश
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी जी
0: जी
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: अरे नमस्कार जी, ये मान के चलिए कि रिकॉर्डिंग होने के बाद मैडम जी जब कार्यक्रम नहीं आता तो बड़ी उदासी छा जाती है, उदासी के बादल छा जाते हैं, रोना आ जाता है।
0: नहीं, अब आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और चांद भाई, आपका कार्यक्रम कल आप जरूर सुन सकेंगे।
1: अरे कमाल हो गया मैडम जी, आपने हमारा नाम पहचान लिया। अभी तो हमने नहीं पूछा है आपका नाम, पर चूंकि पूछ लेंगे, अभी एक लाइन बोल दें आपके लिए तभी तो मजा आएगा।
0: बोलिए।
1: कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, और ईमान है तो महान है, वही
0: बिल्कुल।
1: सच्चे इंसान की पहचान है मैडम जी।
0: तो मतलब
1: हाँ
0: इतने दिनों से बात नहीं हुई तो
1: अरे
0: आप हमें आवाज से नहीं पहचान पाए।
1: वो नीत का वर्मा हो सकती हैं, और या कि कविता रावत हो सकती हैं, या सुनीता सिंह, क्योंकि डबल रोल आपकी आवाज है, एकदम मिलती जुलती।
0: अच्छा, तो हम कविता बोल रहे हैं।
1: अरे धन्यवाद। तो आप हालांकि मैंने जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कर ही दिया मैडम जी, और नाम बता दिया तो आप उसी
0: बिल्कुल
1: लिस्ट में आ गई, तो कोई
0: बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चांद भाई, आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो
1: जी
0: विषय है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने की, व्यक्तित्व की नींव हमें कैसे डालनी चाहिए।
1: अब अच्छे बच्चों की जो नींव होती है मैडम जी आपसे बताएं, तो अब जैसे हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही जिस प्रकार की लाइन में ले जाएंगे तो वही जो है उनके लिए सही मार्गदर्शन होगा। हम बच्चों को सबसे पहले उन्हें जो है अच्छी परवरिश देंगे, स्कूल जाने की शिक्षा देंगे, और उन्हें बताएंगे कि किसी से लड़ना ना चाहिए, किसी का सामान नहीं छूना चाहिए, और किसी से कोई चीज मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए कह देते हैं कि ले, उन्हें 5-10 रुपए दे देते हैं मैडम जी, क्योंकि बच्चे जो है कहते खाए मीठ के माए, उन्हें थोड़ा सा लालच देना बहुत जरूरी रहता है, तब वो स्कूल जाते हैं।
0: बिल्कुल नहीं। लेकिन लालच के साथ साथ यदि हम उन्हें ये साझा करने की जो भावना है वो भी जगाएं उनके अंदर कि भाई, ये आपको हमने ये बिस्किट का पैकेट दिया है लेकिन ये आपको अकेले नहीं खाना है, अपने सहपाठियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खाना है। तो वो बांटने की आदत जब उनके अंदर बचपन से आ जाएगी तो वो एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़ेंगे।
1: दीदी जी सही है। और क्या है कि जब हमारे बच्चे हम लोगों को, हम लोग अच्छी सलाह अगर उन्हें देंगे तो
0: हाँ
1: वो उन्हें अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, ये मैडम
0: बिल्कुल
1: ने
0: सही
1: वादा
0: बात।
1: है। और अच्छे दोस्त जब मिलेंगे तो सही सलामत आगे बढ़ने के लिए जो उन्हें शिक्षा मिलेगी, और अगर हम बच्चों को अच्छी सलाह शिक्षा नहीं देंगे तो वो बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए जो है
0: जी,
1: ये हम माँ बाप के ऊपर पूरा दारोमदार
0: पूरा
1: रहता है
0: पूरा
1: अगर
0: पूरा
1: कहें तो।
0: जी, धन्यवाद। और अब पूछना चाहूंगी, जगह मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं।
1: अरे मैडम जी, अब ये मान के चलिए कि बात करते करते जो है हमने अपना पता बताना भी भूल गए, और चूंकि काफी लंबे अंतराल के बाद महीनों पूछ गए हैं मैडम जी, तो थोड़ा सा पता तो अब बता ही दे, क्योंकि आप तो जानती हैं कि मैं
0: वही
1: हिंदी

0: हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान
1: बिल्कुल चलिए
0: मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ बहुत
1: बिल्कुल बड़ा बढ़िया बढ़िया। तो कल अपने प्रोग्राम में अपनी बातचीत सुनिएगा चांद भाई और अब अनुमति दीजिए अगले श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं।
0: जी जी क्योंकि अगले श्रोता भी लाइन में लगे
1: बिल्कुल बिल्कुल नमस्ते
0: नमस्कार। बचपन

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं देवास से बोल रहा हूँ, मुस्तफा हुसैन बोहरा। देवास
0: आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी,
1: से बोल रहा हूँ, मुस्तफा हुसैन बोहरा।
0: आवाज अभी भी नहीं आई। अच्छा,
1: मैं देवास से बोल रहा हूँ, मुस्तफा हुसैन बोहरा।
0: मुस्तफा हुसैन देवास से। मुस्तफा जी क्या करते हैं आप?
1: मेरा अलंका मार्केट में मेडिकल स्टोर है।
0: अरे वाह।
1: मेरे पापा जो शॉप के प्रोपराइटर हैं, और मैं फार्मासिस्ट।
0: अच्छा, आपकी आवाज़ में डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है क्या? आपके यहाँ इधर नेटवर्क की इश्यूज आ रहे हैं।
1: नहीं मैम, मैं तो बाहर ही हूँ।
0: अच्छा, आप क्लियर आई आपकी आवाज़। तो मुस्तफ़ा जी, आज हम विषय पे बात करेंगे कि है ना, बच्चों में अच्छे इंसान के व्यक्तित्व की नींव कैसे डालनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को या घर के बाकी
1: मैम
0: मेंबर्स को।
1: पहले तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि संस्कार से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर संस्कार अच्छे होते हैं तो बच्चे की हर जगह पहचान होती है, हर जगह उसकी कीर्ति होती है कि कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छी बातचीत करता है, उसका रहने उसका बोलने का तरीका, उसके खान पान का तरीका, सब चीज उसके संस्कार से पता चलती है मैम।
0: बिल्कुल सही बात है। तो संस्कार देने की जो प्रयास है, संस्कार देने के जो प्रयास हैं वो किस
1: जी
0: प्रकार होना चाहिए, हमें क्या
1: देखिए
0: क्या
1: मैम,
0: मतलब कोशिश करनी चाहिए।
1: कोशिश तो ये कि हम घर से बच्चों को ही अपने घर से

0: 조금 쉬는 시간 계속 맨날 그래서 가서 계속 그렇게 무조건 그래. 시간은 저희 계속 해야 되나 저희.
1: चलिए धन्यवाद मुस्तफ़ा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल के प्रोग्राम में आप अपना कार्यक्रम है कविता रावत जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते। बस
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका स्वागत है।
1: करें कौन से कार्यक्रम में बहन जी?
0: बात आपकी गीत हमारे।
1: अच्छा, ये विषय से अंतर्गत होता है। जय
0: हाँ जी।
1: माँ भोराज रेडियो श्रोता संघ सरकनपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संतोष कुमार साहू बात कर रहे हैं।
0: टीकमगढ़ से।
1: जी हाँ, हमारा जो महामना चलती है उसमें मतलब टीकमगढ़ के बाद तीसरा स्टेशन है,
0: अच्छा
1: जैसा
0: अच्छा
1: मुंबई, मुंबई के बाद सरकनपुर, सरकनपुर
0: अच्छा
1: के बाद खड़गापुर,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: खड़गापुर के बाद टीला, रामपुर, रामपुर
0: हाँ हाँ
1: के बाद छतरपुर, ईशानगर
0: अच्छा
1: छतरपुर।
0: अच्छा अच्छा तो संतोष जी, आज जो विषय है ना हमारा, वो ये है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने की नींव कैसे डालती है।
1: बच्चों में अच्छी इंसान बनने की नींव कैसे डालते हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा है जो कि मतलब आज के कार्यक्रम के अंतर्गत है। इससे मतलब काफी लोगों को लाभ मिलेगा, और इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मतलब जो पहले गुरु तो मतलब माँ बाप होते हैं, और वो ही मतलब इसका काम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे गुरु मतलब जो स्कूल के
0: टीचर्स होते
1: चलाते
0: हैं।
1: हैं वो होते हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले मतलब अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए कि मतलब इनके मतलब कैसे गुरु के पैर छिए, मतलब किस प्रकार से चलें, अनुशासन किस प्रकार से करना चाहिए, किस
0: ये बात आपने
1: प्रकार
0: बहुत सही बोली कि बच्चों को अनुशासन में रहने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। यदि अब समय पे सारे काम करने की उनकी आदत होगी तो बाद में उनको जीवन जीने में, जो जीवन में जितने संघर्ष आते हैं, उन सब का सामना करने में उन्हें आसानी होगी।
1: जी। और सबसे बड़ी बात ये भी है मैडम जी कि क्या होता है, आजकल का जो सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है कि इंसान सुबह 6 बजे की जगह 10, 11 बजे, 12 बजे उठता है।
0: कुछ लोग इसी प्रकार का करते हैं। तो ये आदतें हमें बचपन से ही अपने बच्चों में डालनी है कि टाइम से सोएं, टाइम से उठें और हर काम टाइम को ध्यान में रखते हुए करें, तो कभी उनको समय की कमी नहीं होगी और वो तरक्की करेंगे जीवन में, है ना। चलिए संतोष जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दूसरे श्रोता भी सोच रहे होंगे कि उनसे भी बात हो जाए। ठीक है,
1: बोलना चाहता हूँ,
0: हाँ जी बोलिए।
1: कमल का फूल तालाब में रहकर महान नजर आता है, और कबीर रावत जी की मधुर वाणी में भगवान नजर आता है।
0: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ
1: अरे
0: जी,
1: यार
0: हाँ जी,
1: हुआ
0: आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
1: जी मैम, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ।
0: संगीता पटेल जी, ऐसा लग रहा है 2 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी।
1: नहीं मैम, मेरा तो लगा ही नहीं, मेरा तो कम से कम 2-3 माह हो गए तब से
0: अच्छा
1: नहीं
0: अच्छा
1: लगी।
0: अच्छा तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, माफी चाहती हूँ। और संगीता
1: जी
0: जी
1: क्या,
0: कैसी
1: क्या
0: हैं आप? कैसी हैं?
1: हम तो ठीक है मैम, आप कैसी हैं? छतरपुर
0: हम भी अच्छे हैं। और मौसम कैसा है छतरपुर में?
1: में मौसम तो बारिश हो रही, कभी
0: अच्छी तेज हो रही है या फुहारे चल रही हैं?
1: तेज हो जाती है, इस टाइम तेज हो गई तो रात में फुहारे चल रहे हैं, ऐसे मतलब सुबह शाम चलती ही रहती है लगातार।
0: हाँ, ये बात सही है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं?
1: बच्चे तो मेरे 5 है मैम जी,
0: 5 बच्चे?
1: उम्र
0: अरे, क्या उम्र है आपकी?
1: होगी 35 साल।
0: ओहो, 35 साल में 5 बच्चे, गजब दिया आपने तो।
1: जी मैम, 4 मौड़ी
0: चलिए,
1: है और
0: कोई बात नहीं। तो ये
1: एक मोड़ा
0: बताइए
1: है छोटा।
0: कि आप अपने बच्चों की जो परवरिश करती हैं, उसमें अच्छे इंसान बनने की जो नींव डाली जाती है, उसके लिए क्या प्रयास करती हैं, क्या कोशिश करती हैं, बताइए।
1: यही कहती मैम कि छोटे होते फिर बड़े होते तो पढ़ाना लिखाना चाहिए, और जो घर में अच्छी बोल चाल रखना चाहिए, और उन्हें अच्छा अच्छा सिखाना चाहिए कि किससे बात कैसी करना है। जी
0: तो आपके बच्चे संस्कारित हो रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों में, मतलब, हम संस्कार डाल पा रहे हैं अच्छे?
1: अभी तो प्रयास चालू है।
0: बिल्कुल, कोशिश जारी रखिए। और बच्चों को हमेशा दूसरों का आदर करने की आदत डालिए, प्रकृति और जानवरों से प्रेम करने की आदत डालिए जब बच्चों
1: जी
0: में।
1: मैम,
0: और सबसे बड़ी बात, अनुशासन जरूर रखिएगा कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, तो इस प्रकार
1: जी
0: उनको
1: जी
0: समय प्रबंधन की आदत हो जाएगी।
1: ट्यूशन भी जाती है ना 6 बजे, तो
0: हाँ
1: सुबह
0: संगीत,
1: जगाना पड़ता है, और शाम के भी कहते हैं कि शाम
0: हाँ
1: की जल्दी लेटो तो
0: जी
1: सुबह जल्दी
0: जी
1: नींद खुल जाएगी।
0: चलिए संगीता जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी मैम थैंक यू, और मेरी बात तो 3 माह से पहले हुई थी और अभी लगा है, और आपसे बात नहीं हो पाती तो वो तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन आज बात हो रही तो
0: अरे
1: बहुत
0: चलो,
1: अच्छी
0: एक
1: हो
0: हफ्ते बाद
1: रही।
0: फिर कोशिश करना, पक्का बात होगी। ठीक है संगीता,
1: जी
0: ओके,
1: मैम,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हेलो मैम, नमस्कार। हाँ
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी मैम, जय हीरामन वावा रेडियो सोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ। कैसे
0: कैसे
1: हैं
0: हैं?
1: मैम आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल है।
1: ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद, एकदम आनंद मंगल है मैम
0: बिल्कुल। और अशोक जी, हम पूछना चाहेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं?
1: जी। मैम हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है।
0: कितने बड़े
1: जी
0: बड़े
1: एक
0: हैं?
1: एक है अपने 10-11 साल के, 8 साल के, और एक 3 है, 3 साढ़े 3
0: अच्छा
1: साल
0: अच्छा तो आज जो हमारा विषय है अशोक जी, वो ये है, विनोद जी, क्षमा कीजिए विनोद जी।
1: जी
0: तो विनोद जी, आज जो विषय है कि अच्छे इंसान बनने की बच्चों में जो व्यक्तित्व की नींव है, उसे हम कैसे डालते हैं, उसके लिए क्या कोशिश करते हैं, हम लोगों की तरफ से क्या प्रयास होना चाहिए, तो कुछ उस पर रोशनी डालिए आप।
1: जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, शुरू से ही, बचपन से ही, एक तो उनको माता पिताजी के अलावा बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना सिखाना चाहिए, और एकदम हमेशा सही बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जब शुरू से ही अपन अच्छे से शिक्षा संस्कार देंगे तो आगे चल के वो आगे बढ़ पाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहना ये तो, क्योंकि बच्चों में संस्कार बचपन से ही यदि देना शुरू करेंगे, तभी जाकर वो अच्छे इंसान के रूप में बदलेंगे, है ना।
1: जी जी
0: बच्चे तो
1: मैम
0: एक कोमल मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें हम जैसा आकार दे देंगे वो वैसे ही दिखेंगे।
1: जी
0: तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा विनोद जी, कॉल करने के लिए
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: जी, नमस्ते मैम। आप कौन?
0: मैं कविता रावत, आप कौन?
1: जी मैम, मैं ग्राम बनेका तहसील बंदा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी महेंद्र जी, एक हफ्ते के बाद बात कर रहे होंगे ना?
1: नहीं मैम, हम तो सेकंड टाइम लगा है लाइफ में।
0: चलिए कोई बात नहीं। और महेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
1: मैम अपने मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं मैम,
0: अरे वाह। कहाँ
1: तो
0: पर है
1: बार न
0: आपकी
1: बार
0: शॉप?
1: ट्राई करते रहते हैं, तो आज लग गया इत्तेफाक की बात।
0: चलिए बहुत अच्छी बात
1: वरना
0: है।
1: मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है कि आप और उनसे बात कर सकें।
0: अरे नहीं, देखिए किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि कब चमक जाए कोई नहीं देख कर आया। और आज आपका दिन बहुत अच्छा है ना?
1: सच
0: लगा
1: में
0: ना
1: हम भी
0: कॉल?
1: खुश हैं जी मैम। शॉप आई पे है मैम
0: शॉप पर ही है ना?
1: जी।
0: चलिए, तो मैं ये बोल रही थी महेंद्र जी कि जो आज हमारा विषय है उस पे हम बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको पसंद का गीत, हमारी पसंद का। तो विषय
1: अच्छा,
0: हमारा
1: आपकी
0: है,
1: पसंद का?
0: हाँ आज हमारी पसंद का, कल अगर आप लगाएंगे ना, लेकिन अब आप एक
1: हाँ
0: हफ्ते बाद लगाइएगा तो आपको फ़ोन करे गीत सुनने में। ये प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे, और इसमें सिर्फ
1: जी,
0: बात कोई बहुत अलग विषय नहीं होता है, जो हमारे रोज़मर्रा में काम आने वाली बातें होती हैं ना,
1: हाँ
0: ज़रूरत की, उसी विषय पे बात करते हैं। तो आज का
1: जी
0: हमारा विषय है कि बच्चों को अच्छे व्यक्तित्व की नींव कैसे डाली जाती है, संस्कार आप अपने
1: मैम,
0: बच्चों को कैसे देते हैं?
1: बिल्कुल। पहली जो गुरु होती है माता होती है, माता पिता,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: और सेकंड गुरु होते हैं अपने स्कूल के टीचर। देखिए, जो अपन घर से शिक्षा देते हैं वही बच्चे ग्रहण करते हैं,
0: बिल्कुल सही कहना है।
1: और इसके बाद में अपन तत्पश्चात भेजते हैं कहाँ, स्कूल में, तो बच्चे सीखते हैं।
0: तो
1: तो
0: आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे व्यवहार की प्रतिदिन जो चर्चाएं होती हैं, घर में क्रियाकलाप होते हैं,
1: हाँ,
0: उन सब का
1: लड़ाई
0: असर
1: झगड़ा,
0: भी हमारे
1: गाना
0: बच्चों पर?
1: गगाना,
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं हम आपकी बात। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज सभी होती है, तो ऐसा नहीं है, वो अपने लिए देख परख के करना चाहिए बच्चों के लिए, या बच्चों को दूर कर दो या फिर उनको आने मत दो, तो बात कर लो। क्योंकि घर में जो बातें अगर हो रही तो बच्चे स्वाभाविक बातें सीखेंगे
0: बिल्कुल सीखेंगे।
1: मैम।
0: तो कोशिश यही करना चाहिए कि अपशब्दों का प्रयोग यदि हम भी ना करें, तो
1: हाँ
0: जैसा हमारा व्यवहार देखेंगे हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना? तो हमें अपने
1: बिल्कुल
0: बच्चों को अच्छा बनाने के लिए पहले स्वयं भी अच्छा बनना पड़ेगा। स्वयं भी यदि हम समय से उठेंगे, समय से सोएंगे, समय पर सारे काम करेंगे, तो बच्चे बचपन से ही वैसी आदतें देख देख के वैसा ही सीखते जाएंगे, वो
1: सही बात
0: ऑटोमेटिकली
1: मैम,
0: होता चला जाएगा, स्वतः
1: बिल्कुल
0: होता रहेगा,
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: क्या
0: बहुत सारी
1: बच्चों के लिए
0: चीज़ें,
1: दुष्प्रभाव यही पड़ता है
0: बिल्कुल, हमारे एक्शन से ही बच्चे हैं ना सीखते हैं, जो भी
1: सही बात
0: है
1: मैम।
0: ना? चलिए महेंद्र जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि आज आप बहुत प्रसन्न होंगे कि आपका कॉल
1: ओ
0: लगा।
1: मैम, बिल्कुल
0: ठीक है,
1: मैम,
0: चलिए, नमस्ते,
1: नमस्ते
0: कॉल
1: मैम।
0: करने के लिए धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और हमारे अलग अलग श्रोताओं से हमने जानकारी हासिल की।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 का दो दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फोरम के दूसरे दिन आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायर साइड चैट आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को देश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने के कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है। इसके बजाय कम उत्पादन, बढ़ी हुई मांग, खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और जमाखोरी जैसे कारण हैं। राज्य सरकार ने कल 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेन्द्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मानसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में नमस्कार स्वीकारिए सरिता का। पहला गीत हमने लिया है फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से। इस गीत को गाया है अनुराधा पुडवाल और कुमार सानू ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। मैं उन श्रोताओं के नाम बता देती हूँ, शुभ चंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन और बिट्टा बजाज। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली, पंजाब से। और इन्हीं श्रोताओं के साथ हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। तो श्रोताओं, अभी मैं आपके साथ थी सरिता और आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश कर रही थी, कुछ गीत मैंने आपको सुनाए। अब हमारे साथी जावेद खान जी आ गए हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सरिता जी, इतनी अच्छी आपकी फरमाइश के कार्यक्रम में आप गाने सुनवा रही हैं और हमारे श्रोताओं के पत्र पढ़ रही हैं। मैं सोचा था कि आप पूरा प्रोग्राम आप ही करती, लेकिन अब ये है कि
0: नहीं जावेद जी, मैं चाहती हूँ कि श्रोता कुछ आपकी भी सुने और आप उनकी पसंद के कुछ गीत सुना दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अगला गाना कौन सा सुनवा रहे हैं?
0: अगला गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म डर से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है शिवहरी का।
1: तो सुनवाते हैं अपन श्रोताओं को।
0: जी जी,

अगला गाना लिया है हमने छोटे नवाब से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है और आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, पटेल नगर मलोड पंजाब से लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, और कालका से शुभचंद्र बजाज चंद्रमोहन इंद्रमोहन बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं घर घर की कहानी फिल्म का एक गाना। आवाज़ें हैं अनुपमा देशपांडे, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की, इस गाने को पसंद किया है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़कर और श्रीमती सरिता गायकवाड़कर, प्रिंस एकांश गायकवाड़कर और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है आकार हाइट से बहादुरा, नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित गायकवाड़कर और कुमारी ध्वनि गायकवाड़कर। सुनते हैं ये गाना।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कारवां फिल्म में मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में एक गाना, और जिसको लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहूनगर यवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकम खत्री, मोहम्मद अमलताश खत्री और रमेश गोड़ और शादाब खत्री ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गाना।

0: कारवां के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
3: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
4: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है, ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
5: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कॉन्डोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
4: हाँ भाई समझा।
5: तो संयम, वफादारी और कॉन्डोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़े और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जमुनिया का चौथा भाग, यानी धारावाहिक जमुनिया की चौथी खड़ी।

0: पिछले अंकों में आपने सुना कि चमुनिया अपने पति रतन और देवर करण के साथ रहती है। पति को जमीन का पट्टा मिलता है जिसे मेहनत करके वो खेती लायक बनाते हैं। करण को इस बात से जलन है कि खेती वाली जमीन में उसका नाम नहीं है। उधर गांव का जमींदार दीवान गांव वालों को कर्जा देकर मुट्ठी में करना चाहता है। ऐसे में रतन को भी कर्ज लेना पड़ता है जिसमें करण और दीवान हेरा फेरी करके 10,000 रुपए के कर्ज को 25,000 बना देते हैं। इन सबसे अनजान है रतन। वो खेती में लगा रहता है। अचानक आई बारिश से खेत में पानी हो जाता है और रतन और जमुनिया अपने मित्रों को साथ लेकर धान रोप देते हैं। अब आगे
1: अरे बेटा गोलू, अरे इधर तो आ।
2: आया बापू।
1: बेटा तुम्हारी माई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही?
2: बापू वो पानी लेने गई है।
1: अच्छा अच्छा, तूने कुछ खाया बेटा?
2: हाँ बापू, मैंने खा लिया है।
1: क्या खाया?
2: रोटी खाई है। माई बोल के गई थी कि बापू जाग जाएं तो जंगल चले जाना लकड़ियां बीनने।
1: अच्छा तो फिर ठीक है, जा, पर जरा संभल के लकड़ी उठाना।
2: जी बापू।
1: कल ही बारिश हुई है ना, जमीन के कीड़े मकोड़े सांप वगैरह निकलते हैं, संभाल के बेटा। हाँ
2: अच्छा बापू, जाता हूँ।
3: अरे धीरे धीरे दौड़, कहाँ को जा रहा है? तेरे बापू जाग गए का?
2: हाँ माई, जाग गए हैं, अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे।
3: अच्छा ठीक है, जा।
4: ये पानी लाना भी मुई एक कसरत है। गांव में एक आध पाइप लग जाता तो कितना सुख होता। हे राम।
1: आ गई जमनिया।
4: हाँ जी आ गई। क्यों आज क्या करने वाले हो? हाँ ना हो तो आराम कर लो, इतने दिनों से रात दिन काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। हाँ
1: अरे भाई कैसे आराम करें जमुनिया, कल हड़बड़ी में पानी गिरा तो लालच में आके धान तो रोप दिए, पर इतने से धान तो पैदा होने से रहा।
4: तो फिर क्या करोगे?
1: सोचता हूँ शहर चला जाऊं, अरे एकाध बोरी खाद ले आऊं, छिड़काव भी तो करना पड़ेगा।
4: ठीक ही सोच रहे हो, चलो जल्दी से रोटी सेक देती हूँ, खा कर जाना।
1: ठीक है तू रोटी सेक, मैं मुंह धोकर आता हूँ।
4: हाँ
1: हाँ भाई, गमछा दे।
3: वही है चारपाई पर, ले लो।
1: अच्छा हाँ हाँ, ये मिल गया। ये क्या हो गया तुम्हें, रो रही हो जमुनिया?
4: रोए मेरे दुश्मन, अरे ये मुई लकड़ियां कल की बारिश में सिम हो गई हैं, मार धुआं फेंक रही हैं, ठीक से जल नहीं रही हैं।
1: तो फिर तुम रहने दो, एकाध टुकड़ा गुड़ हो तो दे दो, पानी पीकर चला जाऊंगा। अरे उधर शहर में ही कुछ खा पी लूंगा।
4: अरे कैसी बातें करते हो, रोटी तो बन गई है, कटोरी में चटनी है, खा लो, मैं थोड़ा गुड़ का शरबत बना देती हूँ। हाँ
1: चल तो फिर ला, खा लेता हूँ। अरे ये तो बता जमुनिया, ये करण को क्या हो गया था? बंटवारे की बातें कर रहा था, कुछ अनाप शनाप भी बक रहा था, पता नहीं क्या बोले चला जा रहा था।
4: कोई अनाप शनाप नहीं बोल रहा था, सोच समझ कर बोल रहा था, उसकी नियत में ही खोट है।
1: अरे ऐसा क्यों सोच रही हो, दारू के नशे में था, उसी से कुछ बोल गया होगा।
4: मैं तो ये समझती हूँ कि नशे में आदमी अपने दिल की बात बोलता है, सच बोलता है। अभी उसकी छोड़ो, आप तो खाद का देखो, जाओ।
1: अच्छा ठीक है। अरे जमुनिया ला कुछ पैसे तो दे दे, मैं चलूं।
4: हाँ अभी लाई। हाँ
5: सुमरन करके मनिया देव का।

0: देर हो गई। हाँ तुम लोग सुनो जी भर के आला, हम थोड़ी देर आराम करके आते हैं।
1: अरे तू कब आया करण? अरे तुझे मालिक याद कर रहे थे।
2: अच्छा
1: हाँ, मालिक अभी बैठक में गए हैं, तू चाहे तो वहीं चला जा। जा जा।
2: चला जाऊं?
1: हाँ बिल्कुल,
2: बुरा तो नहीं मानेंगे?
1: अरे भैया चला जा, अरे कुछ डांटे तो माफी मांग लेना, मैं हूँ ना।
2: ठीक है।
1: हाँ जा जा जा, डर मत।
2: जी जी। मालिक।
0: कौन है?
2: मैं हूँ करण, अंदर आ जाऊं क्या?
0: आ जा करण आ जा। हाँ? बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अरे तुझे याद कर रहे थे हम। कैसा है तू, क्या हाल है तेरा?
2: ठीक ही हूँ मालिक, बस थोड़े पैसे की तंगी है। आप किस लिए याद कर रहे थे मालिक?
0: इसी के लिए याद कर रहा था तुझे। कई दिन हो गए तू इधर आया ही नहीं, सोचा तुझे पैसों की तंगी होगी तो कुछ ले जा भाई।
2: आपकी बड़ी दया है हम पर मालिक।
0: अच्छा भैया, हमने सुना है तू अपने भाई से कल रात झगड़ा कर रहा था और अलग होने की बात भी कर रहा था, ठीक सुना ना हमने?
2: हाँ मालिक, आप ठीक सुने हैं।
0: निरे गधे हो तुम। अरे माना कि रतन चतुर है, तुम्हारा नाम नहीं होने देता, तुम्हारी कोई कदर है नहीं, तू निकम्मा अलग होकर कमाएगा खाएगा क्या हैं? अरे हर चीज का सही टाइम होता है, अभी जाकर करण से माफी मांग लेना, कह देना कि नशे में गलती हो गई है। और जब मैं तुझे बताऊंगा तब अलग होना। और हाँ, अभी खाद वाद नहीं चाहिए क्या हैं? वो तो मुफ्त आएगी नहीं पानी की तरह।
2: हाँ आज शहर गए हैं, शायद खाद ही लेने गए हूँ।
0: अच्छा है, सिर्फ फोल लेने दो से। अरे शहर में तो खाद मिलने से रही, लौट के खाली हाथ आएगा, तब उसे समझा बुझा के मेरे पास लेकर आना, मैं खाद का इंतजाम कर दूंगा।
2: अच्छा मालिक।
0: हाँ अच्छा, ये ले 500 रुपया।
2: जी।
0: पर हिसाब रखते जाना बच्चू।
2: जी मालिक।
0: हाँ अभी जा बैठक में बैठकर आला का मजा ले।
2: जी।
0: बहुत ही अच्छा गवैया आया है भैया, सुनते जाना।
2: जी मालिक, आपकी मेहरबानी है मालिक।
3: इतनी विद्या थी मचला पर सब बटुआ में धरी समान।

0: अरे जमुनिया, ला भाई थोड़ा पानी ले आ।
1: लाई जी।
2: अरे ये का खाली हाथ आ गए, खाद कहाँ है?
0: बड़ा कठिन है जमुनिया, खेती करना भी बहुत कठिन है। पूरे शहर में खाद नहीं है, कहते हैं सप्लाई नहीं है। कब आएगी खाद कुछ कह नहीं सकते।
3: क्या भैया, आप तो करण को कुछ समझते ही नहीं। अरे मैं भी इसी घर में रहता हूं, निकम्मा हुआ तो क्या, अरे कुछ तो काम आ ही सकता हूं।
0: अरे ये कल रात क्या अटवारे बटवारे की बात कर रहा था रे तू?
3: अरे माफ कर दो भैया, थोड़े नशे में अनशंट बोल गया। अब भला मैं आपसे अलग होकर जी सकता हूं क्या है? जमुनिया भौजी तुम भी माफ कर दो ना।
2: ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बात को खींचो मत। सुनो, कुछ खाद वाद के बारे में पता तो लगाओ।
3: अरे इसमें सोचने पता लगाने वाली क्या बात है, आप उठो चलो अभी ले आते हैं।
2: हाँ, कहाँ से ले आओगे भैया?
3: अरे अपने दीवान जी से ले आएंगे।
2: क्या
0: दीवान जी से खाद लाएंगे?
3: और नहीं तो, अरे पिछले साल ही उन्होंने काफी खाद लेकर जमा कर लिया है, क्या करेंगे, 10-5 रुपए ज्यादा ही लेंगे ना, और क्या, हमें टाइम पर चीज मिल जाएगी, शहर से लाने का खर्चा बचेगा सो अलग।
0: अब तू कहता है तो ले लेते हैं, पर मुझे इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। हाँ पर और कोई उपाय भी तो नहीं है।
3: तो फिर अभी चलते हैं, बात का क्या भरोसा।
0: अच्छा भाई चल।
4: आओ रतन आओ, सुना शहर गए थे खाद लेने?
0: जी मालिक।
4: तुमने समझाया नहीं करण, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे शहर में अभी सप्लाई नहीं है भैया, वो तो मैंने पिछले साल खाद लेकर रख लिया था तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के लिए। अच्छा तुम्हारे खेत के लिए तो 2 बोरी ठीक रहेगी ना? वैसे करण ने तुम्हें बताया नहीं खाद के बारे में, या तुमने पूछा ही नहीं होगा शायद?
3: जी मालिक, किसी काम में मेरी राय नहीं लेते भैया।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मालिक।
4: कैसी बात नहीं है? हुँ? अरे भैया अपने इस भाई को भी कुछ काम धाम सिखाओ, जिससे ये जिम्मेदारी समझे अपनी, कुछ करे खुद होकर।
0: ठीक है मालिक, ये कुछ करे तो सही, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मालिक।
4: बिल्कुल ठीक कही। अच्छा करण
3: जी,
4: अंदर गोदाम में चला जा और 2 बोरियां खाद की उठवा ला। और हाँ रतन।
0: जी मालिक।
4: नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बोरिया उठा ला तब बात करते हैं।
0: जी मालिक ठीक है।
5: कावा से आईला हो कम ने ठैमा जयबा बबुआ बोल तो ना।
4: अच्छा ले आए खाद, बड़ा अच्छा किया। चलो अब सीधे घर लेकर जाओ उस खाद को, किसी ने बोल दो पहुंचवा देगा।
3: जी।
4: और रतन तुम रुको जरा।
0: जी मालिक।
3: अरे चलो चलो भैया,
6: चलो भैया चलो चलो भैया चलो उठा लो।
4: देखो रतन, तुम सीधे सच्चे ईमानदार आदमी हो, पर भैया साफ बात, तुम्हें छल कपट आता नहीं, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं।
0: जी मालिक।
4: पर भैया ये खाद का पैसा तुम्हें नकद देना होगा। हाँ कहा है कि हमारे घर में तुझे बनती नहीं है ना। भैया हम भी खरीद कर ही लाए हैं। हाँ इतना जरूर करेंगे कि दाम का दाम लेंगे। हाँ
0: ठीक है।
4: तुमसे मुनाफा नहीं लेंगे, ठीक है ना?
0: जी ठीक है मालिक।
4: और बुरा मत मानना अपने इस छोटे भाई से, अरे उस करण से संभल कर रहना। हाँ उसका कोई भरोसा नहीं, जाने कब क्या कर दे।
0: हाँ ठीक है मालिक।
4: ठीक ना? बिल्कुल ठीक। खेती करो, अच्छे से खेती करो, भगवान करे खूब अच्छी फसल आए तुम्हारी, तुम्हारी मेहनत कामयाब हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
0: जी मालिक जी।
4: जाओ सुखी रहो।
0: जी मालिक।
1: इधर आओ।
7: जी मैं?
1: हाँ तू ही, क्या नाम है तेरा?
7: जी गोलू।
1: सर ये गोलू है।
8: इससे पूछो दीवान जी का घर कौन सा है।
1: ए लड़के, दीवान जी का घर कौन सा है?
7: वो सामने बड़ी सी हवेली है ना, दीवान जी का घर वही है।
8: अच्छा वो, ठीक है चलो ड्राइवर।
1: जी सर।
4: अरे आइए आइए सर। ओ भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। पर सर ऐसा क्या काम आ गया, आप मुझे बुलवा लेते तो मैं खुद हाजिर हो जाता आपकी सेवा में।
8: ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे भाई पट्टे बटे महीने भर से ज्यादा हो गया।
4: जी जी जी जी।
8: तो मुझे देखने आना पड़ा कि लोगों को कब्जा मिला है कि नहीं, और देखा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर पैर फैलाकर सो रहे हैं।
4: आकर बहुत अच्छा किया सर आपने, बिल्कुल सही किया सर आपने, वरना देखिए ना पहले के अफसर तो गांव आते ही नहीं थे।
8: वो तो आप ठीक कह रहे हैं। अरे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहां तक, अब सड़क है नहीं, पगडंडी में कीचड़ भरा है बारिश से। आप जरा हमारे साथ थोड़ा चलिए, खेत आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कीजिए।
4: जी। अरे सर अभी तो आप आए हैं, जरा चाय पानी हो जाए फिर चलते हैं।
8: नहीं भाई नहीं, चाय पानी फिर सही। अरे अभी शाम हो रही है, ये काम अंधेरा ढलने से पहले हो जाना चाहिए। उठिए उठिए भाई, चलिए चलिए।
4: ठीक है जैसा आपका हुक्म सर। चलिए सर चलिए चलिए।

0: ये खाली जमीन कैसी है?
1: जी ये तो अलॉट हो गई है सर। वो क्या है, मिट्टी बड़ी सख्त है तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वैसे बारिश तो हो गई है, पर देखिए ना, लोग खेतों में काम करते नजर ही नहीं आ रहे।
0: यही तो दीवान जी, अरे आप गांव के सरपंच हैं, ध्यान रखिए जमीन का दुरुपयोग ना हो। और मुझे बताइएगा कितने पट्टे बटे और कितनों में खेती हो रही है।
1: ठीक है सर। सर मैं ऑफिस में आकर सब बता दूंगा।
0: और ये किसका खेत है?
1: ये, अरे सर ये रतन का है। सर बहुत मेहनती है सर वो।
0: अच्छा, पट्टे का है?
1: जी जी जी हाँ, पट्टे का है।
0: अरे वाकई, इसने खेत तैयार भी कर लिया और धान भी रोप दिए, वाह कमाल। सुनो भाई इधर आओ। हाँ हाँ, तुम आओ। शाबाश, इसी तरह मेहनत करो, जरूर कामयाब होगे। खेती के लिए पैसे वैसे चाहिए हो तो बता देना। हाँ
2: जी मालिक, अभी तो दीवान जी से कर्ज ले लिया है, ये बड़े मददगार हैं, हम लोगों की भलाई की सोचते हैं।
0: वो सब ठीक है, मैं तो ये बताने आया था कि सरकार ने कुछ बैंकों को कहा है कि वे गांव में जाएं और जरूरत के हिसाब से कर्ज दें। दीवान जी, हमने तो आपको बता दिया था ना भैया, आपने इन लोगों को बताया नहीं?
1: जी सॉरी सर, बताने ही वाला था।
0: कब?
1: सर एक काम करता हूँ सर, सभी गांव वालों को बुलवा लेता हूँ, आप खुद ही अनाउंस कर दें सर उनके सामने।
0: बिल्कुल, अब यही करना पड़ेगा। और देखिए, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी योजना किसानों के लिए बनती है उसे इन्हें बताइए। और वो हैंडपंप के लिए जो ग्रांट आई थी उसका क्या हुआ?
1: पैसे रखे हैं सर, वैसे अब तो बारिश आ गई है, अब पानी की सतह ऊपर आ जाती है ना, सोचे गर्मी में लगवाएंगे ताकि साल भर पानी मिले। नहीं तो नल सूख जाते हैं ना सर।
0: अरे भाई, बारिश तो कल हुई है, इसके पहले तो गर्मी थी ना दीवान जी, बात मत बनाइए। देखिए जल्द से जल्द हैंडपंप लगवाइए, अभी इतना पानी नहीं बरस रहा है कि जमीन का लेवल ऊपर आ जाए, समझे आप?
1: जी जी, अच्छा तुरंत काम शुरू करवाता हूँ। सर अब चले, कुछ चाय वाय हो जाए सर, थक गए होंगे सर आप।
0: अरे अब चाय छोड़िए, देखिए अंधेरा हो रहा है, रास्ता भी खराब है, देखिए चाय फिर कभी सही।
1: अरे सर चाय में कितना टाइम लगता है सर, मेरे सत्कार का मान रख लीजिए सर।
0: चलिए अच्छा, लेकिन फटाफट चाय पिलाइए।
1: अरे बिल्कुल सर, अभी लीजिए। ए खड़ा खड़ा मुखिया देख रहा है
3: जी मालिक।
1: अरे जल्दी से चाय नाश्ते करते आप करो।
3: अभी अभी लाए मालिक, अभी लाए।
1: आइए सर, आइए।

0: अच्छा दीवान जी, चलते हैं। अरे भाई, आपने तो चाय के नाम पर अच्छा खासा डिनर करा दिया।
1: वैसे सर, बात तो यह है कि आप जैसे अफसर इस गांव में आते ही कहां है सर।
0: आना पड़ेगा, सरकार बहुत बारीकी से सब पर नजर रखे हुए है।
1: जी जी जी
0: हाँ। और हाँ, जो योजनाएं हम आपको लागू करने के लिए देते हैं उन पर जल्द से जल्द अमल करना होगा दीवान जी।
1: जी सर, जी सर।
0: हाँ, ये आपके भी हित में है। समझ तो गए ना आप?
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तुरंत अमल करेंगे। हाँ, थोड़ा आलस वालस में विलंब हो गया सर, माफी चाहते हैं सर।
0: नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और हाँ दीवान जी, गांव वालों को ठीक से समझा देना कि अगले संडे को बैंक वाले आएंगे।
1: जी सर, जी
0: हाँ,
1: सर।
0: अपने हिसाब से लोग ऋण ले सकते हैं भाई, ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक वालों पर भी आप नजर रखिएगा, अरे मतलब लोगों को तंग वगैरह ना करें, ठीक है?
1: ओके सर, ओके सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रृंखला रहस्य के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक की चौथी कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसे हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वो दिनांक 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और भोपाल का दूसरा नंबर 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 23 अगस्त 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। कार्यक्रम संबंधी सूचना संपन्न हुए और लीजिए अब एक और सूचना है। श्रोताओं की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा और इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी को भी किसी भी प्रकार की हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी कि 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना संपन्न हुई।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। तो श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 का दो दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फोरम के दूसरे दिन आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायरसाइड चैट आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को देश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने का कारण एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है, इसके बजाय कम उत्पादन, बढ़ी हुई मांग, खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और जमाखोरी जैसे कारण हैं। मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षक, भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी की शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मानसून टर्फ चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:01 हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर समस्या बन चुका है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है तो कहीं बाढ़, सूखा और अनियमित वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बहनों, जलवायु परिवर्तन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पानी, ईंधन और भोजन जैसी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती हैं। जब सूखे के कारण पानी की कमी होती है तो महिलाओं को पानी लाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इससे उनका समय और श्रम दोनों बढ़ जाते हैं। बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अत्यधिक गर्मी, प्रदूषित पानी और भोजन की कमी का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये कठिनाइयां और भी ज्यादा हो सकती हैं। बहनों, बच्चे भी जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। स्वच्छ भोजन और पानी की उपलब्धता में कमी बच्चों में कुपोषण और विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बच्चों के स्कूलों का नुकसान या लंबे समय तक बंद रहने के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। कई बार तो उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई और उनका सामान्य जीवन बाधित होता है। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता से भी जुड़ा हुआ विषय है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करना चाहिए, बिजली और पानी की बचत, सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देनी चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग और कचरों का उचित प्रबंधन भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं और बच्चों को इसके दुष्प्रभावों से बचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकेंगे। बहनों, कुछ गीत सिर्फ सुने ही नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनकी धुन मन को सुकून देती है और उनके शब्द हमें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत गीत है फिल्म रिफ्यूजी का, पंछी नदिया पवन के झोंके, जिसे अपनी मधुर आवाज से सोनू निगम और अलका याग्निक ने सजाया है। तो आइए प्रकृति प्रेम और आजादी की भावनाओं से सजे इस सुरीले गीत का आनंद लेते हैं।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत फिल्म रिफ्यूजी से पंछी नदिया पवन के झोंके, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने।
1: बहनों, आज हमारे साथ हैं श्रीमती शोभा पांडे जी, 10 साल उपभोक्ता फोरम रीवा में जज रही हैं, वर्तमान में समाज के सेवा कार्य में तल्लीन हैं। तो शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: कल्पना जी नमस्कार।
1: शोभा जी, जैसे कि कहा जाता है कि अंगदान महादान किसी के जीवन की नई पहचान है, जो हमारे बाद भी कोई मुस्कुरा सके, इससे बड़ा मानवता का सम्मान क्या है। तो आप अंगदान के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए कल्पना जी, जहाँ तक अंगदान का सवाल है, मैं तो इसे जीवन दान तो नहीं कहूंगी, लेकिन नया जीवन मिलता है लोगों को। आप नेत्र दान को ही देख लीजिए, बहुत लोगों की आंखें काम नहीं कर पाती, तो उनको रहता है किसी की आंखें मिल जाए। लोग पब्लिश कराते हैं हर चीज में, आंखें अगर किसी की आपके काम की तो आंखें नहीं रह गई आप जब नहीं है, उसके बाद अगर आप किसी को दे देंगे वो देखने लगेगा। तो इन सब चीजों की बड़ी डिमांड रहती है, लेकिन मिल नहीं पाते हैं।
1: सही,
2: आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होने लगा, दिल दिल थोड़ा सा उसमें डॉक्टर ये करते हैं कि भाई किसका 18 साल के लड़के का दिल हम 50 साल 60 साल के लड़के को नहीं दे सकते हैं। फेलियर भी हो सकता है, लेकिन दिल में हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है।
1: अच्छा।
2: तो मैं तो सोचती हूँ कि अंगदान बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता है।
1: सही बात है।
2: सामने वाले के चेहरे में कितनी खुशी होती है।
1: हाँ।
2: और अपनी आत्मा को बहुत शांति मिलती है।
1: अच्छा, तो क्या आप बता सकती हैं कि अभी जैसे शोभा जी बता सकती हैं कि हमारी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, इसी पर जुग जुग जियो अभियान, तो ये जुग जुग जियो अभियान क्या है?
2: ये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है
1: जी।
2: ये अभियान एक वर्ष तक चलाया जा रहा है।
1: हाँ।
2: इसका मुख्य विषय, इसका संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर जन जन लोगों को ये पहुंच जाए, लोगों को अंगदान का महत्व के बारे में सही जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य मानवता और जीवन बचाने की भावना को बढ़ावा देना है।
1: अच्छा शोभा जी, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: इसका मुख्य उद्देश्य अंगदान के लिए जागरूक करना है। जरूरतमंद मरीजों को जीवन की नई आशा मिल सकती है। लोगों की गलत धारणाओं और झिझक को दूर करने का प्रयास करता है। अंगदान के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाता है। सहयोग और मानवता की भावना बढ़ाई जाती है। इसका संदेश देश के हर समुदाय तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
1: अच्छा शोभा जी, जैसे कि अंगदान को जीवन दान का सबसे बड़ा उपहार क्यों कहा जाता है?
2: कुछ सही कहा आपने, अंगदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन की नई उम्मीद बन जाता है। दान किए अंग की किसी मरीज के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं, इससे किसी परिवार की खुशियां वापस आ सकती हैं। दाता का यह महान कार्य दूसरों के जीवन में आशा पैदा करता है, इसलिए अंगदान को मानवता की महान सेवा माना जाता है। यह सचमुच जीवन का अनमोल उपहार है।
1: सही। अच्छा, समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है?
2: बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अंगदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कुछ लोगों के मन में इससे जुड़ी गलत धारणाएं भी होती हैं। जागरूकता से इन भ्रांतियों को दूर किया जाता है। लोग अंगदान की प्रक्रिया और महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जरूरतमंद मरीजों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और समाज में मानवता और सहयोग की भावना मजबूत होती है।
1: सही बात है शोभा जी, जैसे कि इस अभियान में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
2: युवा वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा इस अभियान के संदेश को तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वे विद्यालय और समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, पोस्टर, भाषण और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से संदेश दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैला सकते हैं। इस प्रकार युवा अभियान को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: अच्छा शोभा जी, ये अंगदान के प्रति लोगों में झिझक का क्या कारण है?

0: भगवान से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।
1: अच्छा शोभा जी, आप लोगों को ये जुग जुग जियो अभियान के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो यही कहूंगी कि अंगदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने की अपील करूंगी। गलत अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय विश्वसनीय जानकारी लेना चाहिए। हमें समाज में जागरूकता और मानवता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अंगदान सच में किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सके।
1: बहुत अच्छा, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आभार व्यक्त करती हूँ कल्पना जी, मुझे आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। करती हूँ कि दोबारा फिर हम मिलेंगे।
2: बहनों, बेटियाँ परिवार और समाज की शक्ति होती हैं। आज बेटियाँ शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं प्रयासों का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना है। बहनों, सशक्त बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से वह अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ले सकती हैं। शिक्षा उसे आत्मविश्वास देती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में सहायता करती है। इसलिए बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, आज बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और अधिकारी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। यदि उन्हें समान अवसर और उचित मार्गदर्शन मिले तो वे देश के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहनों, बेटी को बोझ नहीं बल्कि परिवार और राष्ट्र की शक्ति समझना चाहिए। सशक्त बेटी ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। इसलिए हमें बेटियों को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेना चाहिए। बेटियों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है। माता पिता को भी बेटियों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। विद्यालयों को उन्हें शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर देने चाहिए। सशक्त बेटी परियोजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बेटियों को दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं बल्कि समान अवसर, सम्मान, शिक्षा और विश्वास की आवश्यकता है। यदि हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले तो वह अपनी प्रतिभा से परिवार और देश का नाम रोशन कर सकती है। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए हर बेटी शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। बहनों, बेटी को अवसर दीजिए, वह भविष्य को नई दिशा देगी। बहनों, बेटी घर की खुशियों की वह नन्ही सी किरण होती है जिसके आने से पूरा घर मुस्कुराने लगता है। इसी खूबसूरत भावना को व्यक्त करता है फिल्म कभी कभी का सदाबहार गीत, मेरे घर आई एक नन्ही परी। इस मधुर गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है महान गायिका लता मंगेशकर जी ने। इस गीत का संगीत खयाम जी ने दिया है।

बहनों, अभी हमने सुना गीत फिल्म कभी कभी से मेरे घर आई एक नन्ही परी, जिसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। बहनों, बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता ही है, लेकिन इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। पसीना, धूल और नमी के कारण त्वचा पर चिपचिपापन, खुजली, मुहासे तथा संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल करना आवश्यक है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार साफ पानी और हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करना चाहिए। चेहरे को बार बार छूने से बचना चाहिए। पसीना आने पर साफ कपड़े से हल्के हाथों से पोंछना चाहिए। बारिश के मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। भोजन में हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। बरसात में गीले कपड़े अधिक देर तक नहीं पहनने चाहिए। शरीर को साफ और सूखा रखना चाहिए तथा तौलिया और कपड़े किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट का उपयोग करना चाहिए। त्वचा पर कोई नया कॉस्मेटिक या क्रीम लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। बहनों, साफ सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और उचित त्वचा की देखभाल से बरसात के मौसम में भी त्वचा को स्वस्थ और स्वच्छ रखा जा सकता है। स्वस्थ त्वचा हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का भी प्रतीक होता है। बहनों, सावन का मौसम आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। बादलों की रिमझिम फुहारे मन में नई उमंग जगा देती हैं। इसी सुहावने सावन और प्रेम भरे मौसम की खूबसूरत झलक प्रस्तुत करता है फिल्म चुपके चुपके के सदाबहार गीत अब के सजन सावन में। इस मधुर फिल्म को सुरीली आवाज दी है महान गायिका लता मंगेशकर जी ने। इसके खूबसूरत बोल आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं और संगीत एसटी वर्मन जी ने दिया है। तो आइए सावन की फुहारों और मधुर संगीत के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत आपकी सजन सावन में, जिसे फिल्म चुपके चुपके से लिया गया था और जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने। बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, जिसे हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नलिनी विश्वकर्मा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में लल्लूराम शुक्ला के गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: कलाकार थे लल्लूराम शुक्ला और कार्यक्रम था सुगम संगीत का और ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक,
2: आकाशवाणी है ना।
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म का एक गाना। जी हाँ, दोस्ताना फिल्म का ये गाना है। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। गाना बहुत मधुर है, सुनिएगा।

दोस्ती वो रिश्ता है जिसे हम अनोखा रिश्ता कह सकते हैं। हर रिश्ता हमें बाय बर्थ मिलता है, पैदाइश मिलता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि हमें जब मिलता है, जब हमारे मिजाज, हमारे जो अखलाक है, हमारे बोल चाल का तरीक़ा है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उससे मिलता जुलता कोई इंसान होता है, तब हमारी दोस्ती होती है। तो खैर, दोस्ती के ऊपर तो कहा जाता है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। खैर, ये तो थी बात दोस्ती की। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना, जब जब फूल खिले से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया है। सुनिए ये खूबसूरत गीत।

दिया तुमको हम पे

क्षमा का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना। हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको,

जब दिल खुश होता है तो हर जगह खुशी खुशी नज़र आती है, इसीलिए गानों में जो खुशी का जो दृश्य होता है वो अपने आप दिख जाता है कि किस पिक्चराइज, किस फिल्म पर, किस एक्टर पे पिक्चराइज किया गया था। खैर ये तो बातें होंगी गाने की, और ये था हमारा फिल्म संगीत का आखिरी गाना। और हम आपको याद दिला दें कि आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 2:30 से, तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में सम्मिलित हुए। कल से शुरू हुए इस 2 दिवसीय फोरम में देश और विदेश के प्रमुख उद्योगपति, नीति निर्माता एवं वैश्विक विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। फोरम में आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायरसाइड चैट आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास यात्रा, निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया।
2: हमारे राज्य के अंदर 340 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जहां 22 हमारे पास जंक्शन है, 8 एयरपोर्ट है। सरलीकृत रूप से अगर 1,00,000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक हमारे पास है, बिजली सरप्लस है, मैन पावर भी हमारे पास पर्याप्त है। बल्कि हमारे यहां तो रोजगार आधारित अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो लेबर को भी 5,000 रुपया पर लेबर हम सरकार की ओर से अपना अनुदान जोड़ रहे हैं इंडस्ट्री वालों के लिए।
1: किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है। इसी क्रम में नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में जनसंवाद शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल और काउंटर लगाकर नागरिकों को शासकीय योजनाओं, सेवाओं और पात्रता की जानकारी दी तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत करी में अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जयसिंह नगर विधायक मनीष सिंह, कमिश्नर सुरवी गुप्ता और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने युवाओं, महिलाओं से स्वयं का रोजगार स्थापित करने और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर द्वारा निरीक्षण कर शासकीय व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानना और समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूह के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकास उन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता आधारित आजीविका के अवसरों में तेजी आने और देश में 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने पर चर्चा हुई। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीते 2 दिनों से कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सागर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश में इस समय 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 24 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में देर रात आग लगने से झुलसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के 3 नवजातों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बुरहानपुर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एवं आत्मा योजना के तहत अंतर्राज्यीय कृषकों, वैज्ञानिकों और मास्टर ट्रेनरों को प्राकृतिक खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मुरैना में 24 से 27 अगस्त तक जिला स्तरीय राखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला ज्ञानेश्वरी हाट मुरैना में लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनामाइन मैलेट और फिनाइलिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्य

0: से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है, समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति

0: समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT Cebu 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने $20 अरब मूल्य कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमरीकी टैरिफ से कनाडा के अमरीका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
2: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातु मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
3: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले दो दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: ओडिशा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
5: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थीं जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और दूसरे लोगों का नाम भी बता देंगे, उनके साथ दूसरे साथी भी इस गाने में शामिल हैं। और सईद कादरी का लिखा हुआ गाना है और तौसीफ अख्तर का संगीत है। फिल्म का नाम है ऐसा क्यों होता है। और इस गाने के लिए हम फरमाइश भी आपको बता देते हैं। ये फरमाइश है। इसकी सबसे पहला खत आया है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से लिखने वाले हैं एम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार।

अगला गाना है फिल्म आदमी का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, नौशाद का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से लिखने वाले हैं प्रवीणी प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मनिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चार डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए पसंद के लिए खत भेजा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने।

आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। बहुत ही खूबसूरत गाना था आदमी फिल्म का ये। और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बारादरी का, आवाज़ तलत महमूद की है, कुमार बाराबंकी का कलाम है और नौशाद का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिहा, शोएब, साइमा, मुजतबा, आफिया, रऊफ, शाहिद। और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सिंहपुर बाड़ा बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट, इन्होंने ये फरमाइश के पत्र भेजे हैं। सुनते हैं ये गीत।

तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। बहुत ही खूबसूरत गाना था और इस गाने के लिए हमने फरमाइश के नाम आपको बता दिए थे। अब अगला गाना हम ले रहे हैं, मुंबई शहर हादसों का शहर है, इस ये फिल्म का नाम है हादसा। आवाज़ें हैं अमित कुमार और साथियों की, एमजी हशमत ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ से मैं, और फिल्म का नाम है आरती। लता मंगेशकर के साथ दूसरी आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, रोशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामड़ी मनोरा से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे।

मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रवजल डेरे और अनुत्तर डेरे। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से, बलिया से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने इस गाने को पसंद किया है। इस गाने के लिए फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू राज जाजोरिया ने। और सुनते हैं ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का एक गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडली लोहारा से, लिखने वाले हैं बलोव छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामूरिया, अजय तामूरिया, अल कबीर, तुषार तामूरिया, डॉली राधिका, बेबी पूजा तामूरिया, प्रभा देवी तामूरिया, ग्राम बन बघेरा से, ज़िला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा ने पसंद किया है इस गाने को। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस तिलक सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुशूर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान और लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम और इसमें आप सुनेंगे ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

अभी आप लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण डीटीएच ऑडियो चैनल पर। लीजिए आप सुनिए चित्रपट संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, यह बहुत ही खूबसूरत गाना था फिल्म एक दूजे के लिए से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आधा दिन आधी रात फिल्म का गाना, और आवाज़ें इसमें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आबरू से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, जी एल रावल का ये गाना लिखा हुआ है, सोनी कोमी का संगीत है, सुनते हैं ये गाना।

आहुति ये फिल्म का नाम है और इस फिल्म के गाने को हमने लिया है जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

आधी रात के बाद, ये फिल्म का नाम है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, चित्रगुप्त का संगीत है।

0: जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा।
1: आग और दाग, इस फिल्म में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनिए ये गीत। एस एच बिहारी ने इस गाने को लिखा है और एन दत्ता का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण डीटीएच ऑडियो चैनल पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मध्य प्रदेश पर बीमारू प्रदेश होने का टैग लगा दिया गया था, हमने इस टैग को पूरी तरह से हटा दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम में कहा कि अदालतों में न्याय मिलने की गति और उसकी सच्चाई से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बनती है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:00 हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम इनसे मिलिए।

आकाशवाणी के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रख्यात गोंड चित्रकार श्री भज्जू श्याम। श्रोताओं आप सबको मालूम होगा कि भज्जू श्याम को राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया गया है। इस दृष्टि से हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि भज्जू श्याम की चित्र परंपरा को जानें, उनकी शख्सियत के मुख्तलिक पहलुओं के बारे में जानें, यह भी जानें कि भज्जू श्याम अपनी परंपरा में अपने सृजन में रहते हुए अपने समय के साथ क्या रिश्ता बनाते हैं। तो भज्जू जी आपका हार्दिक स्वागत है इस इनसे मिले कार्यक्रम में। देखिए बातचीत के भज्जू जी बहुत सारे छोर हैं, बहुत सारे सवाल मन में हैं, जिज्ञासाएँ हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि जिस गोंड चित्र परंपरा की हजारों वर्षों की विरासत को आत्मसात करते हुए आप इस सृजन के संसार में दाखिल हुए हैं, प्रवृत्त हुए हैं, और न केवल अपने पाटनगण की उन सीमाओं में रहते हुए बल्कि उस

0: सरहद को पार करते हुए आपने तमाम हमारे भारत के इस मुल्क में अपनी परंपरा को प्रतिष्ठित किया है। सरहद पार के कई मुल्कों में भी आपकी चित्र परंपरा, आपके रंग रेखाएं, आपकी खुशबुएं तैयार कर गई हैं। तो इतना सारा महिमा मंडन जब आपके साथ जुड़ता है, तो पहला सवाल ये बनता है कि सबसे पहले जब आपने अपनी आंखें खोली समझ की, तो ये परंपरा कैसे आपको दिखाई दी, कैसे आप इसमें आए?
1: देखिए, मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मैं कोई आर्टिस्ट बनने भोपाल नहीं आया था। मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर थी और 10वीं पास किया और उसके बाद काम की तलाश में मैं भोपाल आ गया था। यहाँ मैंने 3 महीने वॉचमैन की नौकरी की और नौकरी छूटने के बाद मेरे गुरु स्वर्गीय जनगढ़ श्याम जी ने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ देखा और उसके बाद वहाँ रहने लगा। मुझे रहने और खाने के लिए मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय, और मैं आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने बोला कि आप जो है मेरा स्केच जो कर रहा हूँ उसमें आप कलर भरिए, तो उस दिन से मैं कलर भर रहा हूँ और करीबन 2 साल लग गए मुझे उसके काम को सीखने के लिए।
0: तो भज्जू जी, ये जो पहली बार जब जनगण सिंह श्याम, जो कि आपकी गुण चित्र परंपरा का एक बहुत हम मान के चलते हैं कि पहला सूत्रधारी जिनको हम मानते हैं
1: जी,
0: उनका काम आपने की, तो आपको दरअसल कोई भी काम करने के पहले, खासतौर पे वो काम जो परंपरा से जुड़ा होता है
1: जी,
0: तो पहले तो उस परंपरा की समझ बहुत जरूरी होती है
1: जी, जी।
0: उस परंपरा से जुड़े हुए रंग होते हैं, स्मृतियां होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं। तो ये जब आपने काम करना शुरू किया, तो केवल जनगण के बताए हुए इशारे पर ही केवल आपने काम करना शुरू किया कि उस परंपरा को समझा आपने?
1: मैंने करीबन 5 साल तक उनके बताए हुए काम को ही किया। उन्होंने बोला कि आपको अगर टाइम मिलता है तो आप अलग से कुछ काम करिए, तो मैं रात में काम करता था। वो जब आउट ऑफ स्टेशन जाते थे और एग्जीबिशन के लिए जाते थे, मैं अलग से नहीं कर सकता था, जो वो बोलते थे वही मैं करता था। तो अलग से करने का मतलब यह है कि उन्होंने बोला कि अलग से आप करिए, मेरे जैसे मत करना। वहाँ मैं फिर धीरे धीरे करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फिर मैं स्टोरियों के, जो स्टोरी हमारे यहाँ गोंड प्रधान के जो बाना बजा के गाते हैं, गोंड राजाओं की कहानी, गोंड देवताओं की कहानी, बड़ा देव की कहानी, तो उनको मैं धीरे धीरे पढ़ना और समझना शुरू किया। तो उसमें मैं कोशिश किया कि ये ऐसा हो रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा करके मैंने बनाने की कोशिश की।
0: भज्जू जी, जब आपकी इस परंपरा की बात की और आपने थोड़ा सा इशारा किया कि इसमें देवताओं का गान किया जाता है, बड़ा देव का
1: जी,
0: है ना, और गुण शासकों के भी गौरव का वर्णन किया जाता है, ये थोड़ा सा बताएं कि जो आपकी गोंड समुदाय है उसमें से प्रधान एक जाति है
1: जी,
0: और जिसको कि आप फॉलो करते हैं, जिसके आप प्रतिनिधि हैं
1: जी, हम
0: और गोंड शासकों के लिए ये प्रधान जो हैं उनके मनोरंजन के लिए या उनके कहने पर उन यजमानों के लिए बड़ा देव की आराधना प्रार्थना को गाते रहे हैं बाने को हाथ में लेकर
1: जी,
0: ऐसा शायद परंपरा और इतिहास कहता है। आप थोड़ा साफ करें थोड़ा इस चीज को।
1: ज़्यादातर मैंने जब से देखा है और सुना है तो गोंड जो थे प्रधानों को बुलाते थे, वो उस समय होता था जब वो कोई आदमी ख़त्म हो जा रहा है, और कई गोंड फेस्टिवलों में अगर कोई आदमी ख़त्म हो गया है तो उसके आत्मा की शांति के लिए और जिसके घर में दुख है उस दुख को भुलाने के लिए ये जो गोंड राजाओं की कहानी, भगवानों की कहानी, ये सुनाया जाता था, ऐसा मैंने सुना है। और उसको सुनाने से वो जो दुखी आत्मा था और वो जो वहाँ के जो परिवार थे वो उसमें खो जाते थे, वो कहानियों में खो जाते थे, तो ऐसा मैंने सुना है। और हमारे जो प्रधान जो थे, हम लोग खुद प्रधान हैं, तो हम लोगों को सिर्फ खेती करने के लिए मना किया गया है कि आप जो है ना सिर्फ गोंड की उत्पत्ति ही बोलिए, गोंड प्रधानों के पाठ पढ़िए, और एक पंडित के रूप में हमें बोला गया था। तो उस दिन से प्रधान जो है ना बाना बजाते हैं।
0: भज्जू जी, ये जो पूरी परंपरा है जिसके बारे में आपने कहा कि ऐसा ऐसा ऐसा होता आया है, ये दरअसल एक प्रकार से एक आख्यान है जिसको कि आप एक संगीत में ढालकर आपके प्रधान जो है वो गाते रहे
1: जी,
0: पहुंचाते रहे
1: जी।
0: ये परंपरा पूरी की पूरी चित्रों में कब आई?
1: ये कुछ पेंटिंग जो है ना, मैंने मेरे चाचा जी के पेंटिंगों में मैंने कुछ देखा था, जैसे धरती की उत्पत्ति, तो धरती में

0: हमने सुना है कि पहले जो है ना धरती में पानी पानी था, और पूरा पानी पानी था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, चांद सूरज नहीं था, जीव जंतु कुछ नहीं थे। तो ये जो स्टोरी था मैं कुछ मैंने सुना था और देखा भी था, तो थोड़ा थोड़ा झलक आ रहा था कि चाचा के पेंटिंग में, तो मैंने कोशिश किया कि इसके पूरी ही ये सृष्टि की उत्पत्ति का ही एक पेंटिंग बनाया जाए। तो मैंने कोशिश ये किया कि केचुआ मल जो है ना धरती को पताल द्वीप में रखे हुए थे, किसी जमाने में भगवान ने उनको दे के रखा था, तो मिट्टी खाते हैं वो। तो शंकर भगवान यानी बड़ा देव, बड़ा देव जो है ना धरती की उत्पत्ति के लिए जो है ना कौवा का वो करते हैं, उत्पत्ति अवतार करते हैं, अपने अंग के मैल से निकाल के कौवा बनाते हैं, और कौवा बना के उसको धरती के पता करने के लिए भेजते हैं। तो वो धरती जो है ना केचुआ मल के पास रहता है जो पताल द्वीप में है, तो उसके सहारे कैसे रहा होगा, कैसे गया होगा, कैसे कौवा बना होगा, कैसे केकड़ा मिला होगा, ये मैंने अपने मन से निकाला है उसको कि ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से मैंने पेंटिंग करना शुरू किया।
1: अच्छा, मैं जब आपके चित्रों को देखता हूँ
0: जी,
1: गुण चित्रों की एक श्रृंखला जब हमारे सामने आती है
0: जी,
1: मैं देखता हूँ कि इसमें अनिवार्य रूप से पेड़ होता ही है।
0: हाँ जी,
1: ये पेड़ जो है किस बात का प्रतीक है?
0: देखिए, पेड़ जो है ना, आप भी मानेंगे उसको, पेड़ बनाने का मतलब ये है कि आप पेड़ों से, बहुत सारे हमारे घर जो है ना पेड़ों से बनते हैं, रस्सी की जरूरत होगी, हल की जरूरत होगी, हमारे दवाओं की जरूरत होगी, बहुत सारे चीज हैं जो हम पेड़ों के ही आश्रित में हैं, और पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पेड़ से हमारे दवाई, हमारे घरों का, जरूरतों का पूरा जो है ना,
1: मतलब आपके जीवन यापन का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया जो है वृक्ष है, इसलिए आप बनाते हैं
0: जी।
1: भज्जू जी, मैंने कहीं ये पढ़ा था, आप थोड़ा सा ठीक करिए मेरी इस धारणा को, कि साजा नाम का एक वृक्ष
0: जी मैंने बताया,
1: जिसके नीचे बैठकर ही दरअसल जब इस तरह से बड़ा देव की प्रार्थना बाना लेकर की जाती है, तो बड़ा देव प्रसन्न सिर्फ उस पेड़ के नीचे ही होता है, क्या ये सच है?
0: ये सच है, ये हमने सुना है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया है कि बड़ा देव के साजा पेड़ के जो पेड़ है उसके नीचे गा के गाते थे, और वो बहुत रातों तक, कई रातों तक गाते थे, और उसमें प्रकट होके बड़ा देव ने बताया कि इसके आप जो है ना पूजा करिए, और पूजा करने से और आप गाते रहेंगे, और इसका जो बड़ा देव का आप पाठ पढ़ते रहेंगे और गोंड की जो उत्पत्ति है वो बोलेंगे, तो वो आपका मनोकामना और आपके सारे जितने भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होंगे, ऐसा हमने सुना है। तो मैं पेंटिंग में अगर कहूँ तो पेंटिंग में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ऐसा रहा होगा, कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बनाने की,
1: मतलब एक प्रतीक जो है वो कई अर्थों में हमारे साथ खुलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि साजा वृक्ष जो है जिसके नीचे बड़ा देव की प्रार्थना की जाती है तभी बड़ा देव प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपने भी जो उसका जो दूसरा अर्थ खोला और वो आपने कहा कि एक वृक्ष जो है भरा पूरा जीवन होता है, और उसके साथ हमारे पूरे के पूरे ऐसे सरोकार जुड़े होते हैं, उसके साथ एक विश्वास, परंपराएं, जीवन यापन की आश्वस्ति, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। मुझे थोड़ा ये बताइए कि कब ये लोक आख्यान जो केवल केवल आपके कथा गायन और संगीत तक सीमित था और उस माध्यम से ही पहुँचा करता था, वो कौन सा क्षण है जब वो चित्रों में आ गया?
0: मुझे चित्रों में ये ज़्यादातर जो है ना हम लोग दरवाजों में और खिड़कियों में देखते थे, हम जब गांव में रहते थे। चित्रों की अगर बात करें तो ये चित्रों में जो आया ये हमारे चाचा जी ही लाए हैं, जनगढ़ सिंह श्याम। ये ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता, ये 45 और 50 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों में आना। लेकिन इसके पहले वो लकड़ियों में, लोहों में और घरों में बनते थे, मिट्टियों के दीवालों में। ये चित्रों में आया हुआ करीबन 45 साल हुआ है। धीरे धीरे ये एक आर्ट बन गया और पेपर और कैनवास में आ गया। जैसे मैं राम सिंह उर्वेती का नाम लूँ, राम सिंह उर्वेती के पास बहुत सारे कहानियां हैं जो वो कहानियों में ही काम करते हैं। हमारी पेंटिंग में ज़्यादातर कहानियां हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। हम लोग जो देखते हैं या कुछ उसको अंदर से गहराई की ऐसा होना चाहिए इस टाइप के करते हैं, लेकिन राम सिंह और हमारे चाचा जी जनगढ़ सिंह श्याम जो है वो पूरे के पूरे स्टोरी को बनाते थे, पूरे एक कैनवास को पूरा एक सीरीज में बनाया करते थे।
1: मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि एक आख्यान की परंपरा जो संगीत के जरिए महफूज थी
0: जी,
1: वो जब विश्राम लेती है तो नया रूप धारण

0: करती है और वो चित्र परंपरा में इस तरह से आ जाती है। और चित्र परंपरा में भी वो तमाम कथाएं मिथक जो हैं वो सारे के सारे जज्ब होते हैं
1: जी।
0: और इस तरह से एक पूरी की पूरी गोंड संस्कृति जो अपने जीवन और संस्कृति में बहुत गहरे तक रच बस कर अपने परिवेश अपने विश्वास अपनी स्मृतियां अपने मूल्यों को थामती हुई वो यहाँ तक आती है। अब हम चित्रों पर थोड़ा सा बात करते हैं
1: जी।
0: चित्रों के सौंदर्य बोध पर उसके शिल्प बात करते हैं। देखिए ये जो रंग हैं
1: जी
0: ये तमाम चटक रंग हैं आपके और जाहिर है कि ये आप अपने उस पाटनगर उस वनवासी संसार से लेकर आए हैं। ये बताइए कि जब ये आपके उस पूरे के पूरे आंचलिक सरहद से बाहर आकर जब शहर में आया और शहर से भी जब पूरे के पूरे पूरी दुनिया में फैल गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि कथाओं के विषयों को लेकर मिथकों को लेकर और अपनी परंपरा को लेकर जो रंगों और रेखाओं से लेकर आपकी पूरी की पूरी एक सज्जन संसार से जुड़ी थी, इसमें कहीं कुछ समझौता किया क्या आप लोगों ने? क्योंकि मांग पर जब चित्र बनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा पर खरोंच भी आती है।
1: रंगों की बात है तो रंग जो है ना शहर में ही मिले हैं। गांव में तो जो कलर था वो 7 कलर थे, 5 से 6 कलर हुआ करते थे मेरे हिसाब से, जो मिट्टियों के कलर होते थे। तो उन कलरों को अगर हमको बहुत सारे कलर मिले और चाचा जी जो करते थे वही हमने शुरुआत किया, हमने तो शुरुआत में सिर्फ उनके जैसे ही करना शुरू किया था। लेकिन जब हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप करना शुरू किया, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, दूसरे देशों में गए, तो उनके साथ रहने के बाद हमको और सारे काम सीखने के लिए मिला। और जैसे अगर हम रात की बात करें, दिन की बात करें, पानी की बात करें, तो हम कैसे उसको दिखाएंगे और बच्चों को कैसे समझाएंगे या आम लोगों को कैसे समझाएंगे, ऐसे सीखने के लिए मिला। और कुछ जगह आपकी बात मैं मानता हूँ, जो हम लोग सहमत हुए हैं उस काम से कि
0: मतलब समझौता
1: समझौता किए हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हम अपने मन से भी काम किए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: देखिए क्या है कि अब जब गोंड चित्र परंपरा जब पूरी दुनिया में इतनी लोकप्रिय हो गई है, बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं आपके चित्रों से सजती हैं, बहुत सारे लोग अपने ड्राइंग रूम का भी हिस्सा बनाते हैं उसको, तब ऐसे में कहाँ पर आप अपनी परंपरा के साथ थोड़ा समझौता करते हैं, लेकिन कहाँ आप अपनी परंपरा को पूरी शुद्धता के साथ बिल्कुल ठीक संदर्भ के साथ बचाए भी रखते हैं? ये बचाए रखने वाली जब बात होती है तो आप क्या कोशिश करते हैं?
1: देखिए अभी तो जितने भी नए लड़के हैं करीबन 10 साल से इसको एक जीने का सहारा और पेट का जरिया बना लिया है, जो बहुत सारे लोगों ने, और इसमें सभी लोग मतलब ये काम आगे निकल गया। 10 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था, मेरे हिसाब से 12 साल पहले नहीं था। उसके बाद जो है ना अभी ये गोंड आर्ट बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया में फैल गई है। बचाए रखने की बात अलग है, बचाए रखना कैसे बचाना है, जैसे हम मैं अगर कहूँ कि परंपराओं को बचाना, जैसे बाना गीत की बात कर रहा हूँ, बाना बजाने वाले बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम है। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक क्लास खोलूं और मेरी अभी गवर्नमेंट से और कुछ संस्थाओं से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक बाना स्कूल खोलूं जिससे हमारी परंपरा बची रहे, जो हमारी स्टोरी और हमारी गोंड राजाओं की कहानी और हमारी जो परंपरा है, कैसे हम लोग रहते थे, हमारी राजाओं की कहानी, हमारी देवी देवताओं की कहानी, हम लोगों की खेती बाड़ी की कहानी, ये सारी चीज़
0: तो भज्जू जी ये जब कल्पना आप जो कर रहे हैं जिस संस्थागत ढंग से इसको बचाने की आप बात कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ अभी पाटनगढ़ में या आपके उस मंडला डिंडोरी के इलाके में जहाँ आपके पूरी प्रधान जाति के लोग अभी भी रहते हैं, क्या वहाँ बाना गाने वाले ऐसे लोग हैं?
1: बहुत कम है सर, बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि शहर से लेके गांव तक रोड हो गया है और सब आदमी शहर में आ रहे हैं और शहर में जो देख रहे हैं वही चीज कर रहे हैं। आज अगर हम लोग पहले जब शादी करते थे तब घोड़े से बारात जाता था, आज बस में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, घोड़े से कोई नहीं जा रहा है। तो बाना बजाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, कोई बजाना नहीं चाहता, शर्म आ रहा है लोगों को। मैंने तो इसी को मैं एक स्कूल टाइप का खोलना चाहता हूँ, जो वो बजा रहे हैं वही एक टीचर होंगे जो अपने पसंद करें।
0: और बच्चू जी बहुत बढ़िया बात है। मुझे देखिए मुझे याद आया अचानक एक शेर के, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। तो ये जो तिल तिल तर दम तोड़ती हमारी जो परंपराएं हैं उसका हम बहुत शोक मनाते हैं, बहुत दुख मनाते हैं कि सब कुछ जैसे हमारे हाथ से छूट रहा है, छीना जा रहा है।

लेकिन ऐसे में ही कुछ उम्मीदें भी छलकती हैं। आप से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मुझे बाना को बचाना है, बाना को पुनर्स्थापित करना है। एक सपना आप बुनते हैं कि मैं ऐसा अपनी परंपरा की रक्षा के लिए

0: बारीक काम है, ये बारीक काम तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं आधुनिक चित्रकला की बात करूं तो न जाने कितने गुरुकुलों से होकर, न जाने कितनी कार्यशालाओं से होकर हमारे कलाकार जो है अपने हुनर को तार पर होना शुरू होता है, ये सब क्या है?
1: शुरुआत आपने अगर देखा भी होगा तो जनगण चाचा से ही शुरुआत हुई।
0: हाँ बिल्कुल, वो तो आपके पहले गुरु माने जाते हैं।
1: हाँ, तो वहाँ से उन्होंने पेड़ बना शुरू किया था, और राम सिंह रुवेती है, आनंद श्याम लोग हैं, नर्मदा हैं, ये सब लोग ने पेड़ ही बनाना शुरू किया था। तो जो भी आता है देखता है कि पेड़ बन रहा है, ये पेड़ बन रहा है, तो पेड़ ही बनाते हैं। और वो मैं सच कहूँ तो वो सेल भी हो रहा है, लोगों के लिए वो फायदेमंद है, और आर्थिक स्थिति के लिए भी सही हो रहा है, तो लोग ज़्यादातर पेड़ बनाते हैं। मुझे लगता है कि जो वो कुछ अगर नया करना चाहते हैं शायद उनमें वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और उसमें ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। और इसलिए मुझे, और एक पहचान सी बन गई है पेड़, गोंड पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो गोंड पेंटिंग यानी पेड़ है, पेड़ और एनिमल्स है, कुछ न कुछ जानवर है, चिड़िया है, तो उसके नाम से, और ये उसके पहचान ही बन गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पेड़ ही बना।
0: भज्जू जी, अब थोड़ी सी बात हम वो करते हैं कि हमारा अपना देश तो अपनी कलाओं को बहुत प्यार करता ही है, उसके प्रति उसके मन में बहुत गहरा मान है, लेकिन अब जब आप ब्रिटेन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं, रूस जाते हैं, ऐसे तमाम पश्चिमी देशों की ओर आप जब जाते हैं, और तब आपकी ये गोंड चित्र परंपरा वहाँ की दीवार पर, वहाँ के कैनवास का हिस्सा बनती है, तो उन लोगों को ये चित्र परंपरा किन अर्थों में आकर्षित करती है?
1: बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं मेरे साथ, जो मैं कई बार हम लोग जवाब नहीं दे पाते। जैसे अगर मैं कहूँ कि गाय माता, हम लोग भी गाय को पूछते हैं और गाय को भी हम लोग मानते हैं। तो एक बार एक लॉन इन द फॉरेस्ट है, मेरा बुक का नाम है एक, उसमें एक गांव का आदमी है जो जंगल में जाता है, रोज लकड़ी काटता है और आता है, लेकिन उसको एक दिन रात में उसको एक स्टोरी सुनने को मिलता है कि जंगल में बहुत सारे सुअर हैं जो खतरनाक हैं, जो काट लेते हैं सारा चीज और मार भी देते हैं। तो वहाँ से बच के कैसे निकलता है एक आदिवासी लड़का भय से, तो उसको एक गाय की बात आती है, गाय मिलता है उसको लास्ट में, तो गाय के साथ वो आता है और उसको एक अपनापन लगता है, उसका घर के आदमी है, अपना जानवर है, अपना माता है करके आता है और उसमें उसको पकड़ के निकलता है। तो हम लोग वही स्टोरी में अगर मैं लंदन में या पेरिस में बता रहा हूँ, तो एक आदमी ने मुझे बोला कि आप अगर आपकी गाय माता है तो आप अगर हम लोग रेलवे लाइन में बांध देंगे तो क्या वो बच जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन हमको सुनने को मिलता है। तो कोशिश करता हूँ कि अगर जहाँ श्रद्धा है और जहाँ आत्मा तो निकल जाती है लेकिन शरीर मर जाता है, आत्मा तो वो है लेकिन आप सच्चे दिल से मानोगे तो वैसा है। तो हमें क्वेश्चन आंसर तो देना पड़ता है, बहुत हमारी स्टोरियों को बहुत पसंद किया जाता है, इसीलिए आज इतने सारे बुक और इतने देशों में मुझे बुलाए जाते हैं। तो कई बार ऐसा आता है जो अच्छे भी है बुरे भी आते हैं, लेकिन अच्छा ज्यादातर आया।
0: 2004 में भज्जू जी एक किताब आपकी आई, जो कि आपने पूरी की, आपने लंदन की जो यात्रा की थी आपने उसके बाद आया था, उसमें यात्रा वृतांत पूरा का पूरा आपका आया।
1: एक आदमी गांव से शहर जाता है और शहर से वो फिर जाता है दूसरे शहर में। अगर मैं कहूँ भोपाल से दिल्ली जा रहा है, तो वो पहली बार ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में बैठता है और उसके बाद फिर ट्रेन में बैठने के बाद उसको लगता है कि वो विदेश जा रहा है, तो वो जो सोच रहा है ट्रेन में बैठ के और सोच रहा है, उसके बाद अचानक उसको एयरपोर्ट में घुसने को मिलता है। एयरपोर्ट में जाता है, एयरपोर्ट में इतनी सारी भीड़ देखता है, और कैसे वो हवाई जहाज में, जो हवाई जहाज ऊपर देखता था उसमें बैठता है, और जो बद्दल ऊपर देखता था वो नीचे देखता है। उन चीज़ों को मैंने, और लंदन के जो समय हैं, लंदन में जब पहली बार गया था तो लंदन में जब मैं शाम को घर में आता था अपने होटल में, तो यहाँ जब फ़ोन करता था अपनी पत्नी से तो ढाई या तीन ऐसे बजते थे, तो उन समय को कैसे, वहाँ के लोग कैसे, कई बार ऐसा होता था सुबह हम लोग दोपहर में जा रहे हैं, मतलब खुले दिन में जा रहे हैं, शाम को आते तक बारिश हो रहा है, दिन में भी बारिश हो गया या बर्फ गिर रहा है, उन चीज़ों को बनाया। और वहाँ के लोग कैसे थे,
0: ये अंग्रेजी में ही आपकी किताब
1: जी,
0: किसने लिखा इसको, आपके साथ किसने शेयर किया इसको?
1: दो महीना

0: हम लोग वहाँ पहले, उसके पहले हम लोग काम कर रहे थे राम सिंह रुवेती के साथ, मसाला जोन एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से वापस आया तो हमें तारा बुक्स के एक मैडम मिली, गीता, गीता उल, और उन्होंने बोला कि आप जो है ना, आप लंदन गए थे तो लंदन में कैसे लगा, क्या लगा, तो आप क्या स्केच करके या पेंटिंग करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश किया और 3 महीने लग गए मुझे बनाने के लिए। तो जो वो लंदन और हमारी गांव की बात थी ना, जो एक फॉरेनर हमारे यहाँ भी, जैसे वेरियर एल्विन, हमारे गांव में ही, हाँ जी, हमारी परंपरा में काम किया और वो रहे, बल्कि मेरे ही गांव में रहे, हमारी परम, हमारी फैमिली से ही शादी किया उन्होंने। तो लोगों ने भी कहा कि आप, वो उन्होंने आया और वो हमारी परंपरा के बारे में बुक बनाया, और मैं वहाँ गया तो कोशिश किया कि वहाँ के लोग कैसे रहे और कैसे हमारी परंपरा और उनकी परंपरा कैसे थी, इनको बनाने की कोशिश किया था मैंने, और वही बताया।
1: भज्जू जी, जो विरासत होती है वो अपने भविष्य पे ऐसे मुस्कुराती है कि जैसे उसका सौभाग्य जो बड़ा बोलने लगता है। आपके काम में भी विरासत आई, उसने विरासत ने भविष्य देखा आप में, और फिर आप ऐसे सौभाग्य से भर गए हैं कि जब आपको अंतिम सिरे पर जीने वाले एक ऐसे व्यक्ति को, देश के प्रथम नागरिक के हाथों जब सम्मानित किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये उसके लिए बिल्कुल हम कह सकते हैं शून्य से लेकर आसमान तक उड़ान भरने वाली एक जिजीवशा जो है वो उसका सम्मान होना है, ऐसा हम मानते हैं। आपको पद्मश्री मिला, लेकिन आपके बाद क्या आपके परिवार में आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके कुल के और कोई लोग इस तरह से सक्रिय नज़र आते हैं?
0: बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे वो अवार्ड मिला और लोगों ने मेरे काम को पसंद किया, और अभी मैं कर रहा हूँ और मुझे एक एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है अभी ये मिलने के बाद। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे से सीनियर हैं और वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्टिस्टों को ऐसे मिल सकता है।
1: भज्जू जी, जिक्र तो पद्मश्री का मैंने शुरू में आपके परिचय के साथ कर दिया था, लेकिन पद्मश्री से जोड़कर एक सवाल है
0: जी।
1: जब काम करते करते करते अचानक आपकी शख्सियत ऐसे सम्मानित होती है, तो उस सम्मान को प्राप्त करने के बाद ऐसी कौन सी चुनौतियां जो अपने भीतर आप महसूस करते हैं कि अब ये तो मिल गया लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है?
0: आपको पहले बताया था कि मेरी जो कहानियां हैं या परंपरा की जो स्टोरियां हैं, जो वो गाने बजाने वाले जो बाना, जो बड़ा देव हम मानते हैं, वो मेरा पहला लक्ष्य है कि उसको, जिसके थ्रू, जिसके कहानियों को सुन के, जिसके शब्दों को सुन के, कि मैंने इतने सारे काम किए हैं, पेंटिंग बनाया, बुक बनाया, और इतनी बड़ी नाम मिली है मुझे जिस परंपरा से, उस परंपरा को बचाए रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास खोलूँ, स्कूल खोलूँ, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है वो परंपरा को जाने। लेकिन मेरे बच्चे और अभी के बच्चे भी नहीं जान पा रहे हैं, तो उसको जाने और पढ़े, नहीं तो ये किताब में ही रह जाएगा। यही चैलेंज लग रहा है, अब पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन एक है मन में कि, क्योंकि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि इसके बाद और क्या अच्छा करेंगे आप, तो देखता हूँ। अभी तो अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन कोशिश करूँगा कि।
1: देखिए भज्जू जी, ऐसा है कि सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारना बहुत आसान होता नहीं है।
0: जी जी।
1: लेकिन इसके लिए एक इच्छा शक्ति होती है ना,
0: जी,
1: एक लगन होती
0: जी,
1: है
0: जी,
1: और मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते दरिया सागर में मिल जाती है। देखिए एक बात और आती है कि हम जैसे कहते ना, खुशबुओं को फैलने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये जो आपकी खुशबू भी जो है यहाँ से वहां तक फैली, जाने की जमीन आसमान तय करते हुए कहां से कहां पहुंच गई है, तो इसमें कहीं कुछ न कुछ सहयोग तो दूसरों का भी रहा ही है। क्या हमारी सरकारी संस्थाओं का, सरकार का सहयोग रहा है? क्या आपकी परंपरा को चाहने वाले लोगों का सहयोग रहा है? क्या ऐसे कला प्रेमियों का सहयोग रहा है जिन्होंने कि आपकी परंपरा को ठीक से देखा और उसको परवान चढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए मदद का हाथ फैलाया?
0: देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और गैर सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं हैं जो उन्होंने मदद किया है। मैं सच कहूँ तो मुझे जो लोगों ने पहचानना शुरू किया वो द लंदन जंगल बुक से ही पहचानना शुरू किया है। पेंटिंग तो मेरे चाचा जी और बहुत सारे लोग करते थे, यहाँ आप भी जानते हैं, बहुत 15-16 आर्टिस्ट हैं जो सीनियर हैं, अभी तो करीबन 50 आर्टिस्ट हो गए हैं। जब से लंदन जंगल बुक आया था तो उसमें लोगों ने पढ़ा और देश में ही नहीं पूरे देश में उनको पढ़ा गया और 5 भाषाओं में रिलीज हुई वो बुक। उसके बाद फिर वो मुझे लोगों ने जानना शुरू किया और मैंने उसके बाद एक WPP एक संस्था है जो लंदन में, उन्होंने मुझे एक बड़ा सा काम दिया था जिससे मैंने अपना घर बनाया। और उसके बाद और सारे नाइट लाइफ ट्री एक बुक है वो भी बनाया, अलोन इन द फॉरेस्ट बनाया, क्रिएशन बुक अभी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है जो 5 भाषाओं में हो गया है। अच्छा। क्रिएशन बुक है जो सृष्टि उत्पत्ति की बात है। रही बात सरकारी, तो सरकार ने जो भी मदद किया है अपने तरीके से जो उनको करना चाहिए किया।
1: चलिए भज्जू जी, बहुत सारी जानकारी हमें आपके माध्यम से मिली इस परंपरा को समझने की आपके बारे में, और बहुत अच्छी बात इस बातचीत से निकल कर ये आई है कि आप अपनी परंपरा को सच्चे अर्थों में बचाने के लिए अपनी कोशिशें लगातार बनाए हुए हैं। बाना का एक प्रशिक्षण संस्थान ऐसा राजधानी में खुले, किसी शहर में खुले, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी परंपरा को लेकर। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में बातचीत के लिए हमारे बीच पधारे, आपके यहाँ पधारने का, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।

इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध गोंड चित्रकार भज्जू श्याम से विनय उपाध्याय की गई बातचीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक जमुनिया की चौथी कड़ी।

0: पिछले अंकों में आपने सुना कि चौनिया अपने पति रतन और देवर करण के साथ रहती है। पति को जमीन का पट्टा मिलता है जिसे मेहनत करके वो खेती लायक बनाते हैं। करण को इस बात से जलन है कि खेती वाली जमीन में उसका नाम नहीं है। उधर गांव का जमींदार दीवान गांव वालों को कर्जा देकर मुट्ठी में करना चाहता है। ऐसे में रतन को भी कर्ज लेना पड़ता है जिसमें करण और दीवान हेरा फेरी करके 10,000 रुपए के कर्ज को 25,000 बना देते हैं। इन सबसे अनजान है रतन। वो खेती में लगा रहता है। अचानक आई बारिश से खेत में पानी हो जाता है और रतन और जमुनिया अपने मित्रों को साथ लेकर धान रोप देते हैं। अब आगे
1: अरे बेटा गोलू, अरे इधर तो आ।
2: आया बापू।
1: बेटा तुम्हारी माई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही?
2: बापू वो पानी लेने गई है।
1: अच्छा अच्छा, तूने कुछ खाया बेटा?
2: हाँ बापू, मैंने खा लिया है।
1: क्या खाया?
2: रोटी खाई है। माई बोल के गई थी कि बापू जाग जाएं तो जंगल चले जाना लकड़ियां बीनने।
1: अच्छा तो फिर ठीक है, जा, पर जरा संभल के लकड़ी उठाना।
2: जी बापू।
1: कल ही बारिश हुई है ना, जमीन के कीड़े मकोड़े सांप वगैरह निकलते हैं, संभाल के बेटा। हाँ
2: अच्छा बापू, जाता हूँ।
3: अरे धीरे धीरे दौड़, कहाँ को जा रहा है, तेरे बापू जाग गए का?
2: हाँ माई, जाग गए हैं, अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे।
3: अच्छा ठीक है, जा।
4: ये पानी लाना भी मुई एक कसरत है। गांव में एक आध पाइप लग जाता तो कितना सुख होता। हे राम।
1: हाँ आ गई जमुनिया।
4: हाँ जी आ गई। क्यों, आज क्या करने वाले हो? हाँ ना हो तो आराम कर लो, इतने दिनों से रात दिन काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। हाँ
1: अरे भाई, कैसे आराम करें जमुनिया, कल हड़बड़ी में पानी गिरा तो लालच में आके धान तो रोप दिए, पर इतने से धान तो पैदा होने से रहा।
4: तो फिर क्या करोगे?
1: सोचता हूँ शहर चला जाऊं, अरे एक आध बोरी खाद ले आऊं, छिड़काव भी तो करना पड़ेगा।
4: ठीक ही सोच रहे हो, चलो जल्दी से रोटी सेक देती हूँ, खा कर जाना।
1: ठीक है, तू रोटी सेक, मैं मुंह धोकर आता हूँ।
4: हाँ
1: हाँ भाई, गमछा दे।
3: वही है चारपाई पर, ले लो।
1: अच्छा हाँ हाँ, ये मिल गया। ये क्या हो गया तुम्हें, रो रही हो जमुनिया?
4: रोए मेरे दुश्मन, अरे ये मुई लकड़ियां कल की बारिश में सिम हो गई हैं, मार धुआं फेंक रही हैं, ठीक से जल नहीं रही हैं।
1: तो फिर तुम रहने दो, एक आध टुकड़ा गुड़ हो तो दे दो, पानी पीकर चला जाऊंगा। अरे उधर शहर में ही कुछ खा पी लूंगा।
4: अरे कैसी बातें करते हो, रोटी तो बन गई है, कटोरी में चटनी है, खा लो, मैं थोड़ा गुड़ का शरबत बना देती हूँ। हाँ
1: चल तो फिर ला, खा लेता हूँ। अरे ये तो बता जमुनिया, ये करण को क्या हो गया था? बंटवारे की बातें कर रहा था, कुछ अनाप शनाप भी बक रहा था, पता नहीं क्या बोले चला जा रहा था।
4: कोई अनाप शनाप नहीं बोल रहा था, सोच समझ कर बोल रहा था, उसकी नियत में ही खोट है।
1: अरे ऐसा क्यों सोच रही हो, दारू के नशे में था, उसी से कुछ बोल गया होगा।
4: मैं तो ये समझती हूँ कि नशे में आदमी अपने दिल की बात बोलता है, सच बोलता है। अभी उसकी छोड़ो, आप तो खाद का देखो, जाओ।
1: अच्छा ठीक है। अरे जमुनिया ला कुछ पैसे तो दे दे, चलूं।
4: हाँ अभी लाई। हाँ
5: करके मनिया देव का।

0: तुम लोग सुनो जी भर के आला
1: जी वाले,
0: हम थोड़ी देर आराम करके आते हैं।
2: अरे तू कब आया करण? अरे तुझे मालिक याद कर रहे थे।
3: अच्छा
2: हाँ, मालिक अभी बैठक में गए हैं। तू चाहे तो वहीं चला जा, जा जा।
3: चला जाऊं?
2: हाँ बिल्कुल,
3: बुरा तो नहीं मानेंगे?
2: अरे भैया चला जा, अरे कुछ डांटे तो माफी मांग लेना, मैं हूँ ना।
3: ठीक है
2: हाँ, जा जा जा, डर मत।
3: जी जी। मालिक।
0: कौन है?
3: मैं हूँ करण, अंदर आ जाऊं क्या?
0: आ जा करण, आ जा। हाँ? बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अरे तुझे याद कर रहे थे हम। कैसा है तू, क्या हाल है तेरा?
3: ठीक ही हूँ मालिक, बस थोड़े पैसे की तंगी है। आप किस लिए याद कर रहे थे मालिक?
0: इसी के लिए याद कर रहा था तुझे। कई दिन हो गए तू इधर आया ही नहीं, सोचा तुझे पैसों की तंगी होगी तो कुछ ले जा भाई।
3: आपकी बड़ी दया है हम पर मालिक।
0: अच्छा भैया, हमने सुना है तू अपने भाई से कल रात झगड़ा कर रहा था और अलग होने की बात भी कर रहा था, ठीक सुना ना हमने?
3: हाँ मालिक, आप ठीक सुने हैं।
0: निरे गधे हो तुम। अरे माना कि रतन चतुर है, तुम्हारा नाम नहीं होने देता, तुम्हारी कोई कदर है नहीं, तू निकम्मा अलग होकर कमाएगा खाएगा क्या है? अरे हर चीज का सही टाइम होता है, अभी जाकर करण से माफी मांग लेना, कह देना कि नशे में गलती हो गई है। और जब मैं तुझे बताऊंगा तब अलग होना। और हाँ, अभी खाद वाद नहीं चाहिए क्या है? वो तो मुफ्त आएगी नहीं पानी की तरह।
3: हाँ आज शहर गए हैं, शायद खाद ही लेने गए हूँ।
0: अच्छा है, सिर्फ फोल लेने दो से। अरे शहर में तो खाद मिलने से रही, लौट के खाली हाथ आएगा, तब उसे समझा बुझा के मेरे पास लेकर आना, मैं खाद का इंतजाम कर दूंगा।
3: अच्छा मालिक।
0: हाँ अच्छा, ये ले 500 रुपया।
3: जी,
0: पर हिसाब रखते जाना।
3: जी मालिक।
0: हाँ अभी जा बैठक में बैठ कर आला का मजा ले।
3: जी
0: बहुत ही अच्छा गवैया आया है भैया, सुनते जाना।

0: अरे जमुनिया, ला भाई थोड़ा पानी ले आ।
1: लाई जी। अरे ये का खाली हाथ आ गए, खाद कहाँ है?
0: बड़ा कठिन है जमुनिया, खेती करना भी बहुत कठिन है। पूरे शहर में खाद नहीं है, कहते हैं सप्लाई नहीं है। कब आएगी खाद, कुछ कह नहीं सकते।
2: क्या भैया, आप तो करण को कुछ समझते ही नहीं। अरे मैं भी इसी घर में रहता हूं, निकम्मा हुआ तो क्या, अरे कुछ तो काम आ ही सकता हूं।
0: अरे ये कल रात क्या अटवारे बंटवारे की बात कर रहा था रे तू?
2: अरे माफ कर दो भैया, थोड़े नशे में अनशन बोल गया। अब भला मैं आपसे अलग होकर जी सकता हूं क्या? हैं जमुनिया भौजी, तुम भी माफ कर दो ना।
1: ठीक है अब ज्यादा बात को खींचो मत। खादवाद के बारे में पता तो लगाओ।
2: अरे इसमें सोचने पता लगाने वाली क्या बात है, आप उठो चलो अभी ले आते हैं।
1: हाँ कहाँ से ले आओगे भैया? क्या
2: अरे अपने दीवान जी से ले आएंगे।
0: दीवान जी से खाद लाएंगे?
2: और नहीं तो, अरे पिछले साल उन्होंने काफी खाद लेकर जमा कर लिया है, क्या करेंगे, 10-5 रुपए ज्यादा ही लेंगे ना, और क्या, हमें टाइम पर चीज मिल जाएगी, शहर से लाने का खर्चा बचेगा सो अलग।
0: तू कहता है तो ले लेते हैं, पर मुझे इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब क्या कर दे। हाँ, पर और कोई उपाय भी तो नहीं है।
2: तो फिर अभी चलते हैं, बात का क्या भरोसा।
0: अच्छा भाई चल।
3: आओ रतन आओ, सुना शहर गए थे खाद लेने?
0: जी मालिक।
3: तुमने समझाया नहीं करण, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे शहर में अभी सप्लाई नहीं है भैया, वो तो मैंने पिछले साल खाद लेकर रख लिया था तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के लिए। अच्छा तुम्हारे खेत के लिए तो 2 बोरी ठीक रहेगी ना? वैसे करण ने तुम्हें बताया नहीं खाद के बारे में, या तुमने पूछा ही नहीं होगा शायद।
2: जी मालिक, किसी काम में मेरी राय नहीं लेते भैया।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिक।
3: कैसी बात नहीं है? अरे भैया अपने इस भाई को भी कुछ काम धाम सिखाओ, जिससे ये जिम्मेदारी समझे अपनी, कुछ करे खुद होकर।
0: ठीक है मालिक, ये कुछ करे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मालिक।
3: बिल्कुल ठीक कही। अच्छा करण, अंदर गोदाम में चला जा और 2 बोरियां खाद की उठवा ला। और हाँ रतन,
0: जी मालिक।
3: नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बोरिया उठा ला तब बात करते हैं।
0: जी मालिक ठीक है।
3: कावा तैला हो कम न ठैमा जैबा बबुआ बोल तो ना। अच्छा ले आए खाद। बड़ा अच्छा किया, चलो सीधे घर लेकर जाओ इस खाद को। किसी ने बोल दो पहुंचवा देगा।
2: जी
3: और रतन तुम रुको जरा।
0: जी मालिक।
2: अरे चलो चलो
4: चलो
2: भैया,
4: चलो भैया, चलो चलो
5: चलो भैया, चलो उठा लो,
2: उठा
5: चलो।
3: देखो रतन, तुम सीधे सच्चे ईमानदार आदमी हो, पर भैया साफ बात, तुम्हें छल कपट आता नहीं, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं।
0: जी मालिक।
3: पर भैया ये खाद का पैसा तुम्हें नकद देना होगा। हाँ कहा है कि हमारे घर में तुझे बनती नहीं है ना। भैया हम भी खरीद कर ही लाए हैं। हाँ इतना जरूर करेंगे कि दाम का दाम लेंगे। हाँ
0: ठीक है।
3: तुमसे मुनाफा नहीं लेंगे, ठीक है ना?
0: जी ठीक है मालिक।
3: और बुरा मत मानना अपने इस छोटे भाई से, अरे उस करण से संभल कर रहना। हाँ उसका कोई भरोसा नहीं, जाने कब क्या कर दे।
0: हाँ ठीक है मालिक।
3: ठीक ना? बिल्कुल ठीक। खेती करो, अच्छे से खेती करो, भगवान करे खूब अच्छी फसल आए तुम्हारी, तुम्हारी मेहनत कामयाब हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
0: जी मालिक जी।
3: जाओ सुखी रहो।
0: जी मालिक।
4: इधर आओ।
6: जी मैं?
4: हाँ तू ही, क्या नाम है तेरा?
6: जी गोलू।
4: सर ये गोलू है।
7: इससे पूछो दीवान जी का घर कौन सा है।
4: ए लड़के, दीवान जी का घर कौन सा है?
6: वो सामने बड़ी सी हवेली है ना, दीवान जी का घर वही है।
7: अच्छा वो, ठीक है चलो ड्राइवर।
4: जी सर।
8: अरे आइए आइए सर। ओ भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। पर सर ऐसा क्या काम आ गया, आप मुझे बुलवा लेते तो मैं खुद हाजिर हो जाता आपकी सेवा में।
7: ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे भाई पट्टे बटे महीने भर से ज्यादा हो गया।
8: जी जी जी जी।
7: तो मुझे देखने आना पड़ा कि लोगों को कब्जा मिला है कि नहीं, और देखा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर पैर फैलाकर सो रहे हैं।
8: आकर बहुत अच्छा किया सर आपने, बिल्कुल सही किया सर आपने। देखिए ना पहले के अफसर तो काम आते ही नहीं थे।
7: वो तो आप ठीक कह रहे हैं। अरे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ तक, अब सड़क है नहीं, पगडंडी में कीचड़ भरा है बारिश से। आप हमारे साथ थोड़ा चलिए, खेत आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कीजिए।
8: जी। अरे सर अभी तो आप आए हैं, जरा चाय पानी हो जाए फिर चलते हैं।
7: नहीं भाई चाय पानी फिर सही, अरे अभी शाम हो रही है, ये काम अंधेरा ढलने से पहले हो जाना चाहिए। उठिए उठिए भाई चलिए।
8: ठीक है ठीक है, जैसा आपका हुक्म सर। चलिए सर चलिए चलिए।

0: ये खाली जमीन कैसी है?
1: जी ये तो अलॉट हो गई है सर। वो क्या है, मिट्टी बड़ी सख्त है तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वैसे बारिश तो हो गई है, पर देखिए ना, लोग खेतों में काम करते नजर नहीं आ रहे।
0: यही तो दीवान जी, अरे आप गांव के सरपंच हैं, ध्यान रखिए जमीन का दुरुपयोग ना हो। और मुझे बताइएगा कितने पट्टे बटे और कितनों में खेती हो रही है।
1: ठीक है सर। सर मैं ऑफिस में आकर सब बता दूंगा।
0: और ये किसका खेत है?
1: ये, अरे सर ये रतन का है। सर बहुत मेहनती है सर वो।
0: अच्छा, पट्टे का है?
1: जी जी जी हाँ, पट्टे का है।
0: अरे वाकई, इसने खेत तैयार भी कर लिया और धान भी रोप दिए, वाह कमाल। ए सुनो भाई, सुनो भाई, इधर आओ। हाँ हाँ, तुम आओ। शाबाश, इसी तरह मेहनत करो, जरूर कामयाब होगे। खेती के पैसे वैसे चाहिए हो तो बता देना। हाँ
2: जी मालिक, अभी तो दीवान जी से कर्ज ले लिया है, ये बड़े मददगार हैं, हम लोगों की भलाई की सोचते हैं।
0: वो सब ठीक है, मैं तो ये बताने आया था कि सरकार ने कुछ बैंकों को कहा है कि वे गांव में जाएं और जरूरत के हिसाब से कर्ज दें। दीवान जी, हमने तो आपको बता दिया था, भैया आपने इन लोगों को बताया नहीं?
1: जी सॉरी सर, बताने ही वाला था।
0: कब?
1: सर एक काम करता हूँ सर, सभी गांव वालों को बुलवा लेता हूँ, आप खुद ही अनाउंस करते हैं सर उनके सामने।
0: बिल्कुल, अब यही करना पड़ेगा। और देखिए, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी योजना किसानों के लिए बनती है उसे इन्हें बताइए। और वो हैंडपंप के लिए जो ग्रांट आई थी उसका क्या हुआ?
1: पैसे रखे हैं सर। वैसे अब तो बारिश आ गई है, पानी की सतह ऊपर आ जाती है ना, सोचे गर्मी में लगवाएंगे ताकि साल भर पानी मिले, नहीं तो नल सूख जाते हैं ना सर।
0: अरे भाई, बारिश तो कल हुई है, इसके पहले तो गर्मी थी ना दीवान जी, बात मत बनाइए। देखिए जल्द से जल्द हैंडपंप लगवाइए, अभी इतना पानी नहीं बरस रहा है कि जमीन का लेवल ऊपर आ जाए, समझे आप?
1: जी जी, अच्छा तुरंत काम शुरू करवाता हूँ। सर अब चाय, कुछ चाय वाय हो जाए सर, थक गए होंगे सर आप।
0: अरे अब चाय छोड़िए, देखिए अंधेरा हो रहा है, रास्ता भी खराब है, देखिए चाय फिर कभी सही।
1: अरे सर चाय में कितना टाइम लगता है सर, मेरे सत्कार का मान रख लीजिए सर।
0: चलिए अच्छा, लेकिन फटाफट चाय पिलाइए।
1: अरे बिल्कुल सर, अभी लीजिए। ए खड़ा खड़ा मुख क्या देख रहा है
3: जी मालिक?
1: अरे जल्दी से चाय नाश्ते करते आप करो।
3: अभी अभी लाए मालिक, अभी लाए।
1: आइए सर, आइए।

0: अच्छा दीवान जी, चलते हैं। अरे आपने तो चाय के नाम पर अच्छा खासा डिनर करा दिया।
1: सर बात तो ये है कि आप जैसे अफसर इस गांव में आते ही कहां है सर।
0: आना पड़ेगा, सरकार बहुत बारीकी से सब पर नजर रखे हुए है।
1: जी जी जी
0: हाँ। और हाँ, जो योजनाएं हम आपको लागू करने के लिए देते हैं उन पर जल्द से जल्द अमल करना होगा दीवान जी।
1: जी सर, जी सर।
0: हाँ, ये आपके भी हित में है, समझ तो गए ना आप।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तुरंत अमल करेंगे। हाँ थोड़ा आलस वालस में विलंब हो गया सर, माफी चाहते हैं सर।
0: नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और हाँ दीवान जी, गांव वालों को ठीक से समझा देना कि अगले संडे को बैंक वाले आएंगे।
1: जी सर, जी हाँ, सर।
0: अपने हिसाब से लोग ऋण ले सकते हैं भाई, ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक वालों पर भी आप नजर रखिएगा, अरे मतलब लोगों को तंग वगैरह ना करें, ठीक है।
1: ओके सर, ओके सर।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की चौथी कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन 24 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया जाएगा। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कृषि के मामले में तो हम पहले से आगे थे ही, अब औद्योगिक प्रगति में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के उज्जैन में शिवोत्सव श्रावण कलोत्सव के अंतर्गत कल 23 अगस्त को शाम 7 बजे से शक्तिपथ त्रिवेणी संग्रहालय के सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के युवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम रात में चमकते हुए चांद और तारों को देखते हैं तो मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि इनके पीछे क्या रहस्य छिपे हैं। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए कदम बढ़ा रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के माध्यम से संचालित होता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में आर्यभट्ट नामक पहले भारतीय उपग्रह के प्रक्षेपण से हुई। छोटे छोटे कदमों से शुरू हुई ये यात्रा आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आज भारत संचार, मौसम, खेती, शिक्षा और आपदा प्रबंधन और देश की सुरक्षा के लिए अनेक उपग्रहों का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इन उपग्रहों की मदद से मौसम का पूर्वानुमान, किसानों फसल की जानकारी, दूर दराज के क्षेत्रों तक संचार सेवाएं और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं। भारत का चंद्रयान 1 मिशन चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद चंद्रयान 3 ने वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये उपलब्धि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता थी। मंगलयान मिशन भी भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना। सबसे खास बात ये रही कि यह दुनिया का सबसे कम लागत वाला मंगल मिशन था जिसकी पूरे विश्व ने सराहना की। इसके बाद आदित्य L1 मिशन के माध्यम से भारत ने सूर्य का अध्ययन शुरू किया। हाल के वर्षों में स्पेडेक्स मिशन के जरिए अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया। ये भविष्य में भारत के अपने स्पेस स्टेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के संयुक्त निसार मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी और प्राकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। वर्ष 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचना पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। अब भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है जिसके माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों, आज भारत केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, देश में अनेक निजी स्पेस स्टार्टअप भी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया के कई देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान केवल रॉकेट और उपग्रहों तक सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन को भी आसान बनाता है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, मौसम की जानकारी, GPS और आपदा प्रबंधन जैसी अनेक सुविधाएं अंतरिक्ष तकनीक की ही देन है। भारत अब स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रमा से मिट्टी लाने की दिशा में काम कर रहा है। हमारी प्रगति धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदमों से आगे बढ़ रही है। ये दिखाता है मेहनत, विज्ञान और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास का शानदार उदाहरण है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और हमें भी विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए ताकि हम और हमारा देश हर मैदान को फतेह कर सके। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़ना लिखना केवल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना है जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा सके या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल अक्षर और शब्द पढ़ना लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को गिनती, गणना, बैंकिंग, डिजिटल जानकारी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय जागरूकता और अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर जोर दिया जाता है। जैसे व्यक्ति अपने मोबाइल का सही उपयोग करना, पैसे का हिसाब रखना, बैंक से जुड़े सामान्य काम समझना और जरूरी जानकारी पढ़ना सीख सकता है। इससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने काम स्वयं करने में सक्षम बनता है। और दोस्तों, आपको सुनवाते हैं साक्षरता के विषय में राहुल चतुर्वेदी से हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश।
1: नवभारत साक्षरता कार्यक्रम और मेरा छोटा सा प्रयास। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के विषय में अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जो किसी कारण से पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना और लिखना सीखना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और समझ हासिल करना भी है। इसी सोच से प्रेरित होकर मैं अपने घर के आसपास रहने वाले कुछ ऐसे गरीब बच्चों को प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 घंटे पढ़ाता हूँ, जिनके माता पिता आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेजते और अपने साथ मजदूरी पर ले जाते हैं। मैंने कई बार उनके माता पिता को समझाने और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब मैंने सोचा कि अगर ये बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इन्हें बुनियादी शिक्षा जरूर दी जाए। इसलिए मैं उन्हें पढ़ना, लिखना, गिनती और सामान्य गणना जैसे जरूरी बातें सिखाना शुरू किया। शुरुआत में इन बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, उन्हें किताब खोलकर बैठना भी मुश्किल लगता था। तब मैंने अपना पढ़ाने का तरीका बदला। मैंने पढ़ाई को उनके दैनिक जीवन के उदाहरणों, छोटी छोटी कहानियों से जोड़ना शुरू किया, जैसे बाजार से सामान खरीदते समय पैसे गिनना, घर में चीजों की संख्या बताना और रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़े शब्दों को पढ़ना। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाई समझ में आने लगी और उनकी पढ़ाई में मन लगने लगा। समय के साथ कुछ बच्चों में पढ़ाई के प्रति इतनी लगन दिखाई देने लगी कि उनके माता पिता भी प्रभावित हुए। कुछ माता पिता ने स्वयं आगे बढ़कर अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दिया। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और उपलब्धि की बात कोई और हो ही नहीं सकती। मेरा मानना है कि शिक्षा एक छोटा सा प्रयास भी किसी बच्चे को जीवन की दिशा बदल सकता है। आज अगर ये अपने बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं तो कल वे अपने अधिकारों को समझ सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकेंगे। मेरे लिए नवभारत साक्षरता कार्यक्रम केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो किसी दूसरे व्यक्ति की शिक्षा की रोशनी दे सकता है। मेरी यह छोटी सी कोशिश अगर कुछ बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद कर रही है तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आइए हम सभी मिलकर शिक्षा से वंचित बच्चों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप राहुल चतुर्वेदी को सुन पा रहे थे, जिनके छोटे से प्रयास से कुछ बच्चों का भविष्य अंधकार से रोशनी की ओर आगे बढ़ा। दोस्तों, आप भी इस अभियान को सफल बनाने में शिक्षक, स्वयं सेवक और समाज के अन्य लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम अपने आस पास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानता तो हम उसे सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि साक्षर व्यक्ति केवल अपने जीवन को सफल नहीं बनाता बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी योगदान देता है। एक शिक्षित और जागरूक समाज ही मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, साक्षरता केवल पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए हम सब मिलकर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति पढ़ना, समझना और अपने अधिकारों का सही उपयोग करना जानता हो। नव भारत साक्षरता मिशन को सफल बनाने की आशा लिए आपको सुनवाते हैं केके और सलीम मर्चेंट की आवाज में आशाओं से भरा ये गीत।

दोस्तों, क्या आपने कभी मुरैला चित्रकला का नाम सुना है? मुरैला मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक चित्रकलाओं में से एक है। ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की लोक कला से जुड़ी हुई है। मुरैला चित्रकला की सबसे खास पहचान मोर के चित्र हैं। इसमें घरों की दीवारों पर अलग अलग रंगों से सुंदर मोर और उससे जुड़े सजावटी चित्र बनाए जाते हैं। मोर भारत का सुंदर और आकर्षक पक्षी है, इसलिए लोक जीवन में इसका विशेष महत्व माना जाता है। मोर के सुंदर पंख और उसकी आकृति चित्रों को बहुत मनमोहक बना देते हैं। मुरैला एक भित्ति चित्रकला है और भित्ति चित्र का अर्थ है दीवार पर बनाया गया चित्र। दोस्तों, पुराने समय में गांवों में घरों की दीवारों को सजाने के लिए ऐसी लोक चित्रकलाओं का बहुत उपयोग किया जाता था। त्योहारों और शुभ अवसरों पर घर की सजावट के लिए भी इन चित्रों को बनाया जाता था। कई स्रोतों में मुरैला को विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर दीवारों पर मोर के चित्र बनाने की परंपरा से जोड़ा गया है। इस कला में स्थानीय परंपराओं और लोगों की रचनात्मकता दिखाई देती है। पहले ग्रामीण लोग चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध रंगों और साधारण सामग्री का उपयोग करते थे, लेकिन आज के समय में चित्र बनाने के तरीके और रंग दोनों में ही बदलाव आया है, लेकिन इसकी पारंपरिक पहचान अभी भी बनी हुई है। मुरैला केवल घर को सुंदर बनाने की कला नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसी लोक कलाएं हमें अपने पूर्वजों की जीवन शैली, त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ती हैं। इसलिए हमें मुरैला जैसी पारंपरिक लोक कलाओं को समझना, सम्मान देना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। इन कलाओं को जीवित रखना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। तो हमारी धरोहर में आज इतना ही। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का ये गीत। लता मंगेशकर और ईला अरुण की खूबसूरत आवाज में

दोस्त, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की नई थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार सानू का गाया, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर ने लिखा है।

ए हरिहरन और अनुराधा पौडवाल का गाया फिल्म इतिहास का गीत। समीर ने बोल लिखे हैं और धुन बनाई है दिलीप और समीर सेन ने।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में कतिल शिफाई का लिखा यह गीत है। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने गाया है। फिल्म का नाम सर।

चांदनी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। विनोद राठौड़ और आशा भोसले ने गाया है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा, संगीत शिव हरी का।

शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था। विनोद राठौर और आशा भोसले ने गाया था। फिल्म का नाम था चांदनी। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण के मौलिक परिवर्तन किया है और अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित द इकोनॉमिक टाइटम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में कहा कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि कभी मध्य प्रदेश पर बीमारू प्रदेश होने का टैग लगा दिया गया था, हमने इस टैग को पूरी तरह से हटा दिया है। किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 अगस्त को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम में कहा कि अदालतों में न्याय मिलने की गति और उसकी सच्चाई से वैश्विक स्तर पर देश की छवि बनती है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। तुम बिन फिल्म का ये गीत है, चित्रा ने गाया है, फैज अनवर के बोल, निखिल विनय का संगीत।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। असद भोपाली की कलम से निकला ये गीत है, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इसे गाया है, राम लक्ष्मण ने इसे स्वरबद्ध किया है। फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

सुनिधि चौहान और कुमार सानू का गाया अजनबी फिल्म का ये गीत था। गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक। युवराज फिल्म का ये गीत है। सोनू निगम, अलका याग्निक, नरेश और बेनी दयाल ने गाया है। धुन बनाई है AR रहमान ने और बोल लिखे गुलजार ने।

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: पूर्णिमा और अजय देवगन का गाया फिल्म दिलजले से ये गीत था। जावेद अख्तर ने गीत लिखा था और स्वरबद्ध किया था अनु मलिक ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं हमारा नंबर है
2: 8800088827। जी हाँ 8800088827।

दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का शारीरिक शोषण, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अनुसार 50% बच्चे इस हादसे के शिकार हैं और ये समस्या बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और ज्यादातर इस समस्या को दबाई जाती है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें, और अगर आपके बच्चे इसके शिकार हैं या विक्टिम हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।

तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, शारीरिक शोषण होता क्या है। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सबसे कॉमन वे या सबसे साधारण तरीका ये है कि कोई भी आपके बच्चे को गलत जगह छुए, और ये किसी को भी हक नहीं कोई आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे छुए। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई उनके होंठों पे, उनके छाती पे, टांगों के बीच में या पीछे उनको छुए, तो वो आपको बेझिझक बताए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, वो अलग बात है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही है या उनके कपड़े बदल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग कारण नहीं कि आपके बच्चे को कोई इन जगहों पे छुए। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तब भी हो सकता है अगर कोई आपके बच्चे को कहे कि आपका बच्चा उनके सामने अपने कपड़े उतारे, या वो आपके बच्चों के कपड़े उतारे, या वो खुद अपने कपड़े उतारे और आपके बच्चे को कहे कि देखें, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके बच्चों को दिखाएं, या किसी तरह की पोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें आपके बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, ये सारी बातें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, शारीरिक शोषण में सम्मिलित है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि ये सारी चीजें गलत है, और कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे आपको आकर बताएं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, और हम सबको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि शारीरिक शोषण, चाइल्ड अब्यूज, इसकी शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं, कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई, आपका एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाएं, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके, और सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बच्चे कभी कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जिसपे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है, और वहां से एक घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

तो दोस्तों आगे कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीज़ों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो माता-पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता-पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए।

बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता-पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें, और यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और दोस्तों, बच्चों के सामने समाज के बारे में, भविष्य के बारे में प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है, और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से क्यों मिले? सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है, वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा? जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगी कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

0: तो श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया इस फिल्म का गीत है, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है, कुमार का लिखा गीत है, शारिब तोशी ने संगीतबद्ध किया।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं। विभा शर्मा श्राफ और हर्षदीप कौर ने इसे गाया है। फिल्म का नाम है राजी।

0: शंकर महादेवन, विभा श्राफ, हर्षदीप कौर का गाया फिल्म राजी का यह गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिख कर भेजाता थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में सुनवाऊ थी।
4: हाँ, खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोक गीत है। और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
3: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
4: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
3: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
4: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
3: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
4: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
3: 9425702768।
4: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
3: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।

0: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला

का धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है, इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील POJK में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले इस सभा के शेष प्रसारण की जानकारी आपको दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों, विज्ञान भारती कार्यक्रम रात 9:30 पर आप सुनेंगे। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम किसानवाणी में शाम 7:30 पर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि आजीविका विषय पर अधिकारियों एवं हितग्राहियों से की गई बातचीत प्रसारित करेंगे। ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण की जानकारी। सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण करेंगे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम मध्याह्न 12 बजे और रात्रि 9:30 पर। इस कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल करते हैं। मध्याह्न 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया की 5वीं कड़ी। महिला कार्यक्रम दिन में 1 बजे प्रसारित होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम दिन में 1:30 पर। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। ये चारों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में डगर विकास के कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर प्रसारित करेंगे। विषय होगा सुकन्या समृद्धि योजना। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण रात्रि 10 बजे करेंगे। इसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थी आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण की जानकारी। और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल सुबह 7:20 पर दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे ओम प्रकाश शर्मा के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। सुबह 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहान में आप सुनेंगे डॉक्टर रवि कुमार हिंदुजा से होम्योपैथी से स्वास्थ्य संरक्षण विषय पर की गई भेंटवार्ता। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10 बजे प्रसारित होगी। सुबह 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में होगा हिंदी भाषा का गीत। रचना SC गुप्ता की होगी। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा के अंतर्गत शाम 7:30 से सजीव फोन इन हेलो ग्राम सभा का विषय होगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपको पुनः याद दिला दें सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहान। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में होगा कल हिंदी भाषा का गीत सुबह 10:05 पर। और आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा के अंतर्गत शाम 7:30 से सजीव फोन इन हेलो ग्राम सभा का विषय होगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएलआई योजना के माध्यम से 14 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों को दी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण के मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएलआई योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे 2,50,000 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश हुआ है। वहीं 22 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा मिला है। 15 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है और 14 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला प्रदेश बन गया है। कभी मध्य प्रदेश पर बीमारू प्रदेश होने का टैग लगा दिया गया था, हमने इस टैग को पूरी तरह हटा दिया है। नई दिल्ली में आयोजित द इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में फायरसाइड चैट ऑन एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने चुनौतियों को पहचानकर तरक्की के अवसरों में बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कृषि के मामले में तो हम पहले से आगे ही थे, अब औद्योगिक प्रगति में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है। किसानों को अब ना कहीं भटकना होगा और ना ही लंबी लाइनों में लगना होगा। शासकीय दल खुद किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनवाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाने की अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें विश्व लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। ये कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के जरिए विश्वास, स्थिरता और निश्चिंतता प्रदान करते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याएं सुन रहा है। इसी क्रम में नीमच जिले में अभियान के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर मयूरी जोग ने कल रतनगढ़ नगर परिषद के निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर परिषद द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राजगढ़ में कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग एवं आंगनवाड़ी परसना स्कूल सुठालिया तहसील कार्यालय एवं महाविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी की। जबलपुर जिले में अभियान के तहत सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जन से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 अगस्त को भोपाल में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव की थीम वन इंस्टीट्यूशन वन प्रॉमिस रखी गई है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को प्रदेश के अग्रणी केंद्रीय संस्थानों की शोध एवं नवाचार क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक अधोसंरचना एवं मानव संसाधन से जोड़ते हुए भविष्य के लिए संस्थागत साझेदारी का प्रभावी मंच तैयार करना है। कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कौशल विकास और राज्य के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सागर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश में इस समय 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 24 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकती हैं। उज्जैन में शिवोत्सव श्रावण कला उत्सव के अंतर्गत कल 23 अगस्त को शाम 7 बजे से शक्तिपथ श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संस्कृति विभाग के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी लोकप्रिय शिव भक्ति रचनाओं की प्रस्तुति देंगी। वहीं किशन भगत भी अपनी संगीतमय प्रस्तुति से श्रद्धालुओं एवं दर्शकों को शिव भक्ति से सराबोर करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा देवास में संचालित हॉकी फीड सेंटर में वर्ष 2026-27 के लिए कल बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर द्वारा वर्ष 2026 के लिए 24 अगस्त, 19 अक्टूबर और 11 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। सीहोर जिले में सावन के अंतिम सोमवार और 25 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम तक निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कल सुबह 6 बजे से 25 अगस्त रात 12 बजे तक भोपाल इंदौर हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तित रहेगी। श्रावण माह के अंतिम सोमवार के दौरान श्रद्धालु एवं कांवड़ यात्रियों की संख्या को देखते हुए खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के प्रथम रैंक हासिल की है और विदिशा जिले में गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत सामाजिक समरसता और जन जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमें सभी भैयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच गए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुए। देखो भैया बहना हरो, ऐसे तो हमारे किसान भैया बहन मुख्य फसल के संग अपने खेतन में कछु न कछु उगाते हैं। सुबह बांस की खेती सोई कर सकते हैं। बांस को हरो सोना कही जात है, जो दुनिया को सबसे तेजी से बढ़वे वालों पौधा है, जो एक दिन में 3-3 फुट तक बढ़ सकता है। सबसे बड़ी खासियत जो है कि जो एक प्रकार की घास है, जैसे साल 2017 में केंद्र सरकार ने ईखो वन उपज की सूची से हटा दो होता। अब किसान अपने खेत में लगे बांस खो बिना कोनो परमिट के काट और बेच सकते हैं। एक और काम की बात, हम अपने किसान भैया बहन खो के वो चाहते हैं कि वे सरकारी नर्सरी या राष्ट्रीय बांस मिशन से प्रमाणित पौधा ही ले बें, ताकि नकली धन से बचो जा सके। ऐसे तो बांस की खेती बहुत ही सरल है, गोबर की खाद और सुपर फास्फेट डाल के पौधा लगाए जा सकते हैं। खेत में 4 से 5 मीटर की दूरी रखें, एक एकड़ में लगभग 200 पौधा लगाए जाते हैं। बस किसानन को अपने जिला के वन विभाग स्थित जिला बांस मिशन कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करने हैं, जो खेती उन किसानन के लाने सबसे अच्छा विकल्प है जो कम पानी में और मेहनत में लंबे समय तक पक्की आमदनी करवो चाहते हैं। भैया बहना हरों, आज बड़ी ही अच्छी एक और जानकारी हम आप और अंकिला ने लेके आए हैं, तो सुनते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि आजीविका ई विषय पे अधिकारियों और हितग्राहियों से बातचीत की स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग है अंशु तिलेठे बहन को।
3: किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को अंशु तिलेठे का नमस्कार। सरकार किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए कई सरकारी योजनाओं को तत्वावधान में लाती है और हम अपने किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं को किस तरह से हमारे किसान भाई और बहनें इन योजनाओं का लाभ लेकर उन पर क्रियान्वयन कर कैसे स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने खेती में, खेती से जुड़े व्यवसायों में किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं और अपने साथ साथ देश के विकास में अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं, तो कुछ इसी तरह से आज एक विषय मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारी कृषक बहनों को या हमारी ग्रामीण बहनों को, जो कि कृषि के क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती आ रही हैं, उन्हें और ज्यादा समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए इस योजना को तत्वाधान में लाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, नारी शक्ति का स्वरूप है और वो घर और बाहर दोनों बड़ी सजगता से और ईमानदारी से और लगन के साथ संभालती है। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में दो कृषक बहनों से बात की है, एक ड्रोन दीदी है, एक लखपति दीदी है, कि उन्होंने किस तरह से इस योजना का लाभ लिया और कैसे खुद को स्थापित किया और उदाहरण पेश किया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से। साथ ही हम आज के अपने इस स्थल रिकॉर्डिंग में बात करेंगे श्री मनीष पवार जी से, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं भोपाल में।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं मनीष पवार, राज्य परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। आज हम चर्चा करेंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कृषि आजीविका के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही मुख्य आधार है हमारी आजीविका का, और इसी को सुदृढ़ करने के लिए आजीविका मिशन जो अपनी योजनाएं चला रहा है, जो अपने कार्य कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आजीविका मिशन के बारे में बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2011-12 से संचालित है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं। इन महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाकर, इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाकर, इन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाकर आजीविका संबंधी गतिविधियां कराई जाती हैं, जिसमें इनकी आय बढ़ सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा सपना है लखपति दीदी बनाए जाने का, उस सपने को साकार किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि लखपति दीदी के सपने को साकार करने के लिए कृषि आजीविका के अंतर्गत जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या क्या है। कृषि आजीविका अंतर्गत आप देखें तो आजकल कृषि की जो लागत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगे फर्टिलाइजर, महंगे कीटनाशक जिनका आप उपयोग करते हुए अपनी खेती की लागत को बढ़ा रहे हैं। प्रथम प्रयास ये किया जाता है कि स्थानीय स्तर पे ही जैविक खाद स्वयं बना ली जाए, हमारी महिला समूह के द्वारा जैविक कीटनाशक तैयार कर लिया जाए और इसका उपयोग किए जाने से आप खेती की लागत को भी कम कर सकते हैं। तो आजीविका मिशन अंतर्गत आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी दीदियाँ, जो हमारी समूह की दीदियाँ हैं, ये पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। ये अपने खेतों में बड़ा अच्छा खाद स्वयं तैयार कर लेती हैं, जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंद नाशक, बीज को उपचार करने के लिए बीजामृत है ना आदि ये स्वयं तैयार कर लेती हैं और उपयोग भी करती हैं। तो खेती की लागत में कमी लाए जाना आजीविका मिशन का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य है जिसपे हम लोग कार्यरत हैं। दूसरा हम जो मुख्य काम करते हैं कि जो अभी उत्पादन लिया जा रहा है इस उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। कृषि की आजकल बड़ी अच्छी अच्छी नवीन तकनीकें आ गई हैं, श्री विधि से धान लगाना, धारवाड़ विधि से हमारी अरहर लगाना आदि, ये जो हमारी परंपरागत तकनीकें हैं इन पे अगर हम नवीन तकनीक को अप्लाई करते हैं। दूसरा आजीविका मिशन का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन जैसे श्री विधि से धान लगाना, धारवाड़ विधि से अरहर लगाना, तमाम चीजें ये जो तकनीकें हैं जिसका अनुसरण हमारी दीदियां कर रही हैं और खेतों में इनके उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है। तीसरा एक हमारा बड़ा मुख्य आप कह सकते हैं उद्देश्य है, फसल में विविधीकरण करना। जलवायु परिवर्तन के अगर हम परिणाम देखें तो आजकल सिर्फ एक फसल के अगर आप भरोसे किसान रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। फसल में विविधीकरण होती रहेगा तो अगर एक फसल हमारी चौपट हो जाती है या हमारी एक फसल खराब हो जाती है तो हम दूसरी फसल पर निर्भर रह सकते हैं। फसल विविधीकरण के अंतर्गत फलदार वृक्षारोपण जो है इत्यादि हम प्रमोट करते हैं। कई जगह बगियाएं लगाई गई हैं, बगिया मतलब कृषि के साथ आप फलदार वृक्ष भी ले सकते हैं। चौथा हमारा बड़ा मूल आधार स्तंभ है कि ये जो उपज आ गई है इसका उचित मूल्य दिला सके। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हमने प्रोड्यूसर ग्रुप्स हम प्रोत्साहित करते हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्थानीय स्तर पे ही अपनी जो उपज होती है किसानों की छोटी छोटी उसे खरीद कर एक जगह एकत्र कर लेते हैं। वहां उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मतलब छन्ना लगा देना, कंकड़ पत्थर हटा देना, थोड़ी सी ग्रेडिंग कर लेना और उसके बाद किसी बड़े बाजार में बेचना ताकि उचित मूल्य मिल सके। जोखिम कम करने के लिए फसल बीमा इत्यादि भी हम प्रमोट करते हैं। ये मुख्य आधार स्तंभ हैं जो आजीविका मिशन के कृषि आधारित आजीविका के अंतर्गत चल रहे हैं। अब ये हम करते कैसे हैं? इन कामों के लिए जो ग्राम स्तर पे हमारे पास उपलब्ध है वो हमारा एक कम्युनिटी कैडर है जिसे हम लोग रिसोर्स पर्सन भी कह सकते हैं। वो है हमारी वो सहायता समूहों की दीदियां जो कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रशिक्षित हैं, जिसे नाम दिया गया है कृषि सखी। कृषि सखियां जो हैं वो गांव-गांव में जाकर महिला किसानों को प्रशिक्षित करती हैं। अब आप कहेंगे महिला किसान कौन है? आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की वह दीदियां जो कृषि आजीविका अंतर्गत अपने खेतों में काम करती हैं, उन्हें हम महिला किसान कहते हैं। और आजीविका मिशन से जुड़कर ये एक अन्य पहचान भी उनको दिलाने का प्रयास किया गया है कि किसान को सिर्फ पुरुष ना समझाया जाए, महिला भी किसान हो सकती है और उन्हें हम महिला किसान का दर्जा देते हैं। इन महिला किसानों को कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए उनके ही खेतों में जाकर प्रशिक्षित किया जाता है। ये काम कृषि सखियां हमारी करती हैं। अगर हमारी वन क्षेत्र की कोई दीदियां हैं जहां हमारी वनोपज होती है तो वनोपज को जंगल से कैसे लाया जाए, उन्हें किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए और बाजार में बेचा जाए, इसके लिए हमारी इसी तरह की वन सखियां भी हैं जो गांव-गांव में काम कर रही हैं। अन्य जो काम कृषि आजीविका अंतर्गत आजीविका मिशन द्वारा किए जा रहे हैं वह है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। मुझे बड़ी खुशी है कि जैविक खेती के अंतर्गत लगभग 30,000 एकड़ का क्षेत्र जो है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के अंतर्गत आजीविका मिशन द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही हम लोग प्राकृतिक खेती का भी प्रोत्साहन करते हैं, प्रमोट करते हैं कि प्राकृतिक खेती की भी जो नवीन तकनीकें इसके बारे में दीदियों को प्रचारित किया जाए। हैदराबाद मैनेज में एक राष्ट्रीय संस्थान है जहां से मध्य प्रदेश की हमारी जो कृषि सखियां हैं लगभग 6,000 वो प्रशिक्षित भी हैं और सर्टिफाइड भी हैं जो अभी वर्तमान में कृषि विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए। इसके अलावा आजीविका मिशन अंतर्गत कुछ एकीकृत कृषि के हमारे जो संकुल होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन क्लस्टर्स में हम लोग लगभग 3 सालों में 40 लाख रुपए की एक सहायता देते हैं, जिसमें आप जैविक संसाधन बनाना, जैसे जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, इनका उत्पादन करने के लिए जैविक उत्पादन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाती है, जो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स के अंतर्गत करते हैं। आपने देखा होगा कि कृषि में आजकल ड्रोन का भी बड़ा उपयोग किया जा रहा है, खासकर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की स्प्रे करने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां जो हैं वो आज की तारीख में ड्रोन दीदी के रूप में भी काम कर रही हैं और गांव में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का जो स्प्रे कर रही हैं उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 300 रुपए की उन्हें सेवा शुल्क किसान द्वारा दिया जाता है। ये भी हमारी एक आमदनी का स्रोत है। मैं ये कहना चाहूंगा अंत में सभी श्रोताओं से कि आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर आप कृषि आजीविका से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि गांव में रहने वाली जो दीदियां हैं हमारी, जो हमारी स्व सहायता समूह की सदस्य हैं, पहले वो बने। जैसे ही दीदियां हमारी स्व सहायता समूह में जुड़ जाती हैं तो अभी हमारा कर्तव्य होता है कि समूह से जो दीदी हमारी जुड़ी हुई है उन्हें कृषि की तमाम तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करें, उनकी उपज में वृद्धि कराएं, उनकी उपज का हम उचित मूल्य दिलाएं और पूरा प्रयास करें कि उनकी वार्षिक आय जो है वो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सके और वो एक लखपति दीदी हो सके। नमस्कार।
3: अभी हमने मनीष पवार जी से राष्ट्रीय ग्रामीण परियोजना के विषय में विस्तृत जानकारी ली। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपके साथ राज्य परियोजना प्रबंधक श्री महेश वामनकर जी से उनके विचार जानते हैं।
5: मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्व सहायता समूह में जोड़कर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है। आजीविका शाखा द्वारा स्व सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि आधारित विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने के साथ साथ पशुपालन आधारित आजीविका को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं को संगठित कर पशुपालन आधारित उत्पादक समूह, क्लस्टरों और कंपनियों का गठन किया जा रहा है। इन समूहों के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर पशु प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, नस्ल सुधार एवं बाजार से जुड़ाव के लिए मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। पशुपालकों को उनकी गतिविधियों से बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो इसके लिए समूहों को आगे बढ़ाकर उत्पादक समूह, उत्पादक कंपनियों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पशुपालन आधारित लगभग 20 कंपनियों का गठन किया जा चुका है जिनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का है। इन माध्यम से पशुपालकों को इस कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों जैसे पशुपालन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग आदि के साथ में अभिसरण कर कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, संतुलित पशु आहार एवं पशुपालकों को नए तकनीकी ज्ञान हेतु उनका क्षमता वर्धन आदि का कार्य किया जा रहा है। आजीविका मिशन का प्रयास है कि ग्रामीण महिलाओं और पशुपालक परिवारों की आय के स्रोत को मजबूत किया जाए एवं उन्हें केवल लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि उद्यमी और उत्पादक के रूप में भी विकसित कर उन्हें लखपति बनाया जाए। सशक्त महिला, समृद्ध परिवार और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निरंतर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय में सतत वृद्धि तथा उन्हें लखपति बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में पशुपालन एवं खाद प्रसंस्करण को ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं स्थायी आजीविका गतिविधि के रूप में विकसित किया जा रहा है। मिशन द्वारा स्व सहायता समूह सदस्यों को डेयरी, बकरी पालन, ग्रामीण कुक्कुट पालन, पशु आधारित खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य संबंध गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इन गतिविधियों को केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित न रखते हुए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समान गतिविधि करने वाले समूह को संगठित कर पशुपालन क्लस्टर, उत्पादक समूह एवं उत्पादक कंपनियों का गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य है कि इन सभी प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाते हुए अधिक से अधिक स्व सहायता समूह परिवारों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं लखपति दीदी बनाया जाए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।
3: अभी हमने श्री महेश वामनकर जी को सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम अब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना से लाभान्वित हुई ड्रोन दीदी कविता चौहान, उनकी सफलता की कहानी उनके मुख से सुनते हैं।
6: नमस्कार, मैं कविता चौहान खंडवा जिले के ग्राम रेवापुर से मुझे आजीविका मिशन के माध्यम से ड्रोन मिला है, जिससे हम किसान भाइयों के खेतों में कीटनाशक एवं नैनो खाद यूरिया डीएपी के स्प्रे का कार्य करते हैं। यह कार्य मैं पिछले 2 वर्षों से कर रही हूं, जिसमें मैंने 2 वर्षों में 9 लाख रुपए की इनकम प्राप्त की है। यह सफलता मुझे आजीविका मिशन के माध्यम से मिली है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मैंने कृषि सखी का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मुझे ग्वालियर में ड्रोन की ट्रेनिंग मिली तथा इसके बाद खंडवा से मुझे ड्रोन मिला। आज मुझे इस कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मुझे एक उड़ान मिली है, जिसमें मैं अपने गांव, शहर तथा मध्य प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। हमारे प्रशासन एवं आजीविका मिशन के महिला सशक्तिकरण के अथक प्रयासों से आज हम महिलाएं अपने सपनों में उड़ान भर रही है। आज मुझ जैसी मेरे देश की अन्य बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह सब हमारे प्रशासन एवं मिशन के महिला सशक्तिकरण के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। आज मैं अपने प्रांत में ड्रोन के माध्यम से एक अच्छी इनकम ही नहीं, बल्कि मेरे मध्य प्रदेश में मुझे एक नई पहचान मिली है। आज मुझे जहाँ भी मैं खड़ी होती हूँ, मुझे ड्रोन दीदी के नाम से पहचाना जाता है। आज हम महिलाएं घर से बाहर निकलकर हमें भी अपने कार्य विस्तार को बढ़ाने का अवसर मिला है, क्योंकि हम जैसी कई बेटियां शिक्षित होने के बावजूद भी घर में ही रहकर सिमट जाती है, क्योंकि आजीविका मिशन के इस प्रयासों से हम महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने कार्य विस्तार कर रही हैं तथा एक नई पहचान बना रही हैं। हमारा निमाड़ांचल एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यह ड्रोन हमारे निमाड़ांचल कृषि प्रधान क्षेत्र में एक अनमोल सौगात के समान है। ड्रोन का सफर मेरे लिए कुछ ऐसा है, इसमें मुझे एक नई पहचान, इनकम, सम्मान, यहाँ तक कि मेरे सपनों को उड़ान भरने की मुझे इसमें बहुत बड़ी ताकत मिली है। आज मैं मेरे परिवार से लेकर गांव, शहर, जिला में बहुत जहाँ भी खड़ी होती हूँ, सम्मान से खड़ी होती हूँ। इससे मुझे और मेरे जैसी अन्य बेटियों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि हम यदि परिवार में कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आजीविका मिशन ने हमें एक बहुत बड़ी हिम्मत देकर, ताकत देकर आगे बढ़ाया, हमें ट्रेनिंग दिलाई। यहाँ तक कि इन प्रयासों से हम महिलाएं हमारे परिवार में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी में बोझ न बनते हुए उनके साथ एक साथी एवं सहयोगी की भूमिका अदा कर रही हैं आज मैं उन सभी महिलाओं को मेरा संदेश पहुंचाना चाहती हूं, चूंकि मुझे आज आपके समक्ष मेरे विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं उन सभी महिलाओं से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं में वो शक्ति होती है कि हम अपने परिवार के साथ घर के काम काज को पूरा करने के बाद भी यदि हमें अंदर से कुछ करने की शक्ति होती है, वो चाह होती है, वो आत्मविश्वास होता है कि हम कुछ करेंगे, तो यकीन मानिए हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज मुझे आपके समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देते हुए मेरे आजीविका मिशन प्रशासन को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी हमने कविता चौहान जी को सुना, जो कि ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती है। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभान्वित हुई लखपति दीदी सुरभि शर्मा जी से उनके लखपति दीदी बनने की कहानी।
7: सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुरभि शर्मा है, ग्राम दुपड़िया बिल जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह सदस्य हूँ और कृषि सखी का कार्य करती हूँ। ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मेरे लिए कृषि सखी का कार्य मिला, जिससे मेरी आजीविका में बढ़ोतरी हुई और मैं आज कृषि सीआरपी के पद पे कार्य करती हूँ। कृषि सीआरपी की जो ट्रेनिंग है मुझे प्राप्त हुई जिले स्तर से, स्टेट लेवल से और ब्लॉक लेवल से भी मुझे ट्रेनिंगें मिली। जो ट्रेनिंगों में मैं सीख के आती थी या योजनाओं की जानकारी मुझे प्राप्त होती थी वह मैंने आके अपने आसपास के किसान दीदियों को दी और उन्हें जागरूक किया और योजनाओं तक पहुंचाया, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में सारी दीदियों को अपना एक आजीविका बढ़ाने का मौका मिला। इसी के साथ साथ मैं लखपति दीदी भी हूँ और नमो ड्रोन दीदी के रूप में भी जानी जाती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई थी उसके तहत मुझे 100% सब्सिडी में ड्रोन प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं महिला किसान क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। मैं आजीविका मिशन में एक सदस्य के रूप में जुड़ी थी, लेकिन आजीविका मिशन के द्वारा आज मेरी पहचान कई रूपों में है। मैं एक कृषि सीआरपी हूँ, मैं नमो ड्रोन दीदी हूँ, ड्रोन पायलट बनके सभी के सामने हूँ। इसी के साथ साथ मेरे दाल मिल का बिजनेस है और मैंने खुद की अपनी एक कृषि सेवा केंद्र की दुकान भी खोल रखी है, जिससे मैं अपनी आजीविका चलाती हूँ। ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मैंने जो जो सपने देखे थे वो सारे मेरे पूरे हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती।
3: अभी हमने सुरभि शर्मा जी को सुना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को समझा। तो ये थी हमारी आज की स्थल रिकॉर्डिंग। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनो जो अधिकारियों और हितग्राहियों से बातचीत की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि आजीविका ई विषय पे। रिकॉर्डिंग सहयोग हतो अंशु तिलेठे बहन को। और चलो भैया बहनाहरों अब कछु मनोरंजन हो जाए। सो चलो अब आप उनको सुनवात है जो कजरी चंदर श्रीवास की गाई भाई।

0: अभय पन्ना सुनी जो कजरी चंदा श्रीवास की गाई।
1: अगर हमारे भैया बहनन को सभी जरूरी जानकारियां एक ही जगह पे मिल जावे तो इसे अच्छो तो कछु हो ही नहीं सकत। भारत विस्तार योजना केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिको पूरो नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 के बजट में करी हती और 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के जयपुर से इको लॉन्च करो हतो। योजना को मुख्य उद्देश्य देश के छोटे से छोटे किसान तक सही समय पर सही वैज्ञानिक जानकारी पहुंचावो है। भारत विस्तार एक बहुभाषीय एआई टूल है जो इन सभी समस्याओं को समाधान एक ही जगह पे दे देते है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो वॉइस फर्स्ट तकनीक पे काम करत है, यानी किसानन को स्मार्टफोन की या फिर इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़त। वे सिर्फ हेल्पलाइन नंबर 155261 पे फोन करके अपनी भाषा में सवाल पूछ सकत है। किसान इसे मौसम का पूर्वानुमान, कीटन की चेतावनी, मिट्टी की सेहत, बीज खाद सिंचाई की सलाह, फसल बीमा, सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकत है। और अब आपको बता देते हैं मंडी के भाव। 21 अगस्त को इंदौर मंडी में सरसों को न्यूनतम भाव है 5195, अधिकतम भाव है 5400 रुपया। सोयाबीन को न्यूनतम भाव है 3450, अधिकतम भाव है 4055। गेहूं को न्यूनतम भाव है 2350, अधिकतम भाव है 3130। डॉलर चना को न्यूनतम भाव है 6400, अधिकतम भाव है 9765। देसी चना को न्यूनतम भाव है 4975, अधिकतम भाव है 7010। मसूर को न्यूनतम और अधिकतम भाव है 5380। मटर मैंने बटला को न्यूनतम भाव है 4240 और अधिकतम भाव भी जोई है। मूंग को न्यूनतम और अधिकतम भाव है 6695। राजमा को न्यूनतम भाव है 7405 और अधिकतम भाव है 8000 प्रति क्विंटल। भैया बहना हरों योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनकी सही जानकारी भी हमारे भैया बहनन को मिलबो जरूरी है। हम पूरी कोशिश करत रहते हैं कि अपने भैया बहनन के लाने सही और विस्तृत जानकारी देवे। सो हम उम्मीद करत हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने आपको दी वे आप और उनके काम में आए और खेती किसानी के लाने सरकार की इन सभी योजनाओं को फायदा भी आप उठाओ। और इसके संग ही आज को किसान वाणी कार्यक्रम हमें तय समाप्त करत है। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एआई कौशल विकास और सतत पर्यटन पर ब्रिक्स देशों के साझा विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
3: जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक काफी अहम रही। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदस्य देशों ने जयपुर घोषणा पत्र को मंजूरी दी। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, युवाओं के कौशल विकास और यात्राओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस बैठक के दौरान भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। यानी जयपुर में चर्चा सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत के इन देशों के साथ पर्यटन संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी बात हुई। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल त्रिगुनायत जी, आपका हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में हार्दिक स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच।
3: अम्बेसडर त्रिगुनायत, जयपुर घोषणा पत्र के बारे में हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए, इसमें मुख्य रूप से किन बातों पर सहमति बनी है और ब्रिक्स देशों के लिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है?
4: देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारत इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 2026 में सितंबर में मेन समिट होने वाली है, और इस समिट में सारे जो 11 देश हैं जो मेंबर हुए हैं बढ़ने के बाद में, वो सब शिरकत करेंगे इसके अंदर, और इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। और उसमें जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जैसे कि ब्रिक्स को बदल ही दिया उन्होंने, उसका नाम ही बेसिकली उन्होंने कहा इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा आज की मॉडर्न एज में, और वो ये है कि बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ में इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और P2P कनेक्ट जो है और ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो अप्रोच है वो हमेशा से भारत ने अपनाई है। आपको मालूम है कि हमेशा से, चाहे हमारा G20 का रहा हो या कहीं पे भी दुनिया के अंदर में, प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, और पीपल सेंट्रिक अप्रोच में टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, उसके अप्रिशिएट नहीं करेंगे उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ती है, अप्रिसिएशन बढ़ता है, कल्चरल कनेक्ट बढ़ता है, तो ये सारी चीजों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसी के सिलसिले में जो जयपुर के अंदर में जो मीटिंग हुई है, टूरिज्म का जो वर्टिकल है उसकी 12वीं मीटिंग थी, तो उसके अंदर में नई चीजें, क्योंकि आज की डेट में देखिए टूरिज्म भी बहुत बदल गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे बनाया जाए, टूरिज्म का स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाए और किस तरह से इसको सुलभ बनाया, ये सारी चीजों के ऊपर में काफी कुछ मैं समझता हूँ जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक अच्छा एग्रीमेंट है जिससे ये आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अभी और भी काफी चीजें उसके अंदर करने की है। मेरा मानना यह है कि सबसे मुख्य बात यह होती है, और भारत जो है, आप ये देखिएगा कि सारे में जो 11 कंट्रीज हैं उसमें काफी सारे कंट्रीज जो हैं बहुत बड़ी पुरानी सिविलाइजेशंस के हैं, और उनके पास में बहुत बड़ा एक खजाना है जिसको देखने के लिए, भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने के लिए हैं लोगों के लिए, तो टूरिज्म जो है आते हैं पर्यटक यहाँ पर, इसी तरह भारतीय पर्यटक भी दूसरी नंबर में दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन भारतीय पर्यटक तब जाते हैं जहाँ पर कि उनको वीजा वगैरह मिलना आसान होता है, बहुत से कंट्रीज जो है उनके वीजा प्रोसेस बहुत ठीक नहीं है, सुलभ नहीं है, तो इसलिए वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते इतना ज्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो कंट्रीज हमारे ब्रिक्स के हैं, अगर उनको वाकई कोऑपरेशन को और भी ज्यादा किसी हद तक लेके जाना है, तो उसमें आवश्यक है कि ये ईज ऑफ ट्रैवल बहुत जरूरी है, और ये खाली जो है वो ग्रुप टूर्स की भी नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल टूरिस्ट के बारे में भी होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा। और किस तरह, इसी तरह से तभी जैसे डिजिटल भारत जो है, जानते हैं आप, कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बड़ा नाम कमाया है और उसको किस तरह से टूरिज्म क्षेत्र में, चाहे वो मैनेजिंग सस्टेनेबल साइट्स हो, किस तरह से जो डेस्टिनेशन का मैनेजमेंट होता है, जैसे लोग जाते हैं तो कैसे उनको कॉन्टेक्ट कनेक्ट करेंगे, किस तरह से ट्रैवल फैसिलिटेशन हो सकता है, तो ये सारी बातों के ऊपर में मैं समझता हूँ काफी गहराई से डिस्कशन हुआ है और इससे काफी बड़ा फायदा जो है सभी देशों को इसका मिलेगा अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है।
3: अम्बेसडर त्रिगुनायत, घोषणा पत्र में पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं?
4: बिल्कुल, आप ये अगर देखें तो भारत ने भी अपना भाषण ही एक बनाया है, सॉफ्टवेयर AI ड्रिवन है और उसके अंदर में सारी भाषाओं के अंदर आप बोलते जाए तो दूसरी भाषाओं के बारे में बताता रहता है, तो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो जहां तक लैंग्वेज की, क्योंकि हम बहुत से कंट्रीज में, मान लीजिए आप चाइना में जा रही हैं या आप रशिया जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों को जो है अंग्रेजी नहीं आती इतनी, तो वहां पर आवश्यक है कि आप अपनी कम्युनिकेट कर पाए, किसी तरह समझ पाए कि आखिरकार है क्या। आजकल तो खैर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वगैरह इस तरह की आ गई है कि आप उधर अगर उसको उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ जो चीज अगर आप उसको देखें और आप इंग्लिश में उसका मतलब जानना चाहते हैं तो वो भी कर देता है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं समझता हूँ हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो गया है और उसके चलते देखिए आपका डिजिटल करेंसी बहुत सी जगह आप जाएंगे, अब भारत है और भी देश है जिन्होंने अपने अपनी करेंसीज को डिजिटाइज किया है और इनसे UPI जैसा है वो भी जो है डिजिटल बेस्ड है, तो उसको कैसे यूज किया सकता था, करेंसी ले आने की भी जरूरत नहीं है वहां पर, तो उससे भी काम कर सकते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर में। तो ये मेरा मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है वो खाली बुकिंग फैसिलिटेशन ट्रैवल और इन सब चीजों में ही मदद नहीं करती बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ को भी काफी सिंप्लीफाई करती है, तो इन सारी चीजों में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान जो है टेक्नोलॉजी का रहा है।
3: जी अम्बेसडर त्रिगुनायत, हम देखते हैं कि जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो वे सिर्फ हमारे पर्यटन स्थल नहीं देखते बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली को भी समझते हैं, क्या इसे भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा माना जा सकता है?
4: बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म तो एक है ही सॉफ्ट पावर का हिस्सा, क्योंकि देखिए जब आप खुद बाहर जाएं या लोग आपके देश में आए, जब वो आते हैं तो वो देखते हैं, इसीलिए तो भारत की जो एक कमाल की जो हमारी संस्कृति है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी जो है कलर्स है, उसको जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे इतने सारे लोग इतनी डाइवर्सिटी में इतनी अच्छी तरह से कैसे रह पाते हैं, इतना कलरफुल कंट्री कैसे है, इतने फेस्टिवल्स कैसे हैं, तो उनको ये, तो जब टूरिज्म के लिए जाते हैं आप तो पर्यटन में ये सब चीजों का तो बड़ा महत्व है, खाली वो आप हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर आपको कल्चरल प्रोग्राम देखने मिलता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है, खाने का मौका मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, और उसमें भारत ने एक बड़ी अच्छी बात करी है, चाहे वो G20 समिट रही हो हमारी 2023 की या ये वाली ब्रिक्स की समिट है, कि हमने ये सारी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मीटिंग्स करी है, तो 400 मीटिंग करीब इसकी ब्रिक्स की होनी है, आप सोच लीजिए अभी 350 के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, और 12-13 सितंबर को मेन समिट मीटिंग है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आएंगे यहाँ पर, तो ये उसका कल्चर जो है, संस्कृति जो है, सिविलाइजेशन जो है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है टूरिज्म के लिए। जब भी कोई जाता है तो वो देखने जाता है, कहाँ लोग आते हैं भारत में तो चलिए क्या क्या देखेंगे भाई, तो जगह जगह दिल्ली में कुछ और है, आगरा में कुछ और है, जयपुर के अंदर में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, टेम्पल्स हैं हजारों साल पुराने, तो देख के चकित हो जाते हैं लोग के किस तरह से कल्चर आपकी जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो बार बार आते हैं अगर उनको अच्छा लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसके सिलसिले में इसमें एक और बड़ी बात हुई है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीजें जो है रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी टूरिज्म जिसको कहते हैं वो भी बड़ा अच्छा है वहां पर, तो मैं समझता हूँ तो ये सब बड़ी जरूरी चीजें हैं।
3: अम्बेसडर त्रिगुनायक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि घोषणा पत्र में पर्यटन से जुड़े लोगों के कौशल विकास और ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है और जैसा आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की, तो इससे भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों को क्या फायदा हो सकता है?
4: देखिए बिना स्किल के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप तो टूरिस्ट हैं, आपको जाना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी टूर ऑपरेटर से बात करते हैं, उस टूर ऑपरेटर को पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह से हम टूर को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे, जब आप वहां जाएंगे तो उस कंट्री में उसका क्या पार्टनर होगा, वहां से कैसे जाएंगे, तो इसलिए स्किल जो टूरिज्म के ऐसे कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इस तरह के कोर्सेज दिए जाते हैं प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में होता है, तो उसी के बाद में आप होटल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर में एम्प्लॉय होते हैं, चाहे होटल में जाइए तो वहां पे भी तो ट्रेनिंग होती है उनकी, तो टूरिज्म के जो तो ये सारे उसी के हिस्से हैं, उसी के अंग हैं डिफरेंट, तो ये मैं समझता हूँ इससे क्या होगा कि जो कि अगर एग्रीमेंट जो हुआ है तो दोनों कंट्रीज अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अपने इंस्टीट्यूशनल कनेक्शंस हैं, अपने प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ में, तो उससे एक तो अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, और दूसरी चीज यह है कि वो एक स्किल्ड मैन पावर, और स्किल्ड मैन पावर को रीस्किल करना पड़ता है। देखिए अब आजकल ये 10 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है, तो जो हमारे लोग जो पुराने मैनेजर्स कहिए या दूसरे लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, उनको भी अडेप्ट करना है कि नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक एजुकेशन के जरिए से और स्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए हो सकता है।
3: अम्बेसडर त्रिगुनायत, बैठक के दौरान भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और यूएई के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की, इन बैठकों की क्या अहमियत है?
4: तो होता क्या है कि देखिए जब ये मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती है तो अपनी जगह उनका जो एक उद्देश्य है वो तो सर्व होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हमेशा से जो होस्ट कंट्री होता है या दूसरे कंट्रीज भी जो आए हैं, उन्होंने और भी मीटिंग मांगी होंगी अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ में। तो भारत ने भी इसी तरह से जो मीटिंग्स आपने बताई हैं कई सारे कंट्रीज के साथ हुई, और इन मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि हम बायलैटरल वे में और क्या कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। जैसे यूएई की बात ले लें, यूएई हमारा बड़ा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां पर 4.4 मिलियन इंडियंस रहते हैं, लगभग 44 लाख इंडियंस वहां पर काम करते हैं, वहां से ज्यादा भारतीय गल्फ कंट्रीज में अगर कहीं रहते हैं। अब ईरान के अंदर में भी काफी सारे भारतीय फंस गए थे, उनके बारे में भी बात करना, कैसे अगर मान लीजिए आपके अगर सैंक्शंस लगी हुई हैं तो अगर आप वहां जाते हैं वहां पे आप अपना यूज नहीं कर पाते तो किस तरह से हम करेंगे। तो जब हम बात करते हैं बायलैटरल रिलेशंस की, तो अगर टूरिज्म सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें वो मैकेनिज्म निकल के बाहर आएंगी जिससे कि एक टूरिज्म फैसिलिटेट हो सकता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट फैसिलिटेट हो सकता है, ट्रैवल इजी हो सकता है।
3: जी अम्बेसडर त्रिगुनायत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यही कहा कि पर्यटन भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कूटनीति के जरिए अगर हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है?
4: देखिए टूरिज्म क्या है आफ्टर ऑल, टूरिज्म जो है कि दो देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उनके पास में अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी आप देखें तो कोई भी रिलेशनशिप होगी वो तभी ज्यादा अच्छी चलती है जब वहां पर के पीपल टू पीपल कनेक्ट स्ट्रांग होता है, और उसके लिए कनेक्टिविटी और टूरिज्म और ट्रैवल बहुत आवश्यक है। तो जो शेखावत जी ने कहा बिल्कुल उचित कहा, और नेचुरली है कि रेवेन्यू तो बनता ही है उससे, जितने ज्यादा ज्यादा लोग आपके मुल्क में आएंगे, बहुत से कंट्रीज हैं, मैं जॉर्डन में काम करता था, वहां का 25% रेवेन्यू जो है उनका पूरा जीडीपी का हिस्सा था टूरिज्म के जरिए। ऐसे भारत में भी बहुत मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर के लोग, तो उसको हम और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, वो नेचुरली हमारे अगले 20-22 साल में जो 2047 का भारत का एक उद्देश्य है कि किस तरह से विकसित भारत बनेगा, तो उसमें नेचुरली है कि काफी कुछ इसकी मदद मिलेगी और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो गुडविल जनरेट होती है जब आपके देश में लोग आते हैं, उनको अच्छी तरह देखते हैं। देखिए भारतीय लोग जो हैं वो हमेशा से अतिथि देवो भव में विश्वास रखते आए हैं, और इसलिए जो भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको मिलते हैं जब लोगों के साथ में तो वार्म्थ होती है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें जो है और ये और अलाइड इंडस्ट्रीज होती है। देखिए टूरिज्म से खाली यही नहीं होता, बहुत देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गए, आपके गाइड्स हो गए, आपके आर्टिजन्स हो गए, वीवर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होता है, तो जहां जहां लोग जाते हैं वहां पर नेचुरली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। और तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इससे डायरेक्टली ये सारी बातें जो है भारत के विकास के लिए भी और हमारे जो पार्टनर कंट्रीज है उनके विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है।
3: अम्बेसडर त्रिगुनायत, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या आप मानते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था का मंच नहीं रहेगा बल्कि पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
4: ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा है कि ये इसमें काफी ऐसे देश हैं, अब चाहे देखिए भारत को देखिए, चीन को देखिए, रूस को देखिए, इथियोपिया, इजिप्ट और भी कई सारे देश हैं जो एंशंट सिविलाइजेशन है इसके अंदर में, ऐसे नहीं है मतलब ये कोई जो दूसरे ग्रुपिंग्स में लोग कंट्रीज होते हैं, यहाँ पर सब लोग जो है एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन है, कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कितने सारे तो वर्टिकल साइंस के इतने मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, तो कोऑपरेशन तो बढ़ता रहेगा। और ब्रिक्स को जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि ये ब्रिक्स कोई एंटी वेस्टर्न नहीं है, ब्रिक्स जो है एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग है, इनिशिएटिव है जो एक अल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बताता है।
3: अम्बेसडर त्रिगुनायत, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे AI, कौशल विकास और सतत पर्यटन पर ब्रिक्स देशों के साझा विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: सुर्खियों में
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आशा भोसले का गाया फिल्म लूटमार का ये गीत, अमित खन्ना ने बोल लिखे, राजेश रोशन ने तर्ज बनाई।

आशा भोसले का गाया फिल्म खूबसूरत से ये गीत था, गुलजार का लिखा, आर डी बर्मन की धुन थी। याराना फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार का गाया, अनजान ने बोल लिखे हैं और राजेश रोशन की तर्ज है।

0: बस बस बस बस सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: गामा वन टू थ्री फोर सारे गामा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गामा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा।
1: किशोर कुमार और मोहम्मद रफी का गाया फिल्म चुपके चुपके का ये गीत था।

0: किशोर कुमार का गाया ये फिल्म परिचय से गीत था। गुलजार ने बोल लिखे थे और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, आपके लिए सूचना है, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा एवं किलोल पार्क चौराहा तथा इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई। ये एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 23 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 23 अगस्त 2026 यानी कल के दिन शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लें। दिनांक 23 अगस्त 2026 यानी कल के दिन शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर रहेगा 2660902 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड 0755। सूचना समाप्त हुई। श्रोता, आपको बता दें कल सुबह 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान का प्रसारण होगा। कल सुबह 10:05 पर सामुदायिक गान सेक्शन पाठ में होगा हिंदी भाषा का गीत रचना एस सी गुप्ता की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से

0: मैं सर फिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुए प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉक्टर सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
3: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की।

0: अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. the headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution, restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Later, briefing the media in New Delhi, BJP National General Secretary Vinod Tavade announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The National General Secretary said the campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. He said the party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with his personality.
3: Under the Seva Setu campaign, officers from the departments concerned with various government schemes will remain present at the block level for 15 days along with the necessary documents. People who from some region have been left out of the benefits of the government schemes will get an opportunity to enroll themselves in these schemes through special programs organized at the block level during this period.
2: Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri, West Bengal today. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. More in this report.
4: Along with the committee head Pankaj Singh, former BSF director and deputy national security advisor will be in the committee which will give report to the centre. Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bishta said that the meeting was very fruitful and that all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, Chief Minister Shuvendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The Home Minister also held a meeting to review security arrangements along the country's eastern borders with a special focus on strengthening security at the Siliguri corridor, also called the Chicken's Neck. Senior officials of West Bengal and Central Security Forces were present in the meeting. The discussions focused on strengthening border surveillance, improving

सरकर्दा गोरखा रहनुमाओं के साथ अहम मीटिंग की। इसमें रियासत के चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल, राब्ताकार पंकज सिंह, लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट राजू बिष्ट, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट हर्षवर्धन श्रृंगला और कुछ दीगर गोरखा लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामाधिकारों को जानकारी देते हुए दार्जिलिंग से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट राजू बिष्ट ने बताया कि ये मीटिंग बहुत मुफीद रही।

0: में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, यहां सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने पर खासतौर से तवज्जो मरकूज की गई। जनाब शाह ने रियासत के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन सिलीगुड़ी के मजाफात में सुकना में मगरबी बंगाल के सीनियर अहदेदारान और मरकजी सिक्योरिटी अफवाज के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सरहद पर निगरानी को मुस्तहकम करने और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज, खुफिया एजेंसियों, रियासती पुलिस और इंतजामिया के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने और मुजवजा से रुखी सिक्योरिटी ग्रिड की खातिर तरीक़ाकार तैयार करने पर खसूसी बातचीत हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी होने चाहिए। आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स आलमी लीडर्स फोरम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के रिश्ते के फरोग के लिए इसे बाहमी मफाद की कसौटी पर खरा उतरना होता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ मस्बत, तामीरी और दूरअंदेशी पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखा जाए। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एक अलग ही तरह का मुल्क है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो हमसाया मुल्क पर हमला करने और दबाव डालने के लिए दहशतगर्दी को इस कदर मुनज्जम तरीके से इस्तेमाल करता हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूनान के अपने हम मनसब जॉर्जियस गेरापेट्रिस से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तरफेन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी वाकयात पर तबादला ख्याल किया और राबते में रहने से इत्तेफाक किया। ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर से मुतालिक वुजरा के एलामिये को इख्तियार किए जाने के साथ ही आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स ममालिक के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। इस मीटिंग में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों के इश्तराक के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लिया गया और तालीम, हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, इख्तरा और समाजी तरक्की में नौजवान अफराद की खातिर इम्कानात में वसअत पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका एलामिये में तालीम, तरबियत, हुनरमंदी, साइंस टेक्नोलॉजी, सेहत, खेल, माहौलियात और पायदारी, समाजी और सकाफती शिरकत, रजाकाराना तौर पर काम करने, गरीबी को कम करने, बैन अकायद बातचीत और नौजवानों की शमूलियत जैसे अहम शोबों का इहाता किया गया। मीटिंग की सदारत करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल को समत देने में शराकतदार बनना चाहिए। विकसित भारत 2047 के लिए भारत के नजरिए का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस विजन को हकीकत की शक्ल देने में मदद करने की खातिर ऐसे 1,00,000 नौजवान रहनुमाओं को तैयार करने पर जोर दिया है जिनका कोई सियासी पसे मंजर ना हो। इस मौके पर डॉक्टर मांडविया ने जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की ताकि नौजवानों के उमूर और खेल, खासतौर से हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल राबते और नौजवानों के तबादले से मुतालिक प्रोग्रामों में इश्तराक को मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों के इश्तराक और शराकत दारियों की जानिब एक अहम कदम भी साबित हुई। उड़ीसा में एक मरतबा फिर दूर दूर तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ मुतासर इलाकों में सैलाब का पानी अब भी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में रियासत भर में बारिश की पेशगोई की है और शिमाली उड़ीसा के हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एक बार फिर बारिश की पेशगोई से सैलाब से मुतासर अजला में तशवीश बढ़ गई है, जहाँ 13,00,000 से ज्यादा अफराद पहले ही सैलाब से मुतासर हैं। मजीद तफसील हमारे नवानीगर से।
1: खलीजे बंगाल में एक बार फिर मौसम में तब्दीली के पेश नजर बारिश में इजाफा होने का इम्कान है और उड़ीसा में फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। आईएमडी भुवनेश्वर ने मुख्तलिफ अजला में कई मकामात पर हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। क्योंझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नबरंगपुर में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट, जबकि इस माह की 24 और 25 तारीख को क्योंझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सैलाब की सूरत हाल रफ्तार रफ्तार बेहतर हो रही है, लेकिन शुमाली उड़ीसा में चैलेंज बरकरार है। सात अजला में 13,00,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हैं,

0: जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंट वार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव। क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे इस संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए?
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्रज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्रज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों को उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग, ये एक बंगाल रिनायस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं और बहुत ही गौरवशाली समय ये रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए खोज के बाद।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रामन जी ने जीडी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा और अगर इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रामन पे विश्वास किया और सीवी रामन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रामन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रामन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रामन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग।
2: तो वो रामन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: प्रोफेसर मांडे, चूंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
2: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उसे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
2: मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
1: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविंद्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष है मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, विकास की ये दौड़ ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविंद्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविंद्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यह हम आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है, ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए, मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में, तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
0: अपनी भाषा में जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं, ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक

0: आप कह रहे हैं वो निर्णय लेता है, वही विवेक एल्गोरिदम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
0: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीज डेवलप की गई वहाँ पे।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें?
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है, तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई, ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं, या रोबोटिक्स से कुछ वहाँ पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं, तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स की पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए, इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
0: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब यह है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं, तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बहुत मुश्किल है, और केवल एटीजीसी से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है। और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है, और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है, तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
0: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।

0: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता
1: है? देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर जो आप सुधारते हैं, जिनको ये होती कैसे है?
1: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिली के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है। तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चीज हो सकते हैं, जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन। अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
0: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इन क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
0: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
0: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
0: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
0: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
0: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने। पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वाले

0: उनके मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा एंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं, वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
1: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो ना बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल, तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचार। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
2: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल की स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्व

0: महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को एमएस स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर सारा भाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया, उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक। ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे। प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों

0: के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री श्रेयस नारायणन। श्री श्रेयस नारायणन is a top grade Carnatic vocalist of Akashwani, known for his powerful voice, musical depth and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training under late A. Anandaraman Iyer of the Muthuswami Dikshidhar lineage, followed by advanced tutelage under Professor M. A. Venugopal and late P. S. Narayanaswamy, whose guidance shaped his distinguished musical career. With several decades of concert experience, Sri Shreyas Narayanan has performed extensively at prestigious music festivals and cultural platforms across India and abroad. He has received numerous honors and recognitions for his contributions to Carnatic music and enjoys the admiration of music critics and rasikas alike. In addition to his concert career, he has made significant contributions to music education through teaching and academic engagement. In tonight's program, he will be accompanied by Srimati S. R. Rajashri on the violin, Sri A. Balakrishna Kammat on the mridangam, and Sri Vaikam N. Gopalakrishnan on the ghatam.
0: Sri Shreyas Narayanan apne gayan ki shuruaat Sant Tyagraj ki kriti निन्नाड नेला से कर रहे हैं, जो राग कन्नड़ा पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद कृति निन्नाड नेला, अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग कन्नड़ा सेट टू आदि ताल।

0: अप्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to कामाक्षीम कल्याणी, a composition of मुत्तु स्वामी दीक्षितर in the raga कल्याणी, set to रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is ताये त्रिपुर सुंदरी। In the राग शुद्ध सावेरी, set to खंड चापू ताल, composed by पेरिया स्वामी तूरन।

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथी कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by श्री ए बालकृष्ण कम्मत and on the घटम by श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S. R. Rajashri on the violin, Shri A. Balakrishna Kamath on the mridangam, and Shri Vaikim N. Balakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार
2: नमस्कार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
3: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली माँ हमारी माता बहन है उनका सम्मान किया जाए।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य

0: पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interests and reciprocity.
2: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be a fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
1: The External Affairs Minister also described Pakistan as a unique country in the world, as there is no other nation that uses terrorism so systematically and in a sustained manner to attack and put pressure on a neighbour. The United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after a failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. The Indian men's hockey team conceded 2 goals in the final quarter despite a flawless first half to lose 1-3 against reigning Olympic champions, the Netherlands, and crashed out of the semi-final race of the ongoing FIH World Cup at Amstelveen, Netherlands today. India needed to win this match at all costs to reach the last 4 stage, but despite a good start, the team committed mistakes in the final 10 minutes to get knocked out of podium contention. India will now play an inconsequential final second round match against Argentina on Monday. After that, the team will play the 5th-8th place classification matches. Captain Harmanpreet Singh scored the only goal for India in the 52nd minute from a penalty corner. India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have etched their names in history by bagging the bronze medal at the BWF Badminton World Championships. They have become only the second Indian women's doubles pair to win a world championship medal, following in the footsteps of Jwala Gutta and Ashwini Ponappa. And that is the end of this news bulletin.
3: Yeah. आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा प्रसारण अभी ही संपन्न होता है। कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:53 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।